मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 19

1948 की ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।

0: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जी हाँ श्रोताओं, ईश्वर के नाम अनगिनत हैं, पर सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर भावना है। कोई उन्हें राम कहता है, कोई रहीम, कोई वाहे गुरु, कोई गॉड, कोई अल्लाह, पर प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश सबका

ईश्वर तक पहुंची जाती है। कबीर ने सच ही कहा था, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक हुई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई।

भक्ति में बाहरी आडंबर से अधिक भावना और भक्ति भाव का महत्व माना गया है। यदि मन में सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण हो तो साधारण पूजा भी

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देख,

0: फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

अल्प विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना में। तन खंजरी और मन एक तारा एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक भाव है। अर्थ देखें तो शरीर तो केवल एक साधन मात्र है, पर मन जब ईश्वर भक्ति में पूरी तरह डूब जाते हैं तब वो एक तारे की तरह मधुर और एकाग्र स्वर में प्रभु का नाम गाने लगता है। अर्थात सच्ची भक्ति केवल बाहरी वाद्य या कर्मकांड में नहीं बल्कि मन की तन्मयता में है।

जी श्रोताओं, सच्ची श्रद्धा और भक्ति मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कठिन से कठिन मार्ग भी आसान सा लगने लगता है। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य, समर्पण और सकारात्मक शक्ति का नाम है। भगवद गीता में भी कहा गया है, श्रद्धामान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा रखने वाला ही सच्चा ज्ञान और सफलता प्राप्त करता है। फिर चाहे हनुमान की शक्ति हो, मीराबाई की भक्ति हो या प्रहलाद का अटूट विश्वास, सभी यही बताते हैं कि सच्ची आस्था असंभव को भी संभव बना देती है।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अथर्व वेद से पाठ।
1: ओम सत्य बृहदुतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्मजज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथ्वी न कृणोतु। सत्यवृद्धि न्याय व्यवहार क्षात्र तेज दक्षता तपस्या ज्ञान और यज्ञ ये 8 गुण पृथ्वी अर्थात मातृभूमि को धारण करते। वह मातृभूमि पृथ्वी हमारे लिए भूत भविष्य वर्तमान अवस्था की पालन करने वाली है। वह हमारे लिए विस्तृत स्थान निर्मित करे। ओम असम

0: साम्राज्य नाम ना। जिस मातृभूमि के मानवों के अंदर उच्चता नीचता तथा समता के विषय में बहुत ही निर्वैरता है और जो नाना प्रकार के वीर्यों से युक्त औषधियों को धारण पोषण करती है, वह हमारी मातृभूमि हमारी कीर्ति की साधन होवे। ओम यस्याम समुद्र उतवा सिंधुरापो यस्याम अन्नम गृष्ट यस्संभवू यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सानो भूमि पूर्व पे ये दधातु। जिसमें समुद्र नदियां तथा अनेक जलाशय हैं, जहां कृषक कृषि से अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न करते हैं, जिस पर अनेक प्राणी आनंद पूर्वक जीवन धारण करते हैं, वह मातृभूमि हमको अनेक प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करे। ओम यस्याश्चतस्र प्रदेश प्रदिव्या यस्यामन्नम गृष्ट यस्संभवो या विभर्ति बहुधा प्राण देजत्सानो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। जिस मातृभूमि की चारों दिशाओं में विविध खेतियां हैं, जिसमें अन्न को उत्पन्न करती हैं और उसमें जो भूमि घूमने वाले प्राणी मात्र को बहुत प्रकार से पुष्ट करती हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें गायों से दूध और कृषि से अन्न प्रदान करे। ओम यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्याम देवा असुरा नव्यवर्तयन्ने गवाम अश्वानाम वयसश्च विष्टा भगं वरज पृथ्वी नो ददातु। जिस मातृभूमि में हमारे प्राचीन पूर्वजों ने विविध कर्तव्य किए थे और जिसमें देवों ने असुरों को पराजित किया था तथा जो गायों अश्वों तथा पक्षियों का विशेष निवास स्थान है, वह मातृभूमि हमारे ऐश्वर्य तथा तेज को प्रदान करे।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से, इसमें सुनवा रहे थे अथर्ववेद से पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज ने औद्योगिक फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग इस विषय पर राणा प्रताप सिंह से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत।
1: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ने तमाम तरह के खेती करते उन देखे में आवत कि जैसे मने एक रोग दोग बेरामी लागत वैसे फसल में भी तमाम तरह के रोग दोग बेरामी लागत थी। आज जोन बातचीत के विषय बा वो है औद्यानिक फसलन में कीटनाशकन का प्रयोग कैसे कई जाते इस सब के बारे में बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बटन श्री राणा प्रताप सिंह जी जौन की इस सब के जानकार बटन। श्री राणा प्रताप सिंह जी आपके कार्यक्रम में स्वागत बा। आप हमारे किसान भाइन के ई बतावें कि जौन औद्यानिक फसल अहिन है उनमें कीटनाशक का प्रयोग काज कैसे करें का सावधानी बरतें इस सब के बारे में बतावें आप।
2: किसान भाइयों, कीट प्रबंधन के अंतर्गत कीट नियंत्रण के सरल और प्रभावी तरीकों को इस प्रकार समावेश करना चाहिए कि कीट नियंत्रण प्रभावी

0: हो, जिससे कि किसान और सब्जी उपभोक्ता दोनों लाभान्वित हों
1: जी
0: और वातावरण भी सुरक्षित रहे। इसमें जैविक, रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक नियंत्रण एवं शस्त्र क्रियाओं के समुचित चुनाव एवं उनके समावेश द्वारा एकीकृत कीट प्रबंधन किया जाता है, जिससे कि मित्र कीटों की संख्या एवं वातावरण की स्वच्छता एवं मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े।
1: अब बात आवत की जौन गोभी बरगी सब्जी आवत हिन, खास कई के जैसे पत्ता गोभी भ, फूल गोभी भ, और भी तमाम तरह के गोभी में आवत हिन, तो भाई वह हमें का का कीट लगत हिन, उनमें का सावधानी बरते चाहे करे बारे में भी बताओ आप।
0: किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से माहू कीट लगता है। यह कीट हल्के पीले रंग का होता है। यह गोभी के पत्तों पर हजारों की संख्या में चिपके रहते हैं। इनका प्रकोप जनवरी और फरवरी में अधिक होता है,
1: जी
0: जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। माहू अपने शरीर से स्राव करते हैं, जिसमें फफूंद का आक्रमण होता है एवं गोभी खाने या बिकने योग्य नहीं रहती है। इसके
1: अच्छा
0: निदान के लिए इस कीट डाइक्लोरवास नामक दवा 1.5 ml

0: हजारों की संख्या में चिपके रहते हैं। इनका प्रकोप जनवरी और फरवरी में अधिक होता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। माहू अपने शरीर से स्राव करते हैं, जिसमें फफूंद का आक्रमण होता है एवं गोभी खाने या बिकने योग्य नहीं रहती है।
1: अच्छा।
0: इसके निदान के लिए इस कीट डाइक्लोरवास नामक दवा 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: दूसरा, नीमगिरी 4% यानी कि 4 ग्राम पाउडर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से अच्छा परिणाम मिलता है,
1: मतलब ऐसे निजात मिल जाता है।
0: निजात मिल जाता। दूसरा मुख्य जो कीट होता है, हीरक पिष्ट कीट जिसको बोलते हैं, इस कीट का प्रकोप पत्ता गोभी की फसल पर सबसे ज्यादा होता है। इस कीट के सूढ़ी पत्तियों की निचली सतह पर खाते हैं और छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं।
1: हाँ हाँ
0: जब इनका प्रकोप अधिक मात्रा में होता है तो छोटे पौधों की पत्तियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, जिससे पौधे मर जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: शुरुआती अवस्था में जब गोभी इस कीट से ग्रसित होती है तो बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है,
1: यानी पूरी तरह बढ़त नहीं।
0: इसके निदान के लिए हर 25 लाइन गोभी के दोनों तरफ 2 लाइन सरसों की बुआई करना चाहिए,
1: अच्छा,
0: जिससे
1: अच्छा।
0: इस कीट का प्रौढ़ आकर्षित होकर सरसों पर अंडा दे। तत्पश्चात सरसों में डाइक्लोरवास 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़क देना चाहिए, जिससे कीट मर जाए।
1: यही बात।
0: दूसरा इसका है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, एक दवा आती है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़कने से इसका नियंत्रण हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तीसरा, मुख्य रूप से तंबाकू की सुंडी भी लगती है। इसका वयस्क मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में अंडे देती है।
1: जी जी
0: 4-5 दिनों बाद अंडों से सुंडी निकलती है और पत्तियों को खाती है।
1: अच्छा,
0: कभी
1: अच्छा।
0: कभी फल एवं तनों को भी क्षति पहुंचाती है। इसके निदान के लिए पत्तियों के निचले हिस्से पर गुच्छों में मादा कीट अंडे देती है, अतः उन पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए।
1: जी जी
0: दूसरा, डेल्टा मेथ्रिन नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इसका नियंत्रण किया जा सकता है।
1: अच्छा भैया, आप बात आओ जो उन कद्दू बरगी सब्जी होती ना, ओहमे कौन कौन कीट लागा थे, उनका का निदान में बताओ आप।
0: किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से एक लाल भृंगक कीट लगता है।
1: जी
0: इस कीट के भृंग और वयस्क दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। भृंग जमीन के नीचे रहते हैं और पौधों की जड़ों एवं तनों में छेद कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: आमतौर पर इसके प्रौण पौधों की छोटी पत्तियों को ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें खाते हैं।
1: जी
0: इस कीट का आक्रमण फरवरी माह से लेकर अक्टूबर तक होता है। इसके निदान के लिए गर्मी में खेत की गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे इस कीट के अंडे व भृंग ऊपर आ जाए और तेज गर्मी से मर जाए। दूसरा, प्रथम अवस्था में जब कम प्रकोप रहता है, वयस्क को हाथ से पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा
0: तीसरा, कार्बोलिल नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, या 5% कार्बोरिल पाउडर को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से राख में मिला करके शाम के समय बुरकाव करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है।
1: अच्छा भैया, फल मक्खी भी लागत का?
0: हाँ किसान भाइयों, दूसरा जो कीट लगता है वो फल मक्खी है। इस मक्खी का रंग लाल भूरा होता है। मादा मक्खी फल के छिलके में बारीक छेद कर अंडे देती है
1: जी।
0: और अंडे से मैगेट निकलकर फलों के अंदर का भाग खाकर नष्ट कर देते हैं। यह कीट फल के जिस भाग पर छेद करके अंडा देता है वह भाग वहां से टेढ़ा होकर सड़ जाता है।
1: अच्छा,
0: इस कीट से ग्रसित फल संपूर्ण रूप से सड़ जाता है।
1: जी जी।
0: इसके निदान के लिए क्षतिग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए।
1: जी जी।
0: और तीसरा, कार्बोरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, लेकिन रासायनिक दवा का छिड़काव फल तोड़कर ही करना चाहिए।
1: अच्छा, इस तरह ही कद्दू बरगी सब्जी इनके बाद। भैया, टमाटर की भी खेती बड़े पैमाने पर होता है, तो हमें कौन कौन किरवा लागत है और मैं का निदान में बताऊँ आप।
0: किसान भाइयों, मुख्य रूप से इसमें फल बेदक सुंडी लगती है। इस कीट की सुंडी टमाटर के कच्चे फलों में छेद करके उसके गूदे को खाती है।
1: जी।
0: खाते समय सुंडी के शरीर का अगला हिस्सा छेद के अंदर रहता है और आधा हिस्सा छेद के बाहर रहता है।
1: अच्छा,
0: जिस फल पर यह कीट सुराख कर देता है उसमें आसानी से फफूंदी का प्रकोप हो जाता है।
1: जी जी।
0: और फल पूर्ण रूप से सड़ जाता है। इस कीट के प्रकोप से कभी कभी 60% तक पैदावार कम हो जाती है।
1: ये बात भैया।
0: इस कीट की सुंडी का प्रकोप हरे फलों में ही होता है, इसलिए जब फल पक जाए तो छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती है।
1: यानी जब हरियर रहा तब

0: ज्यादा लागत
1: तब।
0: में।
1: हाँ दूसरा जो है डेल्टा मेथरीन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इसका नियंत्रण किया जा सकता है।
0: अच्छा,
1: और रोपाई के समय 14 लाइन टमाटर के बाद 1 लाइन गेंदा की लगाने से टमाटर की फसल का बचाव काफ़ी हद तक होता है।
0: अच्छा,
1: सावधानी रूप में गेंदे की रोपाई 40 दिन की पहुँच से करते हैं, जबकि टमाटर की 25 दिन की पहुँच से करनी चाहिए।
0: ये बात भैया भैया हो, सफेद मक्खी भी लागत है मेरे का।
1: हाँ किसान भाइयों, जो दूसरा मुख्य कीट है सफ़ेद मक्खी है। इस कीट के शिशु तथा वयस्क दोनों ही पौधों की पत्तियों से रस चूसते हैं तथा गुरचावा रोग के विषाणु से पौधों को ग्रसित कर देते हैं।
0: अच्छा,
1: पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा फल देने की क्षमता घट जाती है, और
0: अच्छा,
1: कभी कभी रोग ग्रसित पौधे फल विहीन हो जाते हैं और पूरी की पूरी फसल समाप्त हो जाती है।
0: निदान का है भैया?
1: किसान भाइयों, पौधशाला ज़्यादा घनी नहीं होनी चाहिए। पौधशाला को एग्रोनेट जाली से ढकना चाहिए जिससे कि सफ़ेद मक्खी उसमें घुस न पाए,
0: जी
1: और इमीडाक्लोपिड नामक रसायन से बीज उपचार
0: हाँ
1: 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करने से इसका नियंत्रण बहुत ही लाभकारी
0: मतलब ये
1: है।
0: बेहन डालत की करे के चाहिए
1: हाँ,
0: भैया।
1: यह 40-45 दिन तक पौधों को इस मक्खी से सुरक्षित रखने में सक्षम है।
0: भैया हो, राणा प्रताप सिंह जी, हम कही बहुत ही बढ़िया बताया कि औद्यानिक फसलन में कीटनाशकन का प्रयोग, यानी कौन कौन किरवा लागत इनका प्रयोग करे से निदान मिलत है। अगर हमारे किसान भाई ये सब बातन पर ध्यान दें तो उनका जरूर फायदा होए। आपकी जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: औद्यानिक फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग, इस विषय पर राणा प्रताप सिंह से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत अभी आपने सुनी। कार्यक्रम था कृषि जगत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज सुनिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना की वार्ता, एंजाइना को समझें।
1: एंजाइना एक तरह का दर्द होता है जो कि हृदय की बीमारी में पाया जाता है, खासकर उन बीमारियों में जिनमें हार्ट की जो धमनियां होती हैं उनमें जाम आ जाता है। एंजाइना दो तरह के होते हैं। एक तो एंजाइना होता है जब हम कोई काम करते हैं या चलते हैं, तो उसे हम लोग एफर्ट एंजाइना कहते हैं। या फिर दूसरे तरह का एक एंजाइना होता है जो कि बैठे बैठे भी छाती में दर्द हो जाए, तो उस तरह को एंजाइना को हम लोग रेस्ट एंजाइना कहते हैं। एंजाइना की बीमारी में जो दर्द होता है वो हमारे छाती के बीच वाले भाग में होता है और एक जगह नहीं होता, जबकि पूरी जगह पूरे छाती में फैल करके होता है। और कई बार वो हाथ, आपके बाएँ हाथ के अंदर वाले हिस्से में, या फिर आपके जबड़े में, या फिर आपके पेट की तरफ भी वहाँ से होकर के जा सकता है। जब एंजाइना होता है तो उसको हम लोग चार भागों में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम लोग ग्रेड्स ऑफ एंजाइना कहते हैं। पहली ग्रेड का एंजाइना वो होता है जब हम बहुत मेहनत या बहुत काम करते हैं तब होता है। दूसरा एंजाइना जब हम कोई अपना मामूली और अपना साधारण और अपना काम करते हैं तब होता है। और तीसरा एंजाइना तब होता है जब हम अपने साधारण से कम काम करते हैं तब होता है। और चौथा वाला एंजाइना बैठे बैठे हो जाता है। ये जो ग्रेड्स हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारी बीमारी की गंभीरता को हमें बताता है। हमें एंजाइना का पता कैसे चलेगा? अगर आपको कोई सामान लेकर के चलने में पहले दर्द नहीं होता था, पर अब आप जब सामान लेकर के चलते हैं और आपके छाती में भारीपन महसूस होता है, तो वो एंजाइना हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से है, आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, तो भी आपको अगर कभी भी छाती में इस तरह का दर्द हो तो आपको इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि ये दर्द गैस का नहीं, हो सकता है एंजाइना का दर्द हो। बहुत से लोग ये बारे में सोचते हैं कि हमने खाना खा लिया तो हम चल दिए तो उसके बाद गैस बनने लग गई, हमें डकार आने लग गई, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई बार एक तरह की बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम लोग पोस्टप्रांडियल एंजाइना, यानी खाना खाने के बाद होने वाला छाती में दर्द एंजाइना का। ये तब होता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का जो खून का बहाव है हमारे पेट की नसों में ज़्यादा हो जाता है और हमारी हार्ट की नसों में कम हो जाता है। तो जब हम उस वक्त चलते हैं तो वो खून का बहाव पहले से ही कम है, तो इसलिए वो ज़्यादा पहले जो दर्द जो है वो हमें ज़्यादा चलने पे हो वो ना हो करके अब जल्दी वो दर्द हो जाता है। तो इसलिए

0: हार्ट के मरीजों से हमेशा ये कहा जाता है कि जब वो खाना खाएं तो उसके बाद कम से कम 1 घंटे तक ज़रूर आराम करें और मेहनत का कोई काम ना करें, ताकि हम लोग पोस्ट प्रांडियल एंजाइना को बचा सकें। अब एंजाइना की बीमारी जो है वो होती किन किन लोगों में ज़्यादा है? सबसे पहले तो एंजाइना की बीमारी किसी को भी हो सकती है, पर ये बीमारी पुरुषों में ज़्यादा होती है और महिलाओं में जब तक उनकी महावारी हो रही होती है तब तक उन्हें हृदय की बीमारी एंजाइना होने की संभावना कम होती है, क्योंकि उनके अंदर के हॉर्मोन्स जो है वो उनकी नसों में हार्ट की कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देते। परंतु जब औरतों की महावारी ख़त्म हो जाती है तो उनमें अपनी उम्र के बराबर के पुरुषों से 2 गुना हार्ट की बीमारी होने की संभावना रहती है, खासकर वो औरतें जिनको डायबिटीज़ हो, जिनको ब्लड प्रेशर हो, जिनमें मोटापा हो या फिर जिनको थायराइड की बीमारी हो। तो इस बातों से हमें ज्ञात रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमें हमेशा बचाता है। फिर हम एंजाइना को पहचाने कैसे? अगर आप चलें और उसमें आपको छाती में दर्द, भारीपन हो जाए तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने पास के डॉक्टर से जा कर के अपनी ECG की जाँच करानी चाहिए, और अगर ECG नॉर्मल आए तो उसमें एक जांच होती है जिसे कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, जिसपे हम लोग तेज़ चला करके मरीज़ की जांच करते हैं, तो उससे भी पता चल सकता है कि ECG में बदलाव आते हैं तो वो एंजाइना है कि नहीं। बचाव का सबसे अच्छा तरीका, अपना मानसिक संतुलन अच्छा रखें, शांत रहें, अपनी शुगर और डायबिटीज़ चेकअप कराते रहें, खासकर 40 साल की उम्र के बाद, अपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखें, नियमित हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, जो कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज तेज़ चलना जिसे ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, और आखिरी में अपने मन को शांत रखें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर पीयूष सक्सेना की वार्ता एंजाइना को समझें।

श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे सुनवाएंगे रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। श्री राम चरित मानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे से। फिल्मों से भजन कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सुबह 7:30 पर राधिका मोहन मोहित्रा का सरोद वादन और दोपहर 12:15 पर पंडित शारदा सहाय का तबला वादन।

अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनना न भूलेगा रोज की ही तरह सुबह 8:45 पर प्रस्तुत होगी सुंदरम तिवारी की। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9:00 10:30 पर 12:30 पर 7:30 पर और रात 8:15 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर मनीषा निरखे और शाम 7:45 पर अरुण गुलवाणी से गीत भजन का आनंद लीजिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे शोभा लाल और साथी शैल सिंह, और दोपहर 2:30 पर ब्रजभान सिंह यादव और साथी सुशीला देवी, सुभाष चंद्र यादव और साथी। सुनिएगा इनके स्वरों में लोकगीत।

दिन में 11:15 पर बच्चे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगे बाल संग। 1:15 श्रोता अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गानों का आनंद लेंगे। कार्यक्रम होगा हेलो अनुरोध और प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 5:00 ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। इसमें सुनवाएंगे नीरज कुमार तिवारी से बाल कविताएं। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी होगा 5:15 पर। इसमें सुनिएगा आज का आकर्षण हेलो युवा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता। आधुनिक हिंदी साहित्य में ग्राम में जीवन, साथ ही फूलचंद्र और साथियों से लोकगीतों का भी आनंद लीजिएगा। 8:00 श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। 8:30 पर आज इतवार है कार्यक्रम में नरेश मिश्र की लिखी झलकी सुनवाएंगे बस आई नीम हकीमों से। और 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कह कर।

0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्दझाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान् विषयान् समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमंत्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मंत्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा संपर्क शिक्षा पारस्परिक जनसंबंधादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनम् पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन

0: सः। कनाडादेशस्य त्रिदिवसीययात्रायां भविष्यति। वाणिज्यमन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापारनिवेशभारतकनाडा व्यापकार्थिकसहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्यसूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000तम वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणकी सञ्चेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे 3:30 मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

अयोध्या में 14 वर्षों की लंबी अवधि के बाद कुटुंबियों तथा अयोध्या वासियों से श्री राम के मिलन का अद्भुत दृश्य उपस्थित है। माता कौशल्या एकटक पुत्र को निहार रही हैं। मन में गर्वयुक्त सहज उत्कंठा घुमड़ रही है कि उनके इस कोमलतन पुत्र ने किस प्रकार रावण तथा अन्य भीमकाय राक्षसों को मारा होगा। श्री राम लक्ष्मण और सीता को संग लेकर जब उपस्थित जनसमुदाय महलों की ओर चला तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तोरण द्वारों

अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस संगीत में पाठ स्वर था अनुराधा पौड़वाल का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मों से भजन।

फिल्मों से भजन कार्यक्रम में अभी हमने आपको सुनवाया चार धाम फिल्म से ये भजन, सुरेश वाडकर और रविंद्र साठे के स्वर थे, उदय शंकर प्राणी की शब्द रचना, सुरेंद्र कोहली का संगीत, और अब लेकर आए हैं ये केदारनाथ फिल्म से भजन, अमित त्रिवेदी का स्वर है, अमित भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का ही संगीतबद्ध किया हुआ ये भजन है, लीजिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा सहित देश के 47 अलग अलग स्थानों पर कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले।

0: ले उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
1: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है।
3: अपने काम को खुद एनालाइज करिए, खुद उसका विश्लेषण करिए, ये काम मैंने किया, मैं इसे 100% सैटिस्फाइड हूं, क्या और किसी तरीके से किया जा सकता है, और बेहतर ढंग से किया जा सकता है, और हर काम में इंप्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है। और एक दिन में बहुत लंबी लंबी छलांग मारनी है ऐसा भी मत सोचिए, टेक स्मॉल स्टेप्स, दैट इज ग्रोथ, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, आपने ये हमेशा जीवन में आप।
1: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
4: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
1: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में 20 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना की चर्चा करते हुए इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बांदा प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
6: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नित नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
1: उधर अयोध्या में कल तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP-MLA सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है, लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है।

महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह और 30 अज्ञात समर्थक भी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल फिर वृद्धि की गई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में करीब 86 पैसे और डीजल में करीब 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम कल घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। IPL मुकाबले में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच को पंजाब ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के बल पर 7 विकेट से जीत लिया। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ की टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उसने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। इस हार के साथ IPL के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर समाप्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए IPL मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राधिका मोहन मोहित्रा का सरोद वादन, राग है भटियार।

आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं लखन लाल भट्ट। तो लीजिए सुनिए राधिका मोहन मोइत्रा का सरोद पर बजाया राग भटियार।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राधिका मोहन मोइत्रा का सरोद पर बजाया राग भटियार। आपके साथ तबले पर संगत की थी लखन लाल भट्ट ने, और साथ ही आपने सुना था वाद्य वृंद रचना। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। अब सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो

0: होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल

0: होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने

0: अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal, including reopening of Strait of Hormuz, largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia.

0: with Rubio is a front-page headline in Hindustan Times, while the Tribune writes, India flags energy crisis. State Secretary tows U.S. oil, extends Trump's invite to Modi to visit White House. Another headline in Hindustan Times says, headway in Iran-U.S. talks raises truce hopes. Quoting Defense Minister Rajnath Singh, a Sunday pioneer, headline says, India to be biggest weapon exporter in 25-30 years, adding the government wants private sector share in defense production to rise to 50%. The Hindu reports on new law Viksit Bharat Jiramji replacing the 20-year-old MG Narega, set to come into effect from 1st of July, with draft rules open for feedback till 3rd week of June, under the headline, Big Poor States to Get Higher Funds Under Government's New Rural Job Scheme. Hindustan Times editorial writes how Sikkim showcases a thoughtful vision of development while respecting tradition and an exemplary social harmony to its education sector, opening the doors to the future. More red, white and blues for green card applicants, states the Economic Times, as new policy for U.S. immigration may force permanent residency seekers to return home for paperwork. And finally, the Sunday Times reports that only six states now have fertility rate above replacement level. The paper refers to latest sample registration report of 2024. And with that, it's back to Ganucha.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against four accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderweep Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना पहले इस वक्त की खास खास खबरें वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुजाकिरात करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को भी शामिल किया जाएगा महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक टीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दीली के केस में चार मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है अब खबरें तफसील से वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे तवक्कु है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादला ख्याल करेंगे वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से चार दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा अहम टेक्नोलॉजीज तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तवानाई की फराहमी कनेक्टिविटी तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत बहुत से शोबों में दोतरफा तआवुन में ठोस पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत और अमरीकी आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इरादा किया और मुजाकिरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ियात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया वजीर खारजा जनाब रूबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकफ साझा किए पेश है एक रिपोर्ट

0: शिकायत या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MGNREGA 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक उस जाब्तों के मुसवदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वजह किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि अबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायम कमेटी के जाब्तों मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्ते इंतजामी अखराजात के जाब्ते व शिकायत के इजाले केस से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मुसवदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। VBGRAM G Act 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम

0: सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वज़ किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि अबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायम कमेटी के जाब्तों मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्ते इंतजामी अखराजात के जाब्ते व शिकायात के इजाले केस से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मुसव्वदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। VBGRAMG Act 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकिरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस मुआहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिद अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयान देने का इल्जाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक गोलियों के चलने की आवाज़ सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नज़दीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ व हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमरीका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाकये के नज़दीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाति बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज 2 मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया आसिया।

0: राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन व तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली NCR समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान RP सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक TCS जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

फिर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और हम लेकर हाजिर हैं आपका प्रिय कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। मैं हूं आपके आज के कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे।

श्रोताओं, शिक्षा केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये जीवन को दिशा देने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। तो श्रोताओं, हमारा आज का विषय भी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, यानी योग्यता आधारित शिक्षण। क्यों है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता?

लिखना और परीक्षा में अच्छे अंक लाना ही माना जाता था, लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज दुनिया को ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो केवल किताबें याद न करें बल्कि समस्याओं का समाधान भी खोज सकें, आत्मविश्वास से अपनी बात रख सकें और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। यही कारण है कि शिक्षा में समय के साथ आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक हो गया है। आज शिक्षा के उद्देश्य केवल व्हाट टू लर्न नहीं बल्कि हाउ टू लर्न और हाउ टू अप्लाई बन चुके हैं। अब बात आती है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग है क्या। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों की वास्तविक समझ, कौशल, व्यवहार और जीवन में उपयोग करने की क्षमता पर ध्यान दिया जाता है। इसमें बच्चे केवल उत्तर याद नहीं करते बल्कि सोचते हैं, समझते हैं, प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं और इन सबसे ऊपर जिज्ञासु बनते हैं और सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाते हैं।

अब श्रोताओं इसे एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि यदि बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है तो केवल ग्रामर रूल्स याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो अपनी बात सही ढंग से व्यक्त कर सके, दूसरों को समझ सके और आत्मविश्वास से संवाद कर सके, यही तो है योग्यता, यही है कॉम्पिटेंसी। समय के साथ शिक्षा प्रणाली में बदलाव क्यों ज़रूरी है ये भी जानते हैं। तो श्रोताओं इस पर मेरा ये मानना है कि समाज, तकनीक और जीवन शैली जब लगातार बदल रही है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का जब दौर हम देख रहे हैं, तो ऐसे में वही पुरानी रटने वाली शिक्षा बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कैसे कर सकती है। कहा भी गया है कि अगर हम बच्चों को आज वैसे ही पढ़ाएं जैसे कल पढ़ाते थे तो हम उनका भविष्य उनसे छीन लेते हैं, और ये कहा था जॉन डीवी ने। आज बच्चे को केवल जानकारी नहीं चाहिए श्रोताओं, बल्कि क्रिएटिविटी, संरचनात्मकता, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलचाल की भाषा, अपनी बातें कहने की, दूसरों की सुनने की, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, किस तरीके से हम किसी चीज़ को एनालाइज करें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचें, साथ ही टीम वर्क कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, ये सब क्षमताएं आती हैं इसके अंतर्गत। और इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। नई शिक्षा नीति की बात करें श्रोताओं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात करें तो भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में समझ, कौशल, नैतिक मूल्य और जीवनोपयोगी क्षमताओं को विकसित करें।

तो श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ समझ ज़रूर आ गई होंगी और अब फोकस केवल मार्क्स पर नहीं बल्कि लर्निंग आउटकम्स यानी शिक्षम अधिगम पर भी हम करेंगे। इस बात का आज हम प्रण लेते हैं और इसी बात पर हम अपना वायदा पूरा करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। क्योंकि आशा और उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है।

श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गाना ज़रूर पसंद आ रहा है और हमारा आज का कार्यक्रम भी। तो हम बात कर रहे थे अभी कि हमें फोकस करना है अब लर्निंग आउटकम्स पे, ना कि मार्क्स पर। और इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की बदलती भूमिका की बात करें तो आज शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाले नहीं रहे श्रोताओं, अब शिक्षक एक गाइड, एक मेंटर और फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चे के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान सके। एक शिक्षक दरवाज़ा खोल सकता है श्रोताओं, लेकिन उसमें प्रवेश एक शिक्षार्थी को स्वयं करना होता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग में शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, पढ़ाई का वास्तविक महत्व अगर समझना हो तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पढ़ाई केवल नौकरी पाने का एक माध्यम नहीं है। शिक्षा मनुष्य को संस्कार, विचार और सही गलत की पहचान देती है। और हमारे वेद पुराणों में, हमारी सुभाषितानी में ये लिखा है कि शिक्षा वो धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही बांट सकता है और छीन भी नहीं सकता है। तो आज जब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है तो केवल डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज असली सफलता की पहचान बनेंगे।

याद रखिए श्रोताओं, प्रश्न पूछना, नई चीजें जानना और अपनी गलतियों से सीखना ही सही अर्थों में अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक, अच्छा विद्यार्थी बनाती है। सफल वही होता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। तो श्रोताओं, एक जिम्मेदार, सक्षम और आत्मनिर्भर नागरिक शिक्षा पद्धति में बदलाव से ही संभव है। तो रुकना नहीं है, कांटे कितने भी हों हमारी राहों में, हमें सब कुछ पार करते हुए एक विजेता बनके आगे निकल चलना है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था

व्यवस्था का समर्थन करें जो बच्चों को रटने नहीं बल्कि समझने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मुझे यानी आपकी आज की कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नई प्रेरणा के साथ। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और यहाँ से प्रसारित होने वाले विविध कार्यक्रम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, संवेदनशील बनिए। याद रखिए ये जीवन क्षणभंगुर है, इसका आनंद लीजिए और साथ ही

0: रुक जाना नहीं।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, और मैं आपकी आज की कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे आपके साथ थी इस सफर पर। अगला कार्यक्रम है फिल्म संगीत, बस कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आपने सुना मेट्रो इन दिनों फिल्म से गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया था प्रीतम ने। और अब लेकर आए हैं आपके लिए हम नमा फिल्म से ये गाना। श्रेया घोषाल के स्वर हैं, मनोज मुंतशिर की शब्द रचना, रॉकी शिव का संगीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख?
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिल्म संगीत कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी नगमा, तुमको मेरी कसम फिल्म से। अंकित तिवारी ने इस गाने को आवाज दी है, विक्रम भट्ट ने लिखा है और प्रतीक वालिया का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में आपको सुनवाएंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है।
3: तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायवी तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु ही फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए दो तीन फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं, वो इनसो होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
2: अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के सीएमओ अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।
4: हमारे जनपद गाजियाबाद में तीन बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम थे, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS

0: जिंक टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब है, और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है।
1: बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं।
2: इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की ही संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेकर जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है, अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकले, और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें।
1: भीषण गर्मी के कारण इस बार प्रदेश में बिजली की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी में लोगों को परेशानी न हो इसे लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्नाव में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने सरैया, शुक्लागंज और गंगा घाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे हुए बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए हैं। यहां SDO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लोड मैनेजमेंट और लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पुराने ट्रांसफार्मरों को हटाकर उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है, और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
3: हीट वेव के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती में सभी CHCs पर जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई, और नगर क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है, और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चलते हैं, और पोखरों के लिए, तालाब के लिए भी पंचायती राज से कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था की।
1: गर्मी का असर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु पक्षी भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेज धूप और जल स्रोतों के सूखने से पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, दूध देने वाले पशुओं के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश के चिड़ियाघरों, लॉयन सफारी में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र में फॉगर शॉवर से तापमान कम किया जा रहा है, भालू लेपर्ड हाउस में कूलर लगाए गए हैं, तो हिरणों के तालाब ट्यूबवेल से भरे जा रहे हैं। गर्मी के कारण सफारी का समय भी बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है।
0: गर्मी और लू से बचाने के लिए जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं तो अंदर, ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं, तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही धूप से बचाने के लिए सफारी क्षेत्र में प्लस जहां पे भी संभव होता है वहां पे छप्पर लगाए जाते हैं फूस के, ताकि उनको बचाया जा सके। डियर एंटीलोप सफारी में है, उनको पर्याप्त तालाब जो भी बने हुए हैं सफारी क्षेत्र के अंदर उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहे सुनिश्चित किया जाता है। तैयारियां की गई हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वन्य जीवों को गर्मी और लू से बचाया जाए।
1: गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं, ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के

0: बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं, जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, जहां से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, उसके नजदीक एक ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थ यात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहां पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है, वहीं से व्हीलचेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है, किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, दो चार कदम की बात छोड़ दें तो।
0: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभु शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध RO वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
2: जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है।
0: साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
4: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में।
5: यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए अब सुनिए देश गान।

0: अभी आपने सुना देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने को है। अब समय हो चला है उर्दू कार्यक्रम सुनने का। ये कार्यक्रम हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं किस्सा चार दरवेश। प्रेजेंटर हैं शादिया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की है। किस्सा चार दरवेश का आज सुनेंगे पहला भाग।

तुम सर बसर सुनो। पहला दरवेश यमन के एक मालदार ताजिर का बेटा था। बाप के इंतकाल के बाद बुरी सोहबत में पड़कर उसने सारी दौलत गंवा दी। तंग दस्ती के आलम में वो अपनी बहन के पास गया। बहन ने मोहब्बत से उसकी मदद की, कुछ अशरफियां और तिजारती सामान देकर उसे सफर पर रवाना किया। कई दिनों के सफर के बाद वो एक शहर पहुंचा, मगर रात होने के बाइस शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो किले के करीब बैठ गया। इसी दौरान उसने देखा कि किले की दीवार से एक संदूक नीचे उतारा जा रहा है। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक निहायत हसीन मगर जख्मी दोशीजा खून में लथपथ पड़ी थी, जो दर्द से कराहते हुए बस इतना कह रही थी, ए जालिमो, खुदा तुम्हें इस जुल्म की सजा दे। उसका हाल देखकर दरवेश का दिल भर आया। उसे शहर ले जाकर किराए के मकान में ठहराया और मशहूर जर्राह को बुलाया। जर्राह ने इलाज शुरू किया और कहा, बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है, चंद रोज़ में फाका हो जाएगा। दरवेश दिन रात उसकी खिदमत में लगा रहा। इत्तेफाकन वो सौदागर भी आ गया जिसे दरवेश ने माल अमानत दिया था। उसने माल वापस किया। दरवेश ने सब शहजादी के इलाज पर खर्च कर दिया। कुछ अरसे में शहजादी के जख्म भर गए और हुस्न और निखर गया। शहजादी ने दरवेश से कहा, बिला उज्र मेरी खिदमत में हाजिर रहो, यही मेरी मंजूरी है। दरवेश खिदमत करता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता सारा माल खत्म हो गया और चेहरा फिक्र से जर्द पड़ गया। शहजादी ने परेशानी भांप ली और एक खत लिख कर दिया, फलां पते पर चले जाओ, वहां सैयदी बहार नाम का शख्स मिलेगा, उसे ये खत दे देना। दरवेश खत लेकर फौरन रवाना हुआ। मकसद तक पहुंचा, बाहर एक खूबसूरत जवान निकला, खत लिया, चुपचाप अंदर गया और 11 किश्तियां सरबमुहर ले आया। दरवेश को इज्जत से रुख्सत किया गया। वापस पहुंचा तो परी ने अशरफियां दी और कहा, खर्च में लाओ, खुदा रज़ाक है। दरवेश के दिल में सवाल उठते रहे कि ये अनजान परी कौन है, मगर परी ने पहले ही मना कर रखा था, इसलिए चुप रहा। बाद में शहजादी ने दरवेश को दोबारा शिफियां देकर हुक्म दिया कि यूसुफ सौदागर की दुकान से कीमती जवाहर और उम्दा खिलतें खरीद लाए। जब दरवेश बाजार पहुंचा तो उसने एक नहायत हसीन और जमील नौजवान को देखा, जो ज़ाफ़रानी लिबास में मलबूस था और जिसके गिर्द लोगों का हुजूम लगा हुआ था, वही यूसुफ सौदागर था। यूसुफ ने बड़ी मोहब्बत और खुश अखलाकी से दरवेश का इस्तकबाल किया, उसके वतन और हालात के बारे में पूछा और बेतकल्लुफी से गुफ्तगू करने लगा। दरवेश ने अपना राज पोशीदा रखा, सौदा खरीदा और वापस होने लगा, मगर यूसुफ ने नहायत इसरार से उसे अपनी दावत कबूल करने की दरख्वास्त की। इब्तिदा में दरवेश ने शहजादी को तन्हा छोड़ने के ख्याल से माजरत चाही, लेकिन यूसुफ के खुलूस भरे इसरार पर राजी हो गया। दरवेश जब जवाहर और खिलतें लेकर वापस आया तो शहजादी ने यूसुफ के बारे में तफसील से दरियाफ्त किया। सारा हाल सुनकर उसने दरवेश को वादा पूरा करने और दावत कबूल करने का मशवरा दिया। चुनाचे दरवेश दोबारा यूसुफ के पास गया। यूसुफ नहायत खुशी से उसे एक वसीओ हसीन बाग में ले गया, जहाँ बहते फव्वारे, सरसब्ज दरख्त, रंग बिरंगे फल, चहचहाते परिंदे और आलीशान इमारतें एक दिलकश मंजर पेश कर रही थीं। आखिरकार दोनों नहर के किनारे एक खूबसूरत बंगले में जा बैठे। यूसुफ ने दरवेश को नया लिबास पहनाया, ज़ियाफ़त की, महफिल जमी। अचानक यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मेरी माशूका को भी बुलवाओ, जुदाई से जी नहीं लगता। दरवेश ने हामी भर दी। यूसुफ ने एक तरफ इशारा किया, वहाँ एक बदसूरत औरत बैठी थी। दरवेश देखकर दिल में हैरान हुआ, यही उसकी महबूबा है। खैर, 3 दिन तक महफिल जमी रही, फिर दरवेश ने इजाज़त मांगी। यूसुफ ने खुशी से रुख्सत किया। दरवेश जल्दी घर पहुँचा, 3 दिन की गैर हाजिरी पर शर्मिंदा था। परी ने माफ़ किया मगर कहा, मुफ्त की मेहमानियाँ ही लोगे या बदला भी उतारोगे, जाओ यूसुफ को साथ ले आओ। दरवेश फौरन यूसुफ को लेने गया। यूसुफ ने दावत कबूल कर ली। वापसी पर दरवेश सोचता रहा, दावत तो दे दी मगर घर में तैयारी कुछ भी नहीं, अब मेहमान की खातिरदारी कैसे होगी। यही सोचते सोचते घर के करीब पहुँच गया। जब घर के करीब पहुँचा तो हैरान रह गया, दरवाजे पर धूमधाम मची हुई थी, चारों

तरफ साफ सुथरी सजावट, यसावल और अस्यबरदारी खड़े थे। दरवेश ने सोचा, ये मेरा घर है या कोई और जगह। दरवेश जब हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो वहां की शानो शौकत देखकर हैरान रह गया कि इतने कम वक्त में ये सब इंतजाम कैसे मुमकिन हुआ। इसी दौरान वो बावर्ची खाने की तरफ गया तो देखा कि एक निहायत हसीन मगर सादा लिबास में मलबूस औरत तमाम इंतजाम की निगरानी कर रही है। उसके हुस्न में ऐसी दिलकशी थी कि बगैर जेवर के भी वो चांद की मानिंद रोशन दिखाई देती थी। वो खादिमों को ताकीद कर रही थी कि खाने के जायके, खुशबू और हर इंतजाम में कोई कमी न रहने पाए। शहजादी ने दरवेश को देखकर कहा, यहाँ की फिक्र मत करो, तैयारियां हो रही हैं, जाओ मेहमानों का ख्याल रखो। दरवेश मेहमान खाने में चला गया। यूसुफ ने अपनी माशूका को बुलवाया, वो आई तो यूसुफ खुश हो गया। सब हैरान थे कि इस खूबसूरत जवान को ये बसूरत औरत क्यों पसंद है। एक समझदार ने कहा, इश्क में अक्ल काम नहीं करती, महबूब को

यहाँ की फिक्र मत करो, तैयारियां हो रही हैं। जाओ मेहमानों का ख्याल रखो। दरवेश मेहमान खाने में चला गया। यूसुफ ने अपनी माशूका को बुलवाया। वो आई तो यूसुफ खुश हो गया। सब हैरान थे कि इस खूबसूरत जवान को ये बसूरत औरत क्यों पसंद है। एक समझदार ने कहा, इश्क में अक्ल काम नहीं करती, महबूब को मोहब्बत की नजर से देखो। 3 दिन महफिल जमी रही, चौथी रात सब बेहोश हो गए। सुबह आँख खुली तो खाली हवेली थी। एक कोने में कंबल में लिपटी लाश थी। खोला तो यूसुफ और उसकी माशूका दोनों मरे पड़े थे। दरवेश ने ख्वाजा सिरा से माजरा पूछा। ख्वाजा सिरा ने टालना चाहा, मगर दरवेश की मिन्नतों पर शहजादी के मकान का पता बता दिया। दरवेश सारी रात परी के दरवाजे पर बैठा रहा, कोई ना आया। सुबह परी ने खिड़की से झांका तो दरवेश का दिल खुश हुआ। ख्वाजा सिरा ने अंदर बुला लिया। शाम को परी चांद जैसे हुस्न और शहाना लिबास में निकली। दरवेश दौड़ कर पास गया और हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगा, मगर परी नाराज थी और बोली, 100 तोड़े अशरफी लो और अपने वतन चले जाओ। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए और बोला, अगर माल की लालच होती तो जानो माल कुर्बान न करता। परी ने सर्द लहजे में कहा, चुप रहो, तुम्हारी खिदमत याद है, मगर अब अपना रास्ता लो। दरवेश रोता हुआ बोला, मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मंजिल कभी न मिले। दरवेश इश्क व जुदाई के गम में इस कदर निढाल हो चुका था कि उसका चेहरा पहचाना न जाता था। एक बुजुर्ग ने उसकी हालत देखकर सबब पूछा तो दरवेश ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी। बुजुर्ग को उस पर रहम आया और उसे साथ लेकर शहजादी के पास गए, मगर शहजादी ने इब्तिदा में उससे मिलने से इनकार कर दिया। ख्वाजा सिरा ने नहायत अदब से शहजादी को दरवेश की बेबसी और खस्ता हाली का हाल सुनाया और उस पर रहम करने की दरख्वास्त की। शहजादी ने पहले उसे दारुशिफा में रखने का हुक्म दिया, फिर हकीमों को बुलाया गया। मुआयने के बाद एक हकीम ने कहा कि इश्क का मारा हुआ है और उसका इलाज सिर्फ वसल महबूब में है। आखिरकार शहजादी दरवेश की मोहब्बत, वफादारी और इखलास से मुतासिर हो गई और उसे कबूल कर लिया। उसी रोज़ खामोशी से उन दोनों का निकाह भी पढ़ा दिया गया, मगर निकाह के बाद भी दरवेश के दिल में कई सवाल बाकी थे। वो जानना चाहता था कि शहजादी दरअसल कौन है और उसकी ज़िंदगी के पुरसरार वाक़यात की हकीकत क्या है। जब उसने इन सवालात का जिक्र किया तो शहजादी नाराज़ हो गई और उसे याद दिलाया कि उनके दरमियान ये शर्त तय हुई थी कि वो उसके मामलात में मदाखलत नहीं करेगा। दरवेश ने नरमी से माजरत की, मगर साथ ही ये भी कहा कि जब दो लोग उम्र भर के साथी बन जाएं, तो उनके दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहना चाहिए। शहजादी ने दरवेश से राजदाना अंदाज में अपनी सरगुजश्त बयान करते हुए कहा कि वो दमिश्क के अजीम बादशाह की इकलौती बेटी है। एक रोज़ अचानक उसकी तबीयत मुजमहिल हो गई। ख्वाजा सिरा के मशवरे पर एक खुशरू लड़का शरबत लेकर हाजिर हुआ। शरबत पीने और उस लड़के की शोखिया गुफ्तार से शहजादी की तबीयत बहाल हो गई। चुनाचे उसने इनाम व इकराम देकर उसे मुस्तकिल अपने पास रख लिया। रफ्ता रफ्ता शहजादी को उस लड़के से ऐसी उनसियत हो गई कि एक लम्हा भी उसे नज़रों से ओझल न होने देती। जब मालूम हुआ कि उसका उस्ताद उसकी तमाम कमाई छीन लेता है, तो शहजादी ने उसे उम्दा लिबास, बेहतरीन तरबियत दिलाई। वक्त गुजरने के साथ ये ताल्लुक गहरी मोहब्बत में बदल गया, यहाँ तक कि शहजादी उसके बगैर बेकरार रहने लगी। मगर ख्वाजा सिरा बार बार तंबीह करता रहा कि अगर ये राज आश्कार हो गया तो बड़ी रुसवाई और बदनामी का सबब बनेगा। ख्वाजा सिरा ने शहजादी को खबर दी कि वो नौजवान अब सिने बुलूग को पहुंच चुका है, उसके चेहरे पर जवानी के आसार नुमाया होने लगे हैं, इसलिए दरबानों और अहले महल ने उसका अंदर आना बंद कर दिया है। ये खबर सुनकर शहजादी सख्त मुस्तरिब और गमजदा हो गई, गोया उस पर क़यामत टूट पड़ी हो। आखिरकार उसने ख्वाजा सिरा को हुक्म दिया कि उस नौजवान के लिए एक शानदार जवाहरात की दुकान कायम की जाए। कुछ ही अरसे में उसकी तिजारत इस कदर मशहूर हो गई कि उमरा और बादशाह तक अपनी कीमती खिलतें और जवाहर वहीं से ख़रीदने लगे। वो नौजवान यूसुफ था। शहजादी ने खुफिया तौर पर एक सुरंग भी हवेली से महल तक बनवा दी, जिसके ज़रिए यूसुफ हर शब उससे मुलाकात के लिए आता और सुबह होने से पहले वापस चला जाता। मुद्दतों यही सिलसिला जारी रहा। एक दिन यूसुफ मुलाकात के लिए ना आया तो शहजादी

बेहद परेशान हुई। तहकीक पर मालूम हुआ कि यूसुफ एक बाग खरीदना चाहता है, मगर उस बाग के साथ एक बांदी को भी खरीदना लाजमी है और वो दोनों की कीमत अदा करने से कासिर है। शहजादी ने बिला तामुल बाग और बांदी दोनों खरीद लेने का हुक्म दे दिया। उसके बाद यूसुफ और शहजादी की मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर कायम रहा। एक रोज शहजादी ने उस बाग को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके लिए यूसुफ इस कदर बेताब रहता था। वो दाई के साथ वहां पहुंची तो बाग की दिलकश फिजा, सरसब्ज दरख्त, रंगीन फूल और बहती नहरों ने उसका दिल मोह लिया। शाम ढले यूसुफ निहायत अदब से मिला और उसे एक रोशन व आरास्ता बारादरी में ले गया, जहाँ चरागा, आतिशबाजी और चांदनी ने महफिल को और भी दिलनशी बना दिया। इसी दौरान एक बसूरत बांदी शराब लेकर हाजिर हुई। शहजादी ने नागवारी से उसके बारे में पूछा तो यूसुफ ने बताया, ये इसी बाग के साथ खरीदी गई बांदी है। कुछ ही देर में यूसुफ नशे में इस कदर बेखुद हो गया कि आदाब हुदूद फरामोश कर बैठा और बांदी भी बेहयाई पर उतर आई। शहजादी दिलगरफ्ता होकर वहां से उठने लगी, मगर यूसुफ ने मिन्नत समाजत करके उसे रोक लिया। उसे खूब समझ आ गया था कि अगर शहजादी इस हालत में यहाँ से गई तो कल सुबह उसकी खैरियत नहीं होगी। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर शहजादी भी रुक गई। शहजादी बेहोश हो गई। होश आया तो देखा कि यूसुफ तलवार लिए उसकी जान लेने पर आमादा है, बल्कि अपनी दानिस्त में मार ही दिया था समझो। परी ने गिड़गिड़ा कर आजजी के साथ कहा, मुबादा हो कोई जालिम तेरा गरेबा गीर, मेरे लहू को तू दामन से धो, हुआ सो हुआ। इसके बाद शहजादी बेहोश हो गई। यूसुफ ने मुर्दा समझकर संदूक में बंद किया और किले की दीवार के नीचे लटका दिया। शहजादी आगे कहती है, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। अगर मैं खूबसूरत चेहरों की दीवानी ना होती तो वो बदबख्त मेरी जिंदगी का दुश्मन न बनता। अल्लाह ने यह काम किया कि तुम्हें वहां पहुंचा दिया, वरना मैं मर चुकी थी। वहां से दरवेश ने उस संदूक को निकाला, जख्मों का इलाज किया और परी को नई जिंदगी मिली। शहजादी ने दरवेश से निहायत ममनूनियत के साथ कहा कि उसने जिस खुलूस और जाफिशानी से उसकी खिदमत की, उसके सिले में उसने अपने खजांची सैयदी बहार के नाम खत लिखा था ताकि वालदा को अपनी खैरियत की इत्तला दे सके। चुनाचे शहजादी ने दरवेश को यूसुफ से दोस्ती बढ़ाने का मशवरा दिया और फिर दावत के बहाने यूसुफ और उसकी बांदी को बुलाकर उनसे इंतकाम ले लिया। उसके बाद उसने अपनी पूरी सरगुजश्त इब्तिदा से इंतहा तक दरवेश के सामने बयान की और कहा कि अब इस शहर में रहना दोनों के हक में मुनासिब नहीं है। रात के आखिरी पहर दो तीज रफ्तार घोड़े तैयार किए गए। शहजादी ने मर्दाना लिबास पहना, हथियार बांधे और दरवेश के साथ शहर छोड़ दिया। सफर के दौरान उसने दरवेश से कहा कि उसने उसकी खातिर माल, सल्तनत और वालिदैन सब कुछ छोड़ दिया है, कहीं वो भी बेवफाई ना कर दे। दरवेश ने वफादारी का यकीन दिलाते हुए कहा कि हर शख्स यूसुफ जैसा नहीं होता। सफर करते करते दरवेश और शहजादी एक ऐसे वीरान मैदान में पहुंचे जहां दूर दूर तक आबादी या इंसान का कोई निशान न था। इसी दौरान उन्हें एक अजीम दरिया दिखाई दिया, जिसके किनारे खड़े होकर उन्होंने देखा कि हर सिमत पानी ही पानी फैला हुआ है और पार जाने की कोई सूरत नजर नहीं आती। शदीद थकन और भूख प्यास से निढाल शहजादी ने आराम की ख्वाहिश जाहिर की। करीब ही एक घना पीपल का दरख्त था, दोनों उसके साये में बैठ गए। दरवेश ने बहुत गौर किया, मगर न कोई कश्ती दिखाई दी और न किसी आदमी का पता चला। आखिर वो शहजादी को वहीं छोड़कर किसी सवारी या कश्ती की तलाश में निकल गया, लेकिन जब मायूस होकर वापस आया तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि शहजादी दरख्त के नीचे मौजूद ही न थी, गोया अचानक गायब हो चुकी हो। शहजादी के अचानक गायब हो जाने के बाद दरवेश दीवानों की तरह उसे ढूंढने लगा। कभी दरख्तों पर चढ़ता, कभी जंगलों में भटकता, मगर उसका कोई सुराग न मिला। आखिर उसके दिल में ये ख्याल बैठ गया कि शायद किसी जिन ने शहजादी को उठा लिया है। गम मलाल में उसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली, कपड़े फेंक दिए और फकीराना जिंदगी गुजारने लगा। दिन भर बियाबानों में शहजादी को तलाश करता और रात जहाँ थक जाता वहीं पड़ा रहता, मगर

अभी आपने सुना सुगम संगीत। आज की कलाकार थी मनीषा निर्खी। आपने सुना इनके स्वर में गीत और भजन। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने को हैं, बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि

हमलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं शोभा लाल और साथी और शैल सिंह। सुनते हैं सबसे पहले शोभा लाल और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, और अब लेकर आए हैं आपके लिए शोभा लाल और साथियों के स्वर में गंगा गीत।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में और अब हम लेकर आए हैं शोभा लाल और साथियों के स्वर में ये कहरवा।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में अभी आपने सुना शोभा लाल और साथियों के स्वर में देवी गीत, गंगा गीत और कहरवा। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शैल सिंह के स्वर में देवी गीत और दादरा। पहले सुनिए देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं शैल सिंह के स्वर में ये दादरा।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कलाकार थे शोभा लाल और साथी और शैल सिंह। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

जी हाँ, अपनी आकाशवाणी सुनते रहिए श्रोताओं। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, और अब समय हो चला है फिल्म संगीत का।

ये गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से। शंकर महादेवन एलिसा मेंडोसा की आवाजें हैं, जावेद अख्तर की शुद्ध रचना, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

लूडो फिल्म से ये गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। लिखा है संदीप श्रीवास्तव ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना था शेर शाह फिल्म का गाना, तनिष्क बागची और जुबिन नौटियाल की आवाजें थी, गीत और संगीत तनिष्क बागची था का था। और लीजिए अब सुनिए डॉन एसआर के फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

मुंबई सागा फिल्म का गाना आपने सुना था जुबिन नौटियाल की आवाज में, मनोज मुंतशिर की शब्द रचना, तनिष्क बागची का संगीत। और आइए अब सुनते हैं कोई जाने ना इस फिल्म का गाना, अमाल मलिक, अरमान मलिक और तुलसी कुमार की आवाजें हैं।

मुंबई सागा फिल्म का गाना भी आपने सुना था, गीत मनोज मुंतशिर का था, नहीं माफ कीजिएगा, कोई जाने ना फिल्म का गाना अभी आपने सुना था, कुमार की शब्द रचना थी, अमाल मलिक का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए छिछोरे फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज़ है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और प्रीतम का संगीत है।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी नगमा, फिल्म वेदा से अमाल मलिक और अरिजीत सिंह की आवाज़ें हैं। कुणाल वर्मा ने इसे लिखा है और संगीत अमाल मलिक का है।

वेदा फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। अगली उद्घोषणा के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद
1: जय हिंद।
0: तो आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम बाल संग। मैं हूँ आपकी दीदी हेम
1: और मैं रचना। तो बच्चों आपने अपना रेडियो सेट तो ट्यून कर लिया होगा ना?
0: बिल्कुल कर लिया होगा बच्चों ने।
1: और यदि नहीं किया तो भाई आप जल्दी से ट्यून कर लीजिए, क्योंकि हम दो दीदियां हैं आपके साथ।
0: दीदी मैंने कहा ना बीच में कि बच्चे हमारे इतने जो है कार्यक्रम सुनने के लिए दो अंदर से इतने उत्सुक होते हैं कि वो फटाफट अपने रेडियो सेट के पास बैठ जाते हैं और ट्यून करके कि सुनते हैं अपने दोस्तों का भी कार्यक्रम और कौन कौन सी दीदी हैं। तो हमारे जो बच्चों को अपना कार्यक्रम सुनने का बड़ा क्रेज रहता है, और जानती है जैसा कि आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक और खास भी है, खुद से बातें करना क्यों जरूरी है।
1: दीदी कई बार मैं भी अकेले बैठती हूँ ना, तो जो है अगर मन में कुछ उथल पुथल चलती है ना, तो अपने बातें हाँ ना में

0: करती रहती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और तो बच्चों, अक्सर हम अपने दोस्तों, परिवार और शिक्षक से तो बातें करते ही रहते हैं,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से बात की है? यदि नहीं की ना, तो अपने मन की बातें खुद से करना भी बहुत जरूरी होता है, और जो हमें समझदार, आत्मविश्वासी और खुश बनाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रेरणादायक कार्यक्रम, खुद से बातें करना क्या होता है। बच्चों, खुद से बातें करने का मतलब ये नहीं कि कोई अकेले में अजीब तरीके से बात करे। आप ये बिल्कुल अर्थ मत निकालिएगा। इसका अर्थ है अपने मन की बातों को समझना। जब आपने कोई काम दिन भर में किया है, तो जब आप कहीं बैठते हैं एकांत में, शांत में, या आप लेटते हैं, तो आपको अपने मन में ये बात जरूर सोचते हैं कि आज हमने क्या किया। और ये सोचना भी बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है,
0: जरूरी
1: है ना?
0: है।
1: जैसा कि मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे किस बात की खुशी है, मुझे किस बात की चिंता है, मैं अपनी गलती कैसे सुधार सकता हूँ, कैसे सुधार सकती हूँ, तो ये बातें जरूर आपके मन में आती हैं, है ना? मैंने
0: बिल्कुल
1: सही कहा
0: बिल्कुल
1: ना?
0: दीदी। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी जब उथल पुथल होती है मन में ना, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और जब अपने मन की बात को आप समझ लेते हैं, तो हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं दीदी।
1: बिल्कुल।
0: और बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि हमें खुद से बातें करना क्यों जरूरी होता है? क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो बात करने से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो बढ़ता है। जब हम खुद को समझते हैं, तो अपने मन को सकारात्मक बातों के अंतर्गत लाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी हमारे मन में गलत गलत भावना विचार पनपने लगते हैं, तो नहीं पनपना चाहिए। यदि आत्म इससे जो है सकारात्मक बातें सोचेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि परीक्षा कठिन लगे,
1: हाँ।
0: तो खुद से कहिए कि मैं मेहनत करूंगा, करूंगी और अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये छोटी छोटी बात हमारे मन को बहुत मजबूत बनाती है बच्चों।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों, कभी कभी जैसे पढ़ाई या प्रतियोगिता या दोस्तों की बातों से मन परेशान हो जाता है ना, तो ऐसे समय में यदि हम शांत होकर स्वयं से बात करें, तो मन हल्का महसूस करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जैसे गलती होना सामान्य बात है, सभी लोग गलती करते हैं, तो मैं फिर कोशिश करूंगा, करूंगी, कहने का मतलब कि हम फिर से उस कोशिश कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल मत सोचिए कि है मैंने तो गलती कर दी, अब इसको कैसे पूरा होगा। तो आप कोशिश करते रहिए। जैसे एक आपने हमेशा, मैं कहती हूँ हर कार्यक्रम में कहती हूँ बच्चों, कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं
0: कभी
1: होती,
0: नहीं
1: है ना?
0: होती है।
1: तो आप हमेशा कोशिश करते रहिए, इससे चिंता कम होगी और मन शांत होगा। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो खुद से बात करके सही और गलत के बारे में सोच सकते हैं।
0: हाँ, तो दीदी जैसे आप गलती के बारे में बता रही थी, तो भाई इसका तो मतलब यही होता है कि हमेशा खुद की तारीफ ही करते रहे, ये सही नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: सही सेल्फ टॉक वो है जिससे हम अपनी गलतियों को पहचाने, लेकिन खुद को नीचा ना दिखाएं। उदाहरण के लिए, जैसे कि मुझसे कोई गलती हो गई है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ। जैसा कि आप अभी बता रही थी कि आप, ये एक उनकी स्वस्थ सोच होगी कि मैं अगर गलत हूं, तो मुझे उस विषय में आगे बढ़ करके, सोच करके उस बात को सुधारना होगा।
1: बिल्कुल। अब देखिए, दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई। अब इसमें एक एग्जांपल मैं दूंगी कि चलिए, दोस्त पढ़ाई छोड़कर खेलने के लिए अगर आपको बुला रहे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि दोस्त अगर आपकी पढ़ाई छोड़कर कहते हैं कि छोड़ो, चलो खेलने के लिए,
0: खेलने के लिए,
1: लेकिन आपका होमवर्क अभी बाकी है, तो आपके मन में जरूर ये बात आएगी कि नहीं, हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, पहले काम पूरा करना जरूरी
0: है।
1: तो यही बात आपको उन्नति की ओर ले जाता है, यही बात आपको क्या करता है, अच्छा बनाता है। तो इस प्रकार खुद से बात करना हमें जिम्मेदार बनाता है। बच्चों, दुनिया के कई महान लोग अपने विचारों को समझने के लिए अकेले समय बिताते थे। स्वामी विवेकानंद हमेशा आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच पर जोर देते थे, है ना? वे कहते थे कि इंसान के भीतर अपार शक्ति होती है। इसी प्रकार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी अपने सपनों और लक्ष्यों पर गहराई से सोचते थे, और यही आदत उन्हें महान वैज्ञानिक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती थी।
0: बिल्कुल दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। भाई, हम अपने महापुरुषों से तो बात सीख सकते हैं, और अच्छी अच्छी बातें उनकी, जब हमारी जैसे छुट्टियां चल रही हैं, तो हम उनकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं ना दीदी।
1: बिल्कुल।
0: और बच्चों, अब सवाल उठता है कि खुद से अच्छी बातें हम कैसे करें। इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाइए, जैसे हर दिन थोड़ा शांत समय बिताइए,
1: बिल्कुल,
0: कुछ मिनट अकेले बैठकर अपने दिन के बारे में सोचिए, अपनी अच्छाइयों को पहचान, और अपने आप से ये कहिए कि मेहनती हूं मैं सीख सकता हूं, सीख सकती हूं, और हाँ, अपनी गलतियों से भी सीखिए। गलती होने पर खुद को डांटिए नहीं, बल्कि सोचिए कि अगली बार ये मेरी गलती हो गई है, अगली

0: बार मैं ऐसा करने के लिए नहीं सोचूंगा या नहीं करूंगी, बल्कि ये सोचूंगा कि मेरी ये जो गलती हुई है वो नहीं होए।
1: हाँ।
0: और मैं ये बोलिए कि मैं सक्षम हूँ, मैं सकारात्मक सोच ही आपको जो है हार नहीं मानने देती है। और दीदी एक जो और बात है, अपने को अच्छा बनाने के लिए रोज खुद की एक अच्छी बात याद करना।
1: और मैंने क्या अच्छा किया है,
0: क्या याद किया। और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कम करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं बीमार हूँ, तो मैं हर समय अगर सोचती रहूंगी मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो फिर मेरे ऊपर वही चीजें हावी हो जाती हैं। तो ऐसे ही बच्चों, अगर आप किसी चीज में कमजोर हैं तो ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं कमजोर हैं। अरे भाई मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई डू इट, मैं इसको करूंगा
1: करूंगी
0: करूंगी,
1: बिल्कुल
0: है ना, दोनों तरह से
1: ये संकल्प ले लीजिए।
0: हाँ संकल्प ले लीजिए, छोटी छोटी सफलताओं पर खुद को शाबाशी जरूर दीजिए कि देखिए आज मैंने ये काम अच्छा कर लिया है। और असफलता के बाद खुद को डांटना भी बनता है दीदी, है ना। और डांटिए, धीमे से डांटिए और कहिए कि नहीं आगे से
1: ऐसा नहीं करूंगा और मैं हमेशा अच्छा करूंगा या करूंगी
0: करूंगी।
1: बताइए बच्चों, देखिए दीदी ने कितनी अच्छी बात कही कि जब आप अंदर से स्वयं को अपने आप से सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे, है ना। और वो प्रश्न आपको क्या करेंगे, स्वयं से ही आप उत्तर मांगेंगे ना, तो उत्तर आपको मिलेगा।
0: मैं
1: कहने जा रही थी कि अब आपको मैं एक जो है ना वर्क दे रही हूँ, यानी एक छोटी सी गतिविधि दे रही हूँ कि आप रात को सोने से पहले अपने आप से ये तीन प्रश्न पूछिए। अब आप फटाफट नोट कर लीजिए कि क्या प्रश्न है, क्या
0: दीदी बताइए, मैं भी नोट कर रही हूँ, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हमारे सामने, वो भी नोट कर रहे हैं,
1: बच्चे हो या बड़े हो, है ना, सभी के लिए प्रश्न है। तो ये लिखिए कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया। दिन भर का जितना भी आपने जो भी वर्क किया है, उसको आप जब शांत भाव से आप अपने बेड पे जाएंगे, तब आप लेटेंगे और लेट के तब सोचिए कि आज मैंने दिन भर में क्या अच्छा काम किया। और दूसरा है कि आज मैंने क्या नया सीखा, क्योंकि ये जीवन जो है ना हमेशा एक कुछ ना कुछ सीख देती रहती है। रोज हम कुछ नया सीखते रहते हैं, कभी अपने छोटों से, कभी बड़ों से, है ना,
0: बिल्कुल, कभी
1: बराबर वालों से। और हमारी प्रकृति में तरह तरह, देखिए प्रकृति है, इतना सुंदर वातावरण
0: है, सब से भी
1: सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, क्योंकि ये अपने
0: पेड़ पौधे
1: नियमित
0: पहाड़ है,
1: नियमित समय पर वो उगते हैं और नियमित समय पर वो डूब जाते हैं, यानी अस्त हो जाते हैं निकलना। और तो ये हमारा जो है ऑर्डर में सब काम, देखिए नया सीखा हमने कि सब काम ऑर्डर में होता है, सिस्टमैटिक वे में होता है। तो ये सोचिए कि आज मैंने क्या
0: समय का ध्यान
1: सीखा।
0: समय बहुत जरूरी है, अगर आप टाइम टेबल बना के, समय सारणी बना के काम करते हैं तो आप खुद को बेहतर बना सकते हैं।
1: और तीसरा प्रश्न है कि कल, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बेहतर, अपने जीवन के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं हम सब। तो ये जरूर आप तीनों क्वेश्चन का आंसर आप जरूर सोचिएगा और ये लिख कर रखिएगा, अगले कार्यक्रम में जब हम सब आएंगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें भेजिएगा कि हमने ये प्रश्नों का उत्तर सोचा
0: और समझा,
1: है ना, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और देखिए धीरे धीरे आप खुद को और बेहतर समझने लगेंगे।
0: हाँ, तो बच्चों आज हमने जाना कि खुद से बातें करना हमें मजबूत, समझदार, आत्मविश्वासी बनाते हैं। हमें याद रखिए, अच्छे मित्र बनने के लिए हम स्वयं से बात कर सकते हैं, अपने मन की सुनिए, सकारात्मक बातें बोलिए और खुद से कही गई बातचीत जो है हमारे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती है। जैसे हम अपने मन से बात करते हैं वैसे ही हमारा आत्मविश्वास और व्यवहार भी बन जाता है बच्चों, इसलिए हमें अपने मन का अच्छा दोस्त बनना चाहिए, क्योंकि सही सेल्फ टॉक हमें मजबूत और दीदी ने जैसा बताया था कि खुश और एक सफल इंसान बनने में मदद करता है।
1: तो भाई हमेशा ऐसी ही भावना रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। और अब मेरा मन कर रहा है कि इतना अच्छा जो
0: बातें की,
1: अच्छी चीजें बताई और सारी चीजें हम लोगों ने बच्चों के लिए बताई, अपने लिए भी सीखी।
0: हाँ,
1: हम लोगों ने भी सीखी।
0: जो भी बातें हम दीदी करते हैं ना, तो वो खुद को फॉलो करने के बाद ही हम किसी को बता सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो मेरा तो मन कर रहा है कि बच्चों को एक प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल दीदी, नेकी और पूछ पूछ, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो भाई देखो, गीत बच्चों ने सुना होगा और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा,
1: अच्छा
0: क्यों
1: लगा होगा,
0: बच्चों?
1: थोड़ा सा
0: आप
1: मूड
0: सबको अच्छा लगा
1: विज्ञान
0: ना?
1: की बातों के साथ मूड भी फ्रेश हो गया
0: बिल्कुल
1: होगा, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: भैया, बिल्कुल।
1: और दीदी, आज हमारा जो कार्यक्रम है ना, वो थोड़ा सा सीखने वाला ही है।
0: हाँ
1: हाँ, क्योंकि आज हम बच्चों के लिए, भाई छुट्टियां हो गई हैं
0: हाँ
1: तो कुछ कुछ चीजें सिखाने के लिए तो हम लोग आते ही हैं। तो अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं रोचक जानकारी,
0: अच्छा
1: जो कि बताने जा रहे हैं विनय श्रीवास्तव भैया और ऋतिका अवस्थी दीदी।
0: ठीक है,
1: तो चलिए सुनते हैं इनसे रोचक जानकारियां।

0: बच्चों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। मैं हूँ विनय श्रीवास्तव
1: और मैं हूँ रितिका अवस्थी। आज की रोचक जानकारियों में सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी तकनीक की जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी AI और स्मार्ट रोबोट। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि AI क्या होता है? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी तकनीक जो मशीनों को सोचने और समझने

0: में मदद करती है। आज AI मोबाइल कंप्यूटर अस्पताल स्कूल और यहाँ तक कि खेती में भी मदद कर रहा है। जब भी हम अपने मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं या कोई ऐप आपकी पसंद के वीडियो दिखाता है तब भी वहाँ AI ही काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं स्मार्ट रोबोट के बारे में। तो जब भी हम रोबोट्स के बारे में सोचते हैं तब एक विचार हम सभी के मन में जिज्ञासावश जरूर आता है कि क्या रोबोट सच में इंसानों जैसा काम कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, कुछ रोबोट अब खाना परोसते हैं, सफाई करते हैं और बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करते हैं। मैंने तो ऐसे रोबोट के बारे में भी पढ़ा है जो चेहरे के भाव तक पहचान लेते हैं। लेकिन बच्चों, तकनीक का उपयोग समझदारी से करना बहुत जरूरी है। मतलब हमें मोबाइल और AI पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। खेलना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, AI इंसानों की मदद के लिए है, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। इसलिए तकनीक का सही उपयोग करते हुए हमें अपने ज्ञान और समझ के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
1: बच्चों, पिछले दिनों प्रयागराज रक्षा त्रिवेणी संगम में दिखा भविष्य के हथियारों का महाकुंभ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा महाकुंभ है। तो बच्चों, ये था नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026, जिसमें सैन्य रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी की गई थी। ये प्रदर्शनी केवल मशीनों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उस हुंकार का जीवंत प्रमाण है जिसे देखकर दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। इनमें कुछ ऐसे सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ जो अपने भारत में ही निर्मित थे। उनमें कुछ इस प्रकार से हैं। प्रदर्शनी में चार पैरों वाला अत्याधुनिक रोबोट का प्रदर्शन किया गया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। ये रोबोटिक म्यूल न केवल दुर्गम रास्तों पर चलने में सक्षम है बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी सटीक जानकारी देने की भी कुवत रखता है। विक्रम VT-21 ये देखने में किसी भीमकाय टैंक जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये दुनिया का वो अत्याधुनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर सैनिकों को रणभूमि से पार ले जाएगा। इस मशीन की सबसे बड़ी शक्ति इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। जहां भारी भरकम टैंक दलदल या पानी में बेबस हो जाते हैं, वहीं विक्रम VT-21 अपने शक्तिशाली ट्विन हाइड्रोजन की मदद से पानी को ऐसे चीरता है जैसे कोई रफ्तार वाली नाव। इसी प्रदर्शनी में प्रदर्शित कल्याणी M4 एम्बुलेंस एक आधुनिक बख्तरबंद पर्सनल कैरियर है जिसे युद्ध क्षेत्र में चिकित्सा सहायता और घायलों को सुरक्षित निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वाहन छोटे हथियारों की गोलियों, बारूदी सुरंगों और IED विस्फोटों से अंदर बैठे लोगों की रक्षा कर सकता है। प्रदर्शनी में टाटा एडवांस सिस्टम्स का लोइटरिंग मुनिशन सिस्टम भी दिखा। ये मानव रहित विमान 250 किलोमीटर की भारी भरकम दूरी तय कर दुश्मन के बंकरों में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना की अदृश्य शक्ति ने सबका ध्यान खींचा। यहाँ प्रदर्शित सी क्राफ्ट डाइविंग स्कूटर्स और री ब्रीदर तकनीकी समुद्री युद्ध की दिशा तय करेगी। इन उपकरणों की सबसे बड़ी खूबी इनका साइलेंट मोड है। अत्याधुनिक री ब्रीदर तकनीक के कारण पानी के नीचे गोताखोरों से कोई बुलबुला नहीं निकलता, जिससे दुश्मन के लिए उन्हें पकड़ना नामुमकिन होता है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम में ड्रोन इन बॉक्स सिस्टम भी लॉन्च किया गया, जिसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी तकनीकी डॉकिंग स्टेशन है। ये स्टेशन महज 90 सेकंड के भीतर ड्रोन की बैटरी बदलकर उसे फिर से मिशन पर भेजने में सक्षम है बिना किसी थकावट और देरी के।
0: अब बात करते हैं अंतरिक्ष की नई और अद्भुत खोजों के बारे में। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी

0: रात में चमकते तारों को देखकर सोचा है कि अंतरिक्ष में आखिर क्या क्या होता होगा? तो आज हम जानेंगे इसी प्रश्न का उत्तर, जिसे हम आपको अंतरिक्ष से जुड़ी हुई नई और हैरान कर देने वाली रोचक जानकारियों के रूप में साझा करेंगे। पहला प्रश्न तो यही है कि सचमुच दूसरे ग्रहों पर जीवन हो सकता है क्या? वैज्ञानिक लगातार इसकी खोज कर रहे हैं। अब तक हजारों ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ हवा नहीं होती और आवाज को फैलने के लिए हवा चाहिए होती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सोते समय हवा में तैरते रहते हैं, मतलब वहाँ बिस्तर पर लेटना भी जरूरी नहीं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की ऐसी तस्वीरें ली हैं जिसमें अरबों तारे दिखाई देते हैं। जब भी अंतरिक्ष की बात होती है तो ये बात हमेशा होती है कि क्या भविष्य में इंसान दूसरे ग्रहों पर रह पाएंगे। वैज्ञानिक इसी दिशा में काम कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना खोजी जा रही है। अंतरिक्ष हमें सिखाता है कि दुनिया बहुत विशाल है और सीखने के लिए कुछ नया हमेशा मौजूद है। इसलिए सवाल पूछो, जिज्ञासा रखो और ज्ञान की उड़ान हमेशा भरते रहो।
1: बच्चों, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और पिछले दिनों आप सब ने देखा कि बहुत ही तेज आंधी चली, साथ ही छोटे छोटे ओले भी पड़े जिसमें बहुत से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ, कुछ के छप्पर तक उड़ गए। आपने कभी सोचा है कि इस तरह की जो आंधियां हैं वो किन परिस्थितियों में चलती हैं? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि दिन में 43.5 डिग्री जैसी भीषण गर्मी और फिर शाम को अचानक तेज आंधी, बारिश और ओले गिरना दरअसल मौसम की एक शक्तिशाली अस्थिर प्रक्रिया का परिणाम है। उत्तर भारत में मई जून के दौरान ये स्थिति अक्सर बनती है। जमीन गर्म होने पर उसके ऊपर की हवा भी तेजी से गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर जाती है तो ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी होने लगती है। वहां जल वाष्प संघनित होकर विशाल काले बादल बनाती है। यही बादल आंधी, बिजली, भारी बारिश और ओलावृष्टि पैदा करते हैं। जब बादलों के भीतर ठंडी भारी हवा तेजी से नीचे गिरती है तो वो जमीन से टकराकर चारों ओर फैलती है। इससे तेज धूल भरी आंधी चलती है। कई बार इसकी गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है।
0: अब बात करते हैं

0: आंधी चलती है। कई बार इसकी गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है।
1: अब बात करते हैं प्रकृति के अनोखे रहस्य और पर्यावरण के बारे में। बच्चों, हमारी धरती प्रकृति के अनगिनत चमत्कारों से भरी हुई है और इसी कड़ी में आज हम जानेंगे पेड़ पौधों और जानवरों से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें। क्या आपको पता है कि पेड़ भी एक दूसरे से बात करते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार पेड़ अपनी जड़ों और मिट्टी में मौजूद फंगस की मदद से संदेश भेज सकते हैं, इसलिए जंगलों को नेचर नेटवर्क भी कहा जाता है। एक और रोचक बात ये भी है कि मधुमक्खियाँ नाचकर अपने साथियों को बताती हैं कि फूल कहाँ है, मतलब उनका भी अपना संकेत देने का तरीका होता है। प्रकृति हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। स्वच्छ धरती, हरी धरती, यही है हम सबकी जिम्मेदारी।
0: बच्चों, क्या आपने कभी इलाहाबाद संग्रहालय की सैर की है? इलाहाबाद संग्रहालय में कुछ खास वस्तुएं हैं जो कि ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। संग्रहालय के अस्त्र शस्त्र संग्रह में दुर्लभ पिस्तौल, राइफल, बंदूकें, तलवारें और 18वीं 19वीं शताब्दी के कवच हैं। वस्त्र व साज सज्जा संग्रह में सोने की जरी का काम और काष्ठ कला की कृतियां उल्लेखनीय है। हाल ही में संग्रहालय की 17वीं वीथिका के रूप में दिव्यांग बच्चों के लिए अनुभव वीथिका का शुभारंभ किया गया। इसी संग्रहालय में चंद्रशेखर आजाद की वो दुर्लभ पिस्तौल भी है जिसे वो बमतुल बुखारा कहते थे।
1: इलाहाबाद संग्रहालय में बनी साहित्य वीथिका हिंदी साहित्य के रचनाकारों को समर्पित देश की एकमात्र वीथिका है। ये वीथिका हिंदी साहित्य के स्वर्णिम इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। इस अनूठी वीथिका की स्थापना छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने निजी संग्रह को संग्रहालय को समर्पित कराई थी। संग्रहालय की अन्य प्रमुख वीथिकाओं में गांधी वीथिका, आजाद वीथिका, नेहरू गैलरी, आधुनिक चित्रकला वीथिका, लघु चित्र संग्रह वीथिका, टेराकोटा गैलरी, प्रकृति इतिहास वीथिका, प्राचीन स्तर वीथिका, साज सज्जा संग्रह वीथिका, अस्त्र शस्त्र संग्रह वीथिका, अनुभव वीथिका गैलरी आदि शामिल है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की रोचक जानकारियाँ पसंद आई होंगी।
0: नई बातें सीखते रहिए, जिज्ञासु बनिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
2: तो बच्चों, आपने अभी रोचक जानकारियों में बहुत कुछ सीखा होगा, है ना? तो जो कुछ भी यहाँ पर आप कार्यक्रम सुनते हैं उसे अपने जो है माइंड में रखिए, अमल में लाइए और आप उस जब अच्छी चीज़ों को आप अपने दोस्तों से बांटेंगे तो वो भी बहुत ही अंदर से एक्साइटेड होंगे हर चीज जानने के लिए। और आप उनको बताइए,
3: आप सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं,
2: तो बिल्कुल। और आप अच्छा बताइए कि हमें ये चीज़ आता है, हमें ये चीज़ का ज्ञान है। तो ऐसे ही आप जब ज्ञान बढ़ाते चलेंगे, बांटते चलेंगे, तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और उन बच्चों का भी बढ़ेगा और आपके मम्मी पापा आपसे बड़े खुश होंगे, टीचर भी।
3: तो अभी आपको पसंद आई होगी विनय भैया और रितिका अवस्थी की रोचक जानकारी।
2: और अब रचना दीदी, भाई मैं तो सोच रही हूँ कि जो हमारे बीच में देखो दो जो है नन्हे मुन्ने हमारे बैठे हुए हैं और बहुत देर से अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी,
3: मेरी बारी कब आएगी। तो चलिए अब उनसे बात कर लेते
2: हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कीजिए, ये जो एक हमारे बगल में इतने प्यारे से सुंदर से बैठे हुए हैं, है ना, गोलू मोलू से,
3: ये अपना नाम तो खुद ही बात बताएंगे अपना नाम। तो आप अपना नाम बताइए।
4: दीदी, मेरा नाम उज्जवल श्रीवास्तव है।
3: अच्छा, और आप किस क्लास से पढ़ते हैं?
4: मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ।
3: अरे वाह दीदी, ये क्लास 5th में पढ़ते, तो अभी आपकी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो घर में आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या हॉबी है आपकी?
4: मेरी हॉबी शूटिंग, क्रिकेट, आर्ट और क्राफ्ट है।

0: शूटिंग, क्रिकेट, आर्ट एंड क्राफ्ट,
1: बहुत सारी चीज़ें।
0: तो
1: क्या क्या बना रहे हैं आप, क्या क्या कर रहे हैं
0: क्राफ्ट में? आपको अभी कुछ आपने आर्ट क्राफ्ट में कुछ किया?
2: हाँ
0: किया।
2: हाँ,
0: क्या क्या बनाया आपने?
2: मैंने कटाना बनाया है।
0: अच्छा,
2: एक सॉर्ड बनाया।
0: अरे,
2: और शील्ड बनाया।
0: क्या बात है भाई, चलना पड़ेगा ना रचना दीदी।
1: हाँ,
0: इनके
1: दीदी,
0: पास
1: इनकी,
0: हाँ,
1: जो
0: इनसे
1: है,
0: सीखने
1: सारी
0: के
1: चीज
0: लिए,
1: सीखने के
0: बिल्कुल।
1: लिए।
0: और देखिए शूटिंग भी कर रहे हैं, कितनी
1: तो,
0: अच्छी बात
1: हाँ,
0: है। मैं तो डरती हूँ कि कहीं हाथ
1: हाँ,
0: में
1: छूट गया
0: छूट
1: तो
0: गया तो
1: गए
0: क्या
1: काम
0: होगा,
1: से।
0: है?
1: हाँ,
0: और देखिए इतनी छोटी सी उम्र में ये शूटिंग भी सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं।
1: कर भी रहे
0: और
1: हैं।
0: दूसरी बात, क्रिकेट का कितना क्रेज है हमारे बच्चों का, है ना? कितना अच्छा, चाहे धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, लेकिन सब में उनको क्रिकेट अगर खेलने के लिए बोलो तो फटाफट क्रिकेट खेलने के लिए चले
1: दीदी,
0: जाते
1: ये
0: हैं।
1: इनके हाथ में कुछ कागज दिख रहा है,
0: हाँ
1: ये कुछ
0: हाँ
1: सुनाना चाहते हैं,
0: अच्छा तो सुनाएं,
1: तो
0: क्या सुनाएंगे आप?
1: हाँ चलिए बताइए
2: दीदी
1: आप।
2: दीदी मैं आपको गर्मियों की छुट्टियां और पर्यावरण के विषय में कुछ बताना चाहता
0: हाँ
2: हूँ।
0: तो
2: तो
0: ठीक है,
2: बताइए।
0: बताइए।
2: गर्मियों की छुट्टियां विद्यार्थियों के लिए केवल आराम और मनोरंजन का समय नहीं होती, बल्कि यह समय स्वयं को बेहतर बनाने और समाज के लिए अच्छे कार्य करने का अवसर भी देता है।
0: हाँ
2: दीदी, यदि हम इन छुट्टियों का सही उपयोग करें तो हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और समाज सेवा जैसे महान कार्य में भाग भी ले सकते हैं।
0: तो दीदी कितनी अच्छी इनकी बोल रहे हैं।
2: इसलिए हमें अपनी छुट्टियां को केवल खेल कूद और मोबाइल तक सीमित नहीं रखनी चाहिए,
0: बिल्कुल।
2: बल्कि कुछ उपयोगी और प्रेरणादायक कार्य भी करने चाहिए।
1: तो यानी
0: कितनी
1: छुट्टी का
0: अच्छी बातें
1: सदुपयोग
0: की,
1: कितनी अच्छी
0: बिल्कुल,
1: तरह से
0: कि
1: इन्होंने
0: भाई
1: बताया।
0: मोबाइल पे नहीं रहना चाहिए। देखिए हर बच्चा अगर समझ जाए ना दीदी कि हमें मोबाइल ही पूरे टाइम नहीं लेकर रखना चाहिए, हमें और भी समय का सदुपयोग करना चाहिए, घर में मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, बहुत सारे काम करने चाहिए, ठीक है?
1: हाँ,
0: तो
1: और आप क्या सुनाएंगे?
0: और ये जो हमारी नन्ही मुन्नी सी एक बालिका बैठी हुई है, हमने एक एक दो बार जो है हमारी ये कार्यक्रम में आ चुकी हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं पहले कि ये अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद फिर हम उज्जवल जी से कुछ और सुनेंगे, है ना? तो आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम अनुकृति श्रीवास्तव है।
0: अनुकृति श्रीवास्तव। तो अनुकृति, आज क्या आप हमारे नन्हे मुन्नों को सुनाएंगी?
3: दीदी, मैं आज गंगा अवतरण के बारे में बताना
0: गंगा
3: चाहूंगी,
0: अवतरण के बारे में। देखिए
1: क्योंकि दीदी,
0: दीदी,
1: गंगा महोत्सव चल भी रहा है इस
0: बिल्कुल
1: समय।
0: बिल्कुल, हाँ तो सुनाइए।
3: भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी, तब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। लेकिन गंगा का वेग बहुत ज्यादा था दीदी, इसलिए पृथ्वी को नुकसान हो सकता था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारित कर लिया और तभी से गंगा अवतरण मनाया जाता है।
1: वेरी गुड,
3: और
1: कितनी
3: दीदी
1: अच्छी जानकारी दी।
3: और दीदी, इस समय हम सभी माँ गंगा के तट पर गंगा अवतरण दिवस पर गंगा महोत्सव भी मनाते हैं। इस
0: रोज आरती भजन होता है ना वहाँ पर।
3: जी दीदी,
0: हाँ।
3: इस समय हम सभी माँ गंगा की आरती, पूजन व प्रसाद प्राप्त करते हैं। वहाँ पर प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन व नृत्य की प्रस्तुतियाँ भी होती हैं। गंगा के अवतरण दिवस 26 मई को मनाया जाता है और 26 मई को हर वर्ष विशाल भंडारा होता है और हम लोग माँ गंगा में स्नान करते हैं और उनका पूजन भी करते हैं। इसके साथ दीदी, हम यह भी याद रखना चाहिए कि हमें माँ गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए,
0: स्वच्छ।
1: सही बात है, वहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए।
0: गंगा को अगर हमने प्रदूषित किया तो हम ऐसे ही अस्वस्थ हो जाएंगे। देखिए अगर जल प्रदूषण हुआ, सब जगह गंगा जी से ही हम लोग जल प्राप्त हम सबको होता है। और यही कहा गया है कि अगर आप अपने जो है अपने आराध्य की पूजा, जो आप कहते हैं ना कि हमारे यहाँ देवी देवता देवता जो सारी जो बने हुए हैं इसी से है, कि आप अगर उनका सही जो सदुपयोग करेंगे या उनके अंदर कोई ऐसी चीज नकारात्मक की
1: भावना
0: नहीं लाएंगे,
1: अंदर अच्छी भावना ला करके और
0: तो
1: उसमें गंदगी
0: नहीं
1: फैलाएंगे, नहीं
0: तो
1: कुछ
0: वो
1: करेंगे,
0: हमारे
1: तो
0: लिए यूजफुल हो जाएगा
1: होगा।
0: तो इसलिए हमेशा बच्चों ये कोशिश, अगर आपके घर में भी लोग ना बहुत पूजा पाठ और वो सब चढ़ाने के लिए वहां जाते तो दूर से ही करके, क्योंकि गंगा में अगर आपने डाला,
1: हमें छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ा सफल बनाना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए दीदी,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये बच्चे, आज के बच्चे जो है युवा होते हैं। तो मैं ये अनुकृति से पूछना चाहूंगी, अनुकृति आपका क्या योगदान रहता है वहां पर?
0: हाँ।
1: क्या क्या करती हैं वहां पर जाती हैं? तो
3: दीदी, वहां पर मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देती हूँ।
0: अरे वाह,
1: अरे वाह, ये
0: क्या,
1: तो बहुत अच्छी। क्या किस चीज
0: में
1: इंटरेस्ट है आपका?
3: सिंगिंग एंड डांसिंग।
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: अच्छा तो आप आरती भी वहाँ करते होगे?
3: जी दीदी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो अब अनुकृति से हमने बातें की, अब देखिए हम सोच रहे हैं कि बच्चों को भी इसके बारे में थोड़ा शब्द ज्ञान

0: की भी बात कर
1: हाँ
0: ली जाए
1: दीदी, जैसा कि
0: हमारा,
1: वही बता रहे, सिखा ही
0: हाँ
1: रहे हम लोग, आज
0: हाँ
1: सीखने वाली बातें हैं।
0: हाँ
1: तो अब हमारे पास बच्चों के लिए सिखाने के लिए शब्द ज्ञान है।
0: हाँ
1: पहला हिंदी का शब्द है तृष्णा,
0: हाँ
1: जिसका कि सरल अर्थ होता है बहुत ज़्यादा इच्छा या लालच। जब
0: बिल्कुल।
1: किसी चीज़ को पाने की चाह इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो मन में संतुष्टि नहीं होती है, तो उसे तृष्णा कहते हैं। जैसे कि धन की तृष्णा, बहुत ज़्यादा हमको फेमस होने की, प्रसिद्धि पाने की जो है इच्छा होने लगती है, तो ये तृष्णा का रूप ले लेती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अधिक धन की तृष्णा में इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता है
0: सही कह
1: और
0: रही हैं।
1: हमेशा परेशान रहता है, इसलिए मन में तृष्णा नहीं लाना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: तो ये तो आपने बता दिया हिंदी शब्द ज्ञान, और अब मैं बता देती हूँ बच्चों को मोजो का क्या अर्थ होता है। पता है आपको? नहीं
1: ये
0: पता है?
1: अंग्रेजी शब्द है।
0: अंग्रेजी शब्द है मोजो का। सिंपल मीनिंग होता है जोश में। जोश है आत्मविश्वास या खास आकर्षण। तो जैसा कि आत्मविश्वास दिख रहा है, जोश भी दिख रहा है बच्चों में, है ना? और जो है खास आकर्षण भी हम लोग है कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, आकर्षित हम सब हो रहे हैं, ये बात है। अब इसका ये अर्थ हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और अपने काम में शानदार महसूस करता है तो कहते हैं कि उसका मोजो अच्छा
1: मोजो
0: है
1: अच्छा
0: ना?
1: है।
0: और इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं, आफ्टर विनिंग द मैच ही गॉट हिज मोजो बैक, है ना? मतलब उसका आत्मविश्वास और जोश वापस आ गया। और इस तरीके से भी कह सकते हैं शी स्पीक्स विथ अ लॉट ऑफ मोजो, मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट और आकर्षण के साथ बोलती है। जैसे हमारी छोटी सी अनुकृति कितना प्यारा बोलती है, और ये हमारा छोटा सा उज्ज्वल कितना प्यारा
1: प्यारा
0: बोलता
1: बोल रहा
0: है
1: है भाई।
0: ना?
1: उज्ज्वल तो अभी
0: हाँ
1: पहली बार आए
0: पहली
1: हैं
0: बार
1: हमारे
0: आए हैं
1: पास कार्यक्रम में,
0: बिल्कुल
1: तो अब
0: बिल्कुल
1: चलिए इनसे सुन लेते हैं कि ये क्या सुनाना चाहते हैं,
0: बिल्कुल।
1: कौन
0: तो
1: सा गीत सुनाएंगे आप।
0: हाँ उज्ज्वल क्या सुनाना चाहते हैं आप?
2: मैं आपको तिरंगे झंडे के गीत सुनाना
0: हाँ
2: चाहता
0: ठीक है
2: हूँ।
0: सुनाइए।
2: विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख करण में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
0: बहुत अच्छी बात
1: वेरी
0: रही,
1: गुड। देखिए
0: ताली
1: अपने
0: होनी
1: देश
0: चाहिए,
1: के
0: झंडा
1: लिए,
0: ऊंचा रहे
1: हाँ अपने
0: हमारा,
1: देश का मान
0: बिल्कुल
1: शान जो हमारी
0: ये
1: है,
0: जोश
1: झंड
0: है
1: जोश है वो हमारा
0: बिल्कुल।
1: झंडा है, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत प्यारी सी
0: कविता
1: कविता
0: सुना
1: सुनाई।
0: दी,
1: अब
0: और
1: अनुकृति दीदी भी हमारी जो छोटी सी बैठी है ना दीदी, तो ये
0: हाँ
1: भी कुछ सुनाना चाह रही
0: बिल्कुल।
1: हैं कविता।
0: ये भी उज्ज्वल से कह रही थी धीरे धीरे कि
1: हाँ
0: मैं भी
1: वही आप सुन
0: सुनाऊंगी।
1: रही थी ना, मैं भी सुन रही थी।
0: तो
1: हाँ तो चलिए
0: सुनाइए
1: सुनाइए
3: दीदी। मेरे पापा को शैलेंद्र मधुर, उन्हें कविता का बहुत शौक है
0: अच्छा
3: लिखना और
0: हाँ
3: मुझे सुनाने का।
0: अच्छा ठीक है तो बिल्कुल सुनाओ।
3: तो उन्होंने गंगा माँ पर एक कविता लिखी है।
0: हाँ
3: गंगा को प्रणाम, कंठे माला को प्रणाम है, पूजा को प्रणाम, मृग छाला को प्रणाम है, यहाँ वाग देवी साक्षात है विराजती, यहाँ वाग देवी साक्षात है विराजती, बच्चन जी की गाय मधुशाला को प्रणाम है, बच्चन जी की गाय मधुशाला को प्रणाम है, नथ को प्रणाम और बाला को प्रणाम है, नथ को प्रणाम और बाला को प्रणाम है, संत को प्रणाम व शिवाला को प्रणाम है। कविता का मुख जरा गौर से तो देखिए, कविता का मुख जरा गौर से तो देखिए, महादेवी पंत और निराला को प्रणाम है, महादेवी पंत और निराला को प्रणाम है।
0: बहुत अच्छी
1: बहुत
0: कविता है भाई,
1: बढ़िया।
0: बहुत अच्छी कविता, और आप सब ऐसे ही कोशिश करते रहिए। तो दीदी
1: हाँ,
0: अब
1: आप
0: तो
1: बच्चों
0: समय,
1: का मूड चेंज कर देते हैं और
0: हाँ
1: एक प्यारा सा गीत और सुनवा देते हैं
0: बिल्कुल
1: उनको।

0: तो बच्चों आपने अभी ये गीत सुना और लक्ष्य जरूर पाएंगे आप। और हमारी घड़ी कह रही है कि लक्ष्य पाने के लिए आपको घर जाना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगले कार्यक्रम में
1: हम लोगों ने बातें बताया सिखाया उसको अमल जरूर करिएगा। और अगले कार्यक्रम में जैसा कि दीदी कह रही है
0: फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद
2: जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संघ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे सुनिएगा रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आप सुन सकते हैं पंडित शारदा सहाय का तबला वादन। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर की गई फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम हेलो अनुरोध कार्यक्रम दिन में 1:15 पर होगा। 2:30 पर सुनिएगा लोकगीत गायक कलाकार ब्रिजभान यादव और साथी, सुशीला देवी और सुभाष चंद्र यादव और साथी। बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5 बजे ग्रामीण बच्चे सुनेंगे नीरज कुमार तिवारी से बाल कविताएं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज का आकर्षण होगा हेलो युवा। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता आधुनिक हिंदी साहित्य में ग्राम जीवन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा अरुण गुलवाड़ी के स्वर में गीत और भजन। श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है होगा रात 8 बजे। 8:30 पर आज इतवार है, इसमें सुनिएगा नरेश मिश्र की लिखी झलकी बा जाए नीम हकीमों से। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा रात 9:30 पर। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित शारदा सहाय का 3 ताल में तबला वादन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित शारदा सहाय का तीन ताल में तबला वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292

104 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं शक्ति फिल्म के गाने के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है RD बर्मन का।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नौशाद के संगीत निर्देशन में मजरू की गीत रचना, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है धर्म कांटा।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब जो गीत श्रोताओं हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

टूटते खिलौने, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गायक कलाकार हैं यशुदास, गीत कैफी आजमी का है और संगीत है बप्पी लहरी का।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं काला पत्थर फिल्म का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत साहिर का है और संगीत है राजेश रोशन का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म काला पत्थर के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय

0: में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों टीबी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपातकालीन चिकित्सा हीमोफीलिया प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi, reaffirming the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Briefing the media after the meeting at Hyderabad House, Dr. Jaishankar said that talks over lunch

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा अंत्यसारिया है
0: जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी, फिल्म का टाइटल
0: टाइटल सॉन्ग जी, लता जी की आवाज में ये गाना है।
1: बहुत अच्छा।
0: चलिए ठीक है, तो आपकी इस पसंद को हम पूरा करते हैं और सुनवाते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: इस दुनिया में अगर रेडियो ना होता तो चैन सुकून किस अदाओं से खोता। राजेंद्र कुमार नाम है मेरा, लोग मुझे देखते हैं
0: विविध भारती के श्रोता राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। तो राजेंद्र जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है सागर
0: जी,
1: और इसके बोलने चेहरा है या चांद का है।
0: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना है
1: जी। जी मेनली
0: तो सुनवा दिया जाए आपको सागर फिल्म का गीत।
1: दो संग के नाम ले लें।
0: हाँ हाँ ले लीजिए।
1: पहले तो हमारे प्रभाकर तिवारी जो रसूलपुर ग्राहक रहने वाले हैं
0: जी जी,
1: और दीपक है, प्रमोद है, अजीत है, ऐसे से बहुत सारे दोस्त हैं।
0: अच्छा अच्छा तो चलिए आपको सुनवा देते हैं सागर फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज
0: से। जी दादनपुर प्रयागराज से विकास जी हमारे साथ हैं। तो विकास जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है दर्पण
0: जी,
1: और गाने का बोल एक गगन का राजा एक गगन की रानी,
0: उन दोनों के प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। अच्छा एक बात बताइए विकास जी, इतने पुराने और सुरीले गीत आप कहाँ से ढूंढ लाते हैं?
1: जी मैडम जी, हमें ऐसे गाने बहुत अच्छे लगते हैं,
0: क्योंकि मैंने देखा है कि आप अक्सर मतलब बहुत ही अलग तरह के लेकिन बहुत ही मधुर गीतों की फरमाइश रहती है आपकी।
1: जी आज के कार्यक्रम में हम आपको ये भी बता दें
0: जी,
1: जिस दिन हमारी रिकॉर्डिंग आप प्रसारित करती हैं
0: जी,
1: उस दिन लगभग बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनको इंतजार रहता है कि आज विकास की कृपा।
0: अच्छा सबको आप बताते हैं?
1: आज यहाँ बहुत से ऐसे लोग जो बहुत पसंद करते हैं आपका कार्यक्रम।
0: अच्छा बहुत, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे दीजिएगा जिनको ये कार्यक्रम पसंद आते हैं।
1: जी वो कहते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत अच्छा मधुरी प्रस्तुत करती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और हेलो फरमाइश और हेलो अनुरोध कार्यक्रम में भी आप

लोगों से बातचीत होती रहती है, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अब हम सुनवा देते हैं आपको दर्पण फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं लाली नैनी डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद से बोल रही हूँ।
0: अच्छा लाली जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: दूल्हा बिकता का।
0: गाने के बोल बता दीजिए।
1: कहाँ जाते हो रुक जाओ।
0: ये राज बब्बर की फिल्म थी।
1: जी जी जी।
0: अच्छा, तो लाली जी ये बताइए, आपने पहली बार कॉल की है?
1: ठीक ठीक हाँ मैम।
0: अच्छा अच्छा, तो ये कार्यक्रम सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं, लेकिन फोन नहीं लगा पाते हैं। एक दो बार ट्राई किए थे, नहीं लगा था, तो इसीलिए बंद कर दिए थे, नहीं लगा।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छा है कि आज आपसे हमारी बात हो गई और हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

0: जी
1: हेलो अनिरुद्ध, आदरणीय मधु दीदी, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कैसे हैं आप।
1: दीदी मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपका आशीर्वाद है, बांके बिहारी कृपा है। और मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा श्री माता उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ
0: जी
1: आकाशवाणी प्रयागराज के माध्यम से।
0: बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी, और रेगुलर फ़ोन करते रहते हैं। प्रोग्राम भी बिना आप सुनते रहते हैं ना हमारे।
1: जी दीदी बिल्कुल, मैं आपका एक नियमित श्रोता हूँ और नियमित रूप से कॉल भी करता हूँ। प्रयागराज से जुड़कर मुझे अपनापन से महसूस होता है। जैसा कि आपको अवगत है, ज्ञात है कि मैं प्रयागराज का निवासी हूँ और
0: जी
1: मेरा गांव का नाम दौलतपुर है। दीदी
0: तो आप बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है हद कर दी आपने,
0: जी
1: इसका शीर्षक गीत आपसे अनुरोध करना
0: अच्छा
1: चाहता
0: अच्छा
1: हूँ।
0: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपने, हद कर दी
1: जी
0: आपने। है चलिए तो

0: साईं प्रयागराज के माध्यम से।
1: बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी, और रेगुलर फ़ोन करते रहते हैं, प्रोग्राम भी बिना आप सुनते रहते हैं ना हमारे।
0: जी जी जी बिल्कुल, मैं आपका एक नियमित श्रोता हूँ और नियमित रूप से कॉल भी करता हूँ। प्रयागराज से जुड़कर मुझे अपनापन से महसूस होता है। जैसा कि आपको अवगत है, ज्ञात है कि मैं प्रयागराज का निवासी हूँ
1: जी,
0: और मेरा गांव का नाम दौलतपुर है।
1: तो आप बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है हद कर दी आपने,
1: जी
0: इसका शीर्षक गीत आपसे अनुरोध करना
1: अच्छा
0: चाहता
1: अच्छा
0: हूँ।
1: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपने, हद कर दी आपने है। चलिए तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: गुलाब जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गुमराह मूवी का कोई एक गीत सुनवा दीजिए।
0: ये पुरानी वाली गुमराह की बात कर रहे हैं आप?
1: पुरानी मूवी।
0: हाँ हाँ हाँ, जरूर, महेंद्र कपूर साहब की आवाज में इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, तो उसका ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गुलाब जी, लीजिए सुनिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।

0: अनुरोध, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं प्रयागराज के मीरापुर से शिवानी यादव बोल रही हूँ।
0: शिवानी यादव जी मीरापुर से बात कर रही हैं। बताइए शिवानी जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हमें वो नीले नीले अंबर चांद पर जब आए
0: अच्छा अच्छा जी हाँ, कलाकार फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़ है, तो आपको तो गीत ज़रूर सुनवाएंगे। शिवानी जी कुछ कहना चाहती हैं या किसी का नाम लेना चाहती हैं?
1: यस मैम, आपका ये जो प्रोग्राम मुझे बहुत ही पसंद है। मैं 12:30 बजे आपका ये प्रोग्राम रोज सुनती हूँ, और जो रविवार को आता है हेलो अनुरोध कार्यक्रम, उसको भी मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। हम मम्मी पापा सब लोग आपका कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कसरत करने का अंदाज बहुत ही अलग है, बहुत ही आपकी जैसे जैसा आपका नाम है मधु जी, वैसे ही आपकी मधुर आवाज भी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद है और इस कार्यक्रम का आप हिस्सा हैं, ये हमें बहुत पसंद है।
1: धन्यवाद मैम, मैं आपका दिल से स्वागत आप अभिनंदन करती हूँ
0: जी। और ये बताइए आप करती क्या है, थोड़ी सी जानकारी दीजिए अपने बारे में भी।
1: मैं अभी इंटर पास हुई हूँ।
0: अच्छा तो अब आगे आगे आपने क्या सोचा हुआ है, पढ़ाई कंटिन्यू करें?
1: ढोलक का शौक है।
0: किसका?
1: ढोलक बजाने का मुझे
0: अच्छा,
1: बहुत
0: अच्छा,
1: शौक है।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, मैं कीर्तन भी करती हूँ, मुझे ढोलक बजाने का बहुत शौक है, बस मुझे ढोलक सीखनी।
0: अच्छा ढोलक सीखनी, भाई बिल्कुल सीखिए, जो आपका शौक है उसे जरूर पूरा करिए। शिवानी जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद।
1: मैं मम्मी पापा का नाम ले।
0: हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए ले लीजिए।
1: मेरी मम्मी भी आपका कार्यक्रम बहुत सुनती हैं, और मेरे पापा भी आपका कार्यक्रम सुनते हैं, और जो हमारे मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है माँ ललिता देवी कल्याणी देवी, और यहाँ के जो हमारे घर के सामने वाली मंदिर है, और हमारे बाबा वो भी आपका कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनते हैं।
0: अच्छा, उनका नाम बता दीजिए।
1: श्री बद्री नारायण जी बाबा का नाम है मेरे।
0: बद्री नारायण बाबा जी, और आपके माता पिता का क्या नाम है?
1: मेरी माता का नाम संध्या यादव है, और मेरे पापा का नाम राजीव यादव है।
0: तो अब आप सुनिए अपनी पसंद का कलाकार फिल्म का ये गाना, और हमें फोन करना मत भूलिएगा।
1: धन्यवाद मैम।

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है।

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के

0: शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत के हमारे आज के कलाकार हैं बृजभान यादव और साथी, सुशीला देवी और सुभाष चंद यादव और साथी। पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं बृजभान यादव और साथियों के स्वर में लचारी।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ब्रिजभान यादव और साथियों के स्वर में अब सुनिए दादरा

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सुशीला देवी के स्वर में देवी गीत।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए सुभाष चंद्र यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत।

सुभाष चंद यादव और साथियों के गाए इस देवी गीत के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है, लेकिन FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: लड़कनो जय हिंद।
2: आओ चुन्नू मुन्नू, अरे देखा कितना समय जो नहाए। हाँ। खुशी में हुई भैया,
3: बिल्कुल देखा, छुट्टी हुई बाटे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अब स्कूल जाए नहीं पड़ते हुई तो दिन भर हाँ। घरे में रह के चुन्नू मुन्नू हरेन खूब उदंड करता हैं।
3: साथ में भैया दोपहरिया निकल जाते हैं आम तोड़े, भैया खूब आम खाइए।
2: लेकिन भैया देखा चुन्नू मुन्नू इस समय गर्मी तेज पड़ा बाटे,
3: बिल्कुल
2: तो यही कहा कि देखा दोपहरिया उपहरिया में जो है बगिया में जिन जा आम और खाए क्या है। तो भैया देखा सवेरे संझा बगिया जा कोनो बात नहीं है, लेकिन दोपहरिया में जो है अपन घरे में रह के जो है अपन पढ़ाई लिखाई करा। देखा भैया ये जो छुट्टी मिली बना
3: एक सदुपयोग करा
2: ये जो छुट्टी है इसमें जौन चीज आप पढ़ाई लिखाई वाला छूट गा हो विषय जौन पीछे रहेगा हो काम ओका पूरा करें या जौन विषय में तनिक कमी हो में लिखे पढ़ाई जौन है सुलेख लिखे है ना।
3: जैसे चुन्नू मुन्नू का राइटिंग साइन है, राइटिंग बनावे छुट्टी में
2: हाँ।
3: या जौन विषय में कमजोर बाटे गणित होगा विज्ञान होगा ओके पढ़ाई करें भैया।
2: बिल्कुल भैया देखा छुट्टी है तो छुट्टी के अगर सही उपयोग करिए तो उनके लिए जो है लाभप्रद है।
3: बिल्कुल, साथ साथ भैया हम कहा भी कि भैया चुन्नू मुन्नू जो है गर्मी में खेले जिन निकले हैं हो सके तो सुबह शाम निकले खेलें और गर्मी में दिन में जो है अपने घर में पढ़ाए या फिर जो इंडोर गेम बांटे भैया घर वाला गेम है बांटे शतरंज बांटे कैरम बोर्ड ये सब खेले भैया।
2: हाँ बिल्कुल भैया देखा एकदम सही कहा कि जो उन भी घर के अंदर रह के आप खेल खेल सका था और ओपे आप मन हो आपके करा
3: हाँ।
2: लेकिन अपने जो पूरे समय के देखा अभी स्कूल जो उन जो 6 घंटा 7 घंटा का समय बचत है तो ओका सही उपयोग कुछ हाँ। नया चीज सीखे हाँ। में कोनो कला हो कोनो चीज हो बहुत सारी कार्यशाला होते तो ओका जो है या जो भी स्कूल में पढ़ावा गा है ओका फिर से दोहरावाएं।
3: चुन्नू मुन्नू जो अपन लक्ष्य निर्धारित करे बाटिन के हम बड़े हो कि ई बनबगा तो पे भैया ध्यान देत रहे हैं ओके हाँ, तैयारी हाँ। अभ्यास करत रहे हैं छुट्टी में ओके सदी
2: नहीं नहीं जो उन्हें जानकारी वाली किताब पढ़ाएं और कहानी पढ़ाएं किस्सा पढ़ाएं।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कुल मिला के भैया देखा कहा कि यह है कि अपने समय के सदुपयोग करवा तो समय भी जो उन्हें आपके लिए कुछ ना कुछ रखिया है वो आपके दे।
3: साथ ही चुन्नू मुन्नू से कहा कि भैया देखा गर्मी में ज्यादा तेल मसाला जिन खाएं हैं बाहर के दुकान के सामान ना खाएं ज्यादा घर के ताजा भोजन करें भैया हाँ साफ स्वच्छ पानी पिए।
2: बिल्कुल भैया देखा
3: खाना में सलाद ज्यादा लें हाँ
2: बिल्कुल
3: खीरा ककड़ी ताकि पानी कमी ना हो।
2: बिल्कुल भैया ये सब तो गर्मी के फल हैं जो है जो भी अपने खेते में है या बाजार में है अपने घरे उपलब्ध है खीरा ककड़ी एक भरपूर मात्रा में खाएं ताजा खाना खाएं।
3: बिल्कुल,
2: और बाहर के चीज बंद डिब्बा वाली चीज से खाए से बचाएं।
3: अच्छा दोपहरिया निकला थे भैया कोनो काम से तो सर पे गमछा वमछा जरूर बांधे रहे हैं भैया कपड़ा लगता अच्छे से पहने रहे हैं पानी जरूर साथ में लिए रहे हैं भैया।
2: बिल्कुल भैया देखा पानी के साथ साथ में कहा है कि पानी में ऐसे जैसे घोल बना लें
3: ग्लूकोज डालें नींबू गार लें थोड़ा

0: शरबत बनाए लें, सिकंजी बनाए लें,
1: बिल्कुल
0: तो उहू से जो नहाए चुंडू मुंडू रहन के अच्छा भी लगी, और थोड़ा सा पानी पिए के उनका बहाना मिला रही।
1: जैसे बाहर से तुरंत खेल के आए तो तुरंत पानी भी ना पिए भैया, ठंडा गर्म हो जाता ना, थोड़ा कुछ देर रुक के सुस्ता लें तब पानी पिए।
0: बिल्कुल भैया, और कोशिश करें कि जो नहाए आप घर के अंदर ही रह के खेल खेल।
1: बिल्कुल हाँ,
0: देखा हो रघु भैया आपने चुंडू मुन्नू के लिए हम लोग तमाम कहानी किस्सा सुनवावत रही थी, नई नई जानकारी वाली बात बत कही बतावत रही थी।
1: हाँ,
0: और हम कहे आज देखा चुन्नू मुन्नू के जो है कुछ कविता ही सुनवाए दिन जाए का।
1: हाँ भैया सुनवा दिया।
0: तो देखा अपने आज जो है कार्यक्रम में जो है नीरज कुमार भैया के जो है
1: अच्छा,
0: कुछ बाल कविता है, अब हमारा चुन्नू मुन्नू सुन ली जाए तो फिर बात बत कही।
1: हाँ चुन्नू मुन्नू भी इंतजार करते हैं कब सुनाइए कहानी है।
0: हाँ
1: तो सुने भैया
0: आज कविता सुनवा भैया।
2: प्रस्तुत है मेरी पहली कविता, चिड़िया रानी।

0: तुम।
1: हाँ भैया,
0: हाँ भैया,
1: देखा नीरज कुमार भैया कितना बढ़िया जो ना कविता ही
0: बढ़िया कविता।
1: सुनाए। चुन्नू मुन्नू भी देखा ऐसे सीखे जो ना है, और
0: बिल्कुल
1: कितना
0: बिल्कुल।
1: बढ़िया लगा हुई नहु के। देखा एक बात और कहा भैया, कि
0: बोला भैया।
1: हमारे चुन्नू मुन्नू के देखा सब कोनो भी बात बतावा कहा सुना तो ओका समझा थी,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन एक बात हम ही कहा चाहब कि देखा चुन्नू मुन्नू आप जो पढ़ाई लिखाई करा था सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ना है अपने जीवन में नैतिकता बहुत
0: बिल्कुल।
1: जरूरी है,
0: हाँ
1: कि हमका कैसे अपने बड़े बुजुर्गन से कैसे बोले क्या है, कैसे रहाय क्या है, कैसे व्यवहार करे क्या है, और कैसे एक दूसरे के प्रति सहयोग के भाव रखे क्या है, दया रखे क्या
0: बिल्कुल।
1: है। तो कहा कि मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ जो उन्हें नैतिकता भी जो उन्हें
0: हाँ
1: अपने जीवन में लिया हुए।
0: खैर भैया, देखा कौन जीवन में अगर नियम संयम ना हो भैया तो जीवन व्यर्थ बटे। अपन बड़े बुजुर्ग का आदर करें, हाँ छोटन के प्यार करें भैया, सबके समान आदर दें तब
1: बिल्कुल
0: अच्छा।
1: बिल्कुल भैया। तो ये लिए कि नैतिकता जो उन्हें एक आदर्श जो उन्हें नागरिक के निर्माण में सहयोग करते, तो कहे कि मतलब कि चुन्नू मुन्नू भैया पढ़त लिखत हैं तो एक अपने जीवन में रखें, और
0: हाँ
1: ए तरह कोनो बदमाशी ना करें कि जो
0: बिल्कुल।
1: उन्हें अपने बड़े बुजुर्गन के सम्मान
0: हाँ,
1: ना में
0: खोए दें।
1: कमी आवे, है ना।
0: हाँ, और अपना संस्कृति के पहचाने हैं
1: बिल्कुल भैया। और
0: वही।
1: साथ ही साथ देखा भैया इस समय गर्मी पड़त यह है बहुत तेज़ी से, तो यही कहा कि घरे में रहें
0: हाँ,
1: और लू से बच के
0: बचा
1: रहें, बाहर निकलें तो हाथ मुंह ढके रहें,
0: बिल्कुल।
1: और ठंडा पेयजल जौन भी हो का उपयोग करें
0: तेल मसाला के उपयोग कम
1: बाहर
0: करें
1: के।
0: भैया, सलाद ज़्यादा खाएं भैया,
1: हाँ बाहर के
0: मौसमी फल
1: जौन,
0: खाएं।
1: हाँ डब्बा बंद भोजन है ये सब
0: बिल्कुल।
1: के खाए से जौन है बचे। हमें देखा तमाम तरह के जौन है, पता
0: हाँ
1: नहीं कब के बंद
0: बने।
1: हो
0: हाँ,
1: पैकिंग भाई हो कई।
0: एक्सपायरी हो जाती भैया, डेट निकल
1: हाँ
0: जाती है, वो
1: तो
0: सब खाए से आदमी बीमार पड़ जाते हैं,
1: एका
0: वो सबसे
1: सब।
0: बचें। घर के ताज़ा भोजन सबसे बढ़िया बात है भैया।
1: बिल्कुल भैया। और अपन जौन भी देखा ये छुट्टी में जौन विद्यालय के जौन कार्य मिला हुई
0: अच्छा।
1: उहू के जौन है पूरा करें, मन से पढ़ाई लिखाई करें, अपने देश के अपने घर परिवार के अपने समाज के नाम रोशन
0: रोशन करें।
1: करें।
0: हाँ,
1: ये लिए कि देखा जौन आज चुन्नू मुन्नू है नहीं है कल के हमारे जौन
0: भविष्य
1: है
0: बटन भैया।
1: भविष्य हैं, और इन्हीं से जौन है देश के समाज के निर्माण है,
0: बिल्कुल।
1: तो इनका चाहिए कि अपने सारे अभिनय से जो है अपने
0: तैयारी शुरू कर दें भैया।
1: देश समाज के खातिर जो है प्रेरणा बनाए रहें, और अपने आसपास कोशिश करें कि जो है वही तरह के माहौल रहा है, और
0: बिल्कुल
1: अपने अच्छे अच्छे मित्रन के साथ जो है नया नया कुछ सीखे करे
0: बिल्कुल।
1: समझे के प्रयास।

0: करें।
1: सही कहा भैया, जो आप जो फालतू के लोग बाटे दोस्त यारी वो सब बंद करें भैया, है पढ़ाई पे ध्यान दें भैया, जितने अच्छे पढ़े वाले लड़कन बाटे उन्हें से दोस्ती रखें और दिन भर पढ़ाई करें।
0: और एक चीज़ भैया देखा, चुन्नू मुन्नू कहा कि देखा ऐसा में जैसे गर्मी के समय आए तो अपने आसपास जो नहाए जहाँ पेड़ पौधा होए घर होए
1: बिल्कुल
0: वहाँ छोटा छोटा देखा पक्षी के लिए अपने पशुअन
1: हाँ,
0: के लिए पानी
1: पानी
0: पिए
1: रख
0: के
1: दें,
0: और कुछ जो
1: चारा
0: ना
1: छिड़क दें भैया, है
0: चारा दाना है डाल दें तो जो नहीं पशु पक्षी अपने आसपास रहता है उन्हों के भोजन मिल जाते देखें।
1: गर्मी से बच भी जाते
0: गर्मी
1: लोग।
0: से जो है तो गौरैया वगैरह देखा उनके घोंसला छोटा मोटा बनाए दें या तो पानी के या दाना के जो उन्हें व्यवस्था कर दें
1: बिल्कुल
0: ताकि
1: बिल्कुल।
0: उन्हों जो नहाए कुछ उनके लिए मिल सके अन्न दो नहाए। ऐसे चुन्नू मुन्नू का प्रकृति से भी जुड़ा थी नहीं तरह
1: सही
0: छोटा
1: कह रहे,
0: छोटा
1: सही कह रहे
0: काम
1: भैया,
0: करे से।
1: हाँ,
0: तो देखा भैया चुन्नू मुन्नू से
1: विदा लेक
0: विदा
1: समय।
0: लेके भी समय होता है तो हम कहा कि भैया चुन्नू मुन्नू अपन ध्यान रखा और छुट्टी में मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करा। तो
1: हाँ,
0: लड़कनों
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।
2: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 MHz पर। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: Akashwadi at 90.
1: अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आर डियर लिसनर्स। शाम हो चुकी है और हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है
1: यू बाड़ी। यस ऑल द वंडरफुल लिसनर्स आउट देयर, मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति।
0: और मैं हूँ अंजलि श्रीवास्तव। ज्योति, शाम का समय कुछ थोड़ा अलग सा होता है ना, क्योंकि धूप थोड़ी सी रहम खाती है हम पे, मौसम थोड़ा सा बेटर होता है या बियरेबल होता है कह सकते हैं, और चाय की टपरी पर दोस्तों की जो है जमघट लगने लगती है ना।
1: पता है अंजलि, जब मैं स्टूडियो आ रही थी ना, तो रास्ते में मुझे कुछ बच्चे दिखे।
0: हाँ,
1: बच्चों को देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। क्या लाइफ हुआ करती थी ना हम लोगों की, संडे को कार्टून देखना और मंडे को होमवर्क नहीं किया इसका बहाना ढूंढना।
0: सच में तब तो एकदम लगता था ना कि कब बड़े होंगे, कब कॉलेज शुरू होगा, कब अपनी मर्जी की लाइफ जिएंगे। लेकिन अब जब बड़े हो गए तो लगता है कि बचपन ही कितना बेस्ट था।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि बड़े होते ही हमारे सामने एक ऐसा समय आ जाता है।

0: जिसे हम कहते हैं एडल्टिंग, यानी बड़े होने की जिम्मेदारियां। और आज हम बात करेंगे उसकी जिसे स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में किसी ने नहीं सिखाया। अंजलि,
1: हाँ,
0: एक बात बताओ, स्कूल में हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो रट लिया,
1: हाँ,
0: लेकिन जब पहली बार सैलरी आई और उस पर टीडीएस कटा, तब समझ आया कि असली मैथ तो ये है।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा तुमने ज्योति। मुझे याद है जब पापा ने ना मुझे पहली बार कहा था कि जाओ बैंक जाकर पासबुक प्रिंट करवा लाओ और ये वाला फॉर्म भर देना, ये पैसे जमा करने हैं। मुझे ऐसा लग रहा था ना उस टाइम कि क्या मैं एकदम दूसरे प्लैनेट में आ गई हूँ क्या, कि समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई किस विंडो पे जाना है, कहाँ पे क्या पूछना है, कैसे फॉर्म भरना है।
0: सच में अंजलि, इसे ही तो कहते हैं एडल्टिंग स्केयर्स। मतलब स्कूल में हम ट्रिग्नोमेट्री हमें सिखा दी गई,
1: हाँ,
0: न्यूटन के लॉस सिखा दिए गए, लेकिन ये नहीं सिखाया कि इनकम टैक्स कैसे भरते हैं,
1: हाँ,
0: बजट कैसे बनाते हैं, या फिर सैलरी का कितना परसेंट सेव करना चाहिए।
1: और दोस्तों सिर्फ पैसे की बात नहीं है, एडल्टिंग का असली झटका तब लगता है जब आप पढ़ाई या जॉब के लिए दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं। मम्मी के हाथ का वो गरम गरम खाना अचानक गायब हो जाता है। और असली रोना तो तब आता है जब ऑफिस या कॉलेज से एकदम थक के आओ और पूरा घर साफ करना पड़ता है और सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी अभी एडल्टिंग की दुनिया में कदम रखा है, उनके लिए दो सिंपल सी टिप्स हैं।
1: टिप नंबर वन, द 50-30-20 रूल। आप सबसे पहले ये करिए कि अपनी सैलरी का या पॉकेट मनी जो भी है उसका 50% अपनी ज़रूरतों पे इन्वेस्ट करिए, जो भी आपका नेसेसिटी है उस पे, एंड 30% ऑन योर डिज़ायर्स, कि आपको ये चाहिए है, बहुत टाइम से आप इसके लिए सेव कर रहे थे, फॉर दैट, एंड 20% आँख बंद करके आप सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इस चीज़ के लिए कभी क्या ज़रूरत पड़ जाए, यू मस्ट हैव सम सेविंग्स फॉर योर सेल्फ।
0: बिल्कुल अंजलि। अब बात करते हैं टिप नंबर टू की, डोंट हेजिटेट टू आस्क। अगर आप बैंक का फॉर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी बड़े या फिर किसी कलीग से पूछ सकते हैं। शर्माइएगा नहीं, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आपके जो कलीग्स होते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स होते हैं या जो आपसे बड़े होते हैं, वो आपको सही राह ज़रूर दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिनसे आप पूछ रहे हैं, कभी ना कभी वो भी तो नौसिखिए रहे ही होंगे। यही सब तो हमें मैच्योर और स्ट्रांग बनाता है। सो डोंट पैनिक, एडल्टिंग एक जर्नी है, कोई रेस नहीं। आराम से सीखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए।
1: सही में ज्योति, मुझे ऐसा लगता है कि एडल्टिंग इट्स एन एक्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि आप कुछ गलती कर रहे हो तो जब आपने वो गलती की, देन यू गेट टू लर्न कि हाँ, इसमें हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए था और ये ऐसे होना चाहिए था। फिर आगे हो सकता है कि कोई आपका छोटा भाई बहन हो तो आप उसी को वो बता सके, देखो मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, तुम मत करना।
0: बिल्कुल, ये मुझे ऐसा लगता है अंजलि कि ये हमारे एक लाइफ का प्रोसेस है,
1: हाँ,
0: कि हम चीज़ें गलत कर रहे हैं तो हम उससे सीख भी रहे हैं।
1: हाँ,
0: और एडल्टिंग उसमें एक कह सकते हैं ना कि खाने में नमक की तरह काम करती है।
1: हाँ,
0: कि अगर हम एडल्ट अगर बिहेव नहीं कर रहे हैं तो अभी हमारे पास जो खाना बन गया है उसमें उतना मज़ा नहीं है।
1: हाँ हाँ
0: है ना।
1: तो दोस्तों, एडल्टिंग इज द रियल वर्ल्ड। जब आप एंटर करते हैं एडल्टिंग में तो आपको पता चलता है कि अरे, देश दुनिया में ये करना होता है, ये चल रहा है। तो इसी के साथ हमारे पास बातें और हैं, सेगमेंट्स और हैं आपके लिए, मगर आपके लिए गीत भी हैं। तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम का पहला गाना।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग चर्चा के विषय लाते हैं, कोई भी दिन होता है तो वो कैसे सिग्निफिकेंट है, उसकी कुछ कल्चरल इम्पोर्टेंस है या जो भी है। तो आज है 24 मई और आज पूरी देश और दुनिया के कई हिस्से मना रहे हैं राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे।
1: बिल्कुल सही। 56 देशों का एक ऐसा परिवार जो सरहदों से परे, संस्कृति और विकास के धागे से बंधा हुआ है। आज के इस सफर में हम जानेंगे इस सफर की कहानी कुछ मजेदार बातों के साथ।
0: और फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, जब भी हम राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था, ये बना क्यों था आखिर। और ये बहुत ही जायज सा सवाल भी है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटें तो पहले इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहा जाता था।
1: लेकिन वक्त बदला, दुनिया बदली और आज ये दुनिया इस दुनिया के सबसे पुरानी राजनीतिक संघों में से एक माना जाता है। खास बात ये है कि इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हर देश की आवाज़ जो है वो बराबर है।
0: और हमारे भारत का तो इसमें सबसे गहरा नाता है। भारत इस परिवार का एक बहुत ही मजबूत और बड़ा स्तंभ है। और आबादी के लिहाज से देखें तो कॉमनवेल्थ की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले भारत में रहता है।
1: यानी कि हमारी युवा शक्ति, हमारा टैलेंट इस पूरे वैश्विक मंच को दिशा दे रहा है। दोस्तों, जब भी कॉमनवेल्थ की बात होती है, मुझे तो सीधे वो कॉमनवेल्थ गेम्स याद आ जाते हैं, जहां हमारे एथलीट्स मेडल जीत कर हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं।
0: उफ, वो पल तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, एकदम गूज बम्स आने लगते हैं। खेल ही तो है जो इस सभी दुनिया के देशों को बिना किसी भेदभाव के एक मैदान पर लाकर खड़ा कर देता है। और इस साल यानी 2026

0: की जो थीम है वो भी बहुत ही कमाल की है दोस्तों।
1: बिल्कुल, और इस साल की थीम है अनब्लॉकिंग अपॉर्चुनिटीज टुगेदर फॉर अ प्रॉस्पेरस कॉमनवेल्थ, यानी मिलकर अफसरों के नए दरवाजे खोलना ताकि पूरा राष्ट्रमंडल समृद्ध हो सके।
0: कितनी खूबसूरत है ना ये सोच। इसका सीधा मतलब है कि चाहे वो तकनीक हो, क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो या युवाओं को रोजगार देना हो, ये सभी देश मिलकर काम करेंगे।
1: दोस्तों, क्या आपको पता है कि कॉमनवेल्थ का सबसे छोटा देश कौन सा है?
0: मुझे लगता है ज्योति कि ये कोई पैसिफिक आइलैंड है, राइट?
1: बिल्कुल, वो है नौरू, जो प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप देश है। और मज़ेदार बात ये है कि कॉमनवेल्थ के देशों में दुनिया की हर 3 से 1 इंसान कॉमनवेल्थ का हिस्सा है।
0: और एक और फैक्ट मैं ये जोड़ दूं कि इस ग्रुप में सिर्फ वो देश नहीं है जिन पर कभी अंग्रेज़ों ने राज किया था, बल्कि रवांडा और मोजाम्बिक जैसे देश भी इसके सदस्य हैं जिनका ब्रिटिश इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं था। वो अपनी स्वेच्छा से इसमें हिस्सा बने थे।
1: और यही तो इस परिवार की खूबसूरती है, विविधता में एकता। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि दुनिया में चाहे कितनी भी दीवारें क्यों ना हो, हमें हमेशा पुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि दूरियां मिट सके।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी कॉमनवेल्थ के बारे में बातें। अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आज सबको पता है कि आज है संडे, और संडे को हमारा आता है अलग स्पेशल सेगमेंट हेलो युवा फोन इन प्रोग्राम।
1: और आज का हमारा हेलो युवा फोन इन प्रोग्राम हम लेकर आए हैं हमारी ही साथी साक्षी पांडे के साथ। तो आइए सुनते हैं हेलो युवा। हेलो प्रयागराज और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एकदम फ्रेश, एनर्जेटिक और आपके फेवरेट फोन इन शो हेलो युवा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट साक्षी पांडे। तो पीछे छोड़ आइए वो कॉलेज के बोरिंग असाइनमेंट्स और ऑफिस के इरिटेटिंग मंडे ब्लूज को, क्योंकि यहाँ आने के बाद टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए हेडफोन्स थोड़ा टाइट कर लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा अप कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सफर। तो करिए हमारे फोन इन नंबर पर कॉल, और हमारा नंबर है 0532242 3649। हमारा एक और नंबर है, वो है 0532297046 पर। हमें आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। हेलो डियर लिसनर, वेलकम इन हेलो युवा। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम उत्कर्ष है।
1: okay, उत्कर्ष कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: प्रयागराज।
1: तो उत्कर्ष, आप रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं?
2: जी, मैं रेगुलर सुनता हूँ।
1: क्या सुनना पसंद करते हैं आप रेडियो पे, कोई खास प्रोग्राम या फिर सिर्फ?
2: रेडियो पे जो पुराने गाने आते हैं वो मेरे को काफी अच्छे लगते हैं, अच्छी प्लेलिस्ट रहती है रेडियो की।
1: ओके, तो क्या करते हैं आप अभी?
2: मैं तो कलाकार हूँ, म्यूजिशियन हूँ, वोकलिस्ट।
1: तो आप गाने गाते हैं, तो अगर अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे लिसनर्स को भी कुछ सुना सकते हैं।
2: जी जी बिल्कुल, किशोर कुमार जी का रिमझिम गिरे सावन गाता हूँ मैं। जब घुंघरों से बजती है बूंदे अरमा हमारे, पल के नमो दे कैसे देखे करिए जतन, सुलग सुलग जाए भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सा।
1: उत्कर्ष, आपने बहुत प्यारा गाया। तो अगर आपकी कोई फरमाइश है, अगर आप रेडियो की तरफ से कुछ सुनना चाहते हैं तो आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं किसी गीत की।
2: जी, मैं मेरी फरमाइश है कि आप बजाएं श्री रघुवर कोमल कमल नैन में।
1: बहुत प्यारा गीत आपने बताया है, हम आपके लिए जरूर प्ले करेंगे आपका फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू उत्कर्ष।
2: जी जी

0: क्या नाम है
1: हाय,
0: आपका? कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं प्रज्ञा, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और मैं अन्ना से बोल रही हूँ।
0: तो प्रज्ञा क्या करती हैं आप?
1: फिलहाल मैं तो प्रिपरेशन कर रही हूँ।
0: प्रिपरेशन कर रही हैं आप? तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन?
1: अच्छी चल रही है, ठीक चल रही है।
0: अच्छा, तो क्या आप इस जर्नी में आप क्या सब सीख रही हैं? अगर आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ तो आप शेयर कर सकती हैं।
1: मैं इसमें रेडियो सुनती हूँ, लाइव रेडियो पे मैं कुछ प्रोग्राम चैनल उसको सुनती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। जैसे ये यू सेप्रेस और युवावाणी मुझे काफी अच्छी लगती है, तो प्रोग्राम रेडियो आकाशवाणी पे। बाकी
0: ओके प्रज्ञा, तो
1: गाना वाना भी मैं सुनती हूँ रेडियो पे, काफी अच्छा लगता है मेरे को।
0: तो प्रज्ञा आप जैसे कह रही हैं आप गाने सुनती हैं, अगर आपकी कोई फरमाइश हो जो आप हमसे प्ले करवाना चाहती हो तो आप
1: तो कलियां आप बता दीजिए।
0: ओके। थैंक यू प्रज्ञा।
1: ओके, थैंक यू थैंक यू।

0: हेलो, वेलकम डियर लिसनर. क्या नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं प्रकाश पांडे प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
0: प्रकाश. प्रकाश, क्या करते हैं आप?
1: अभी मैं 12th में हूँ।
0: आप 12th में हैं? आप रेडियो सुनते हैं आप?
1: जी, मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या सुनते हैं रेडियो पे? कोई खास प्रोग्राम या फिर आप संगीत के लिए सुनते हैं?
1: रेडियो मैं संगीत के लिए सुनता हूँ।
0: अच्छा, तो मतलब आपको गाने सुनना पसंद है.
1: जी,
0: किस टाइप के सॉन्ग्स? ऐसे आपको ऐसे लेटेस्ट न्यू सॉन्ग्स पसंद है या फिर ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है?
1: तुमको ओल्ड सॉन्ग पसंद है, लेटेस्ट सॉन्ग पसंद है?
0: अच्छा, अगर आपकी कोई फरमाइश है, आप हमसे प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं किसी गाने की.
1: जी, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ओ रे पिया, इसको आप प्ले कर सकते हैं।
0: ओके प्रकाश, थैंक यू सो मच.

0: हेलो डियर लिसनर, वेलकम इन आकाशवाणी। क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी, मेरा नाम मोनाली है और मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ।
0: आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है मोनाली। आप रेडियो सुनती हैं?
1: जी, मैं बहुत सुनती हूँ रेडियो। मुझे ना युवानी सुनना बहुत पसंद है। एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेस्ट किया था ये प्रोग्राम सुनने के लिए।
0: अच्छा, तो कोई खास वजह है आप जो युवानी सुनना इतना पसंद करती हैं?
1: टू बी ऑनेस्ट, गाने मुझे उसमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आई थिंक मतलब आकाशवाणी है और वो जो यूथ प्रोग्राम है, तो उसमें हमारी टेस्ट के अकॉर्डिंग गाने बजते हैं और साथ में हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं, क्योंकि हम सब जो है अभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे मेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सुनने को मिल जाती हैं जो कभी कभी मुझे याद नहीं रहती, लेकिन जब मैंने उसे रेडियो पे सुना होता है तो वो चीजें मेरे दिमाग में रह जाती हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि आपको गाने सुनना भी पसंद है रेडियो पे, तो आपकी कोई फरमाइश
1: जी
0: है जो आप प्ले
1: जी
0: करवाना चाहती
1: आप,
0: हैं?
1: हाँ आप मुझे सुनवा दीजिए ए हैरते आशिकी सॉन्ग। ये हरिहरन का गाया हुआ सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है।
0: ओके मोनाली, हम आपके लिए ज़रूर प्ले करेंगे आपका सॉन्ग।

दोस्तों, हेलो युवा का ये पिटारा अब हो रहा है बंद, लेकिन हमारी और आपकी दोस्ती का सिलसिला रहेगा हमेशा अनस्टॉपेबल। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए और

0: हेलो युवा को हमेशा दिल के पास रखिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं हर बृहस्पतिवार दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच में। हमारे फ़ोन नंबर पर 0532-242-3649 पर। हमारा एक और नंबर है 0532-297-0462 पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हेलो युवा फोन इन कार्यक्रम साक्षी पांडे के साथ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज की। दोस्तों, दुनिया में पहचान बनाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी बदल देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं।
2: और युववाणी का ये खास सेगमेंट प्रेरणा पुंज ऐसे ही लोगों को समर्पित है जो बिना किसी शोर किए अपने काम से प्रेरणा बन जाते हैं।
1: आज की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं, एक इंसान अकेला क्या कर सकता है।
2: लेकिन आज हम जिस शख्स की कहानी लेकर आए हैं, उन्होंने अकेले अपने जुनून से सूखी जमीन को हरियाली में बदल दिया।
1: एक साइकिल, कुछ पौधे और प्रकृति के लिए अथाह प्रेम, बस इन्हीं चीजों को साथी बनाकर उन्होंने हजारों पेड़ लगा दिए।
2: सोचिए, एक इंसान रोज सुबह उठे, साइकिल पर पानी के डिब्बे बांधे और निकल पड़े खाली जमीनों को हरा करने।
1: ना कोई बड़ी फंडिंग, ना सोशल मीडिया फेम, ना कोई स्पॉटलाइट, फिर भी सालों तक बिना रुके अपना काम करते रहे।
2: लोगों ने शुरुआत में उन्हें पागल तक कहा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों से ज्यादा पेड़ों की खामोशी को समझा, और शायद इसी डेडिकेशन ने उन्हें बना दिया पेड़ों वाले दादाजी।
1: दोस्तों, आज का हमारा प्रेरणा पुंज समर्पित है दुखू मांझी जी को। दुखू मांझी जी का जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के सिंदरी गांव में हुआ था।
2: वो एक बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से थे। फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा मिल नहीं पाई, लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी, अगर पेड़ नहीं होंगे तो भविष्य नहीं होगा।
1: कहा जाता है कि जब वो लगभग 12 से 15 साल के होने वाले थे, तो उस समय उनसे किसी ने कहा कि जो आने वाला समय है ना दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है, और अगर पेड़ नहीं लगाए गए तो बहुत बुरा भी हो सकता है।
2: बस यही बात उनके दिल में घर कर गई, और फिर शुरू हुआ उनका मिशन। जहाँ भी खाली ज़मीन उनको दिखती, वो वहाँ पौधे लगा देते।
1: सड़क किनारे, शमशान के पास, खेतों के आसपास, यहाँ तक कि बंजर ज़मीनों पर भी।
2: दोस्तों, सबसे इंस्पायरिंग बात ये कि उन्होंने ये सब किसी बड़े सपोर्ट के बिना किया। वो अपनी साइकिल पर पानी के डिब्बे, फावड़ा और पौधे लेकर बस निकल पड़ते थे।
1: धीरे धीरे उन्होंने 5,000 से ज़्यादा पेड़ लगा दिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि शुरुआत आसान थी। कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे पेड़ लगाकर क्या मिलता है इन्हें।
2: लेकिन दोस्तों, कुछ लोग रिजल्ट देखकर नहीं अपने विश्वास से काम करते हैं। दुखू मांझी जी भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने क्रिटिसिज्म को नॉइस की तरह इग्नोर किया और नेचर की आवाज़ सुनते रहे।
1: उनके सालों की मेहनत को आखिरकार पूरा देश पहचानने लगा। साल 2024 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
2: और सच कहे ना, ये अवार्ड सिर्फ दुखू मांझी जी को नहीं मिला, ये सम्मान हर उस इंसान को मिला जो बिना किसी स्वार्थ के समाज और प्रकृति के लिए काम करता रहता है।
1: दोस्तों, आज की जनरेशन क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की बात करती है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दोस्तों कि
2: दुखू मांझी हमें ये बताते हैं कि अवेयरनेस से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पर एक्शन ले रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि उन्होंने सिर्फ पेड़ लगाए ही नहीं, बल्कि सालों तक उनकी देखभाल भी की, क्योंकि उनका मानना था कि पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उसे बड़ा करना असली जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
2: और कहा जाता है कि वो जहाँ पे भी जाते थे, अपने साथ सीड्स या छोटे छोटे पौधे ज़रूर रखते थे। मतलब उनके लिए ना ग्रीनरी कोई कैंपेन नहीं थी, वो उनको ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके थे।
1: इनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि एक इंसान अगर लगातार सही दिशा में काम करे, तो वो सच में अपने आसपास की दुनिया को बदल सकता है।
2: तो दोस्तों, ये था हमारा प्रेरणापुंज सेगमेंट। और लास्ट में आपको पता है कि हम आपके लिए लाते हैं Q&A सेशन। कल का हमारा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किस मौलिक अधिकार का निलंबित नहीं किया जा सकता है। उसका सही उत्तर है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का अधिकार और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
1: और इसी कड़ी में हमारा

0: आज का सवाल है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप अपना जवाब हमें दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। आप चाहें तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 8004926250।
1: और ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव
0: और मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं समाचार। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और

0: हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 और 50 सेकंड हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शीर्ष कार्यक्रम।

रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे वार्ता, आधुनिक हिंदी साहित्य में ग्राम्य जीवन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ल, साथ ही फूलचंद्र और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम हमारे मेहमान के अंतर्गत जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश कुमार श्रीवास्तव से आशुतोष सुंदरम की बातचीत सुनिएगा शाम 7:31 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में गीत भजन का आनंद लीजिएगा शाम 7:45 पर। कलाकार होंगे अरुण गुड़वाड़ी।

अपने पत्रों संदेशों के उत्तर सुनेगा कार्यक्रम चिट्ठी आई है में, प्रसारण समय रात्रि 8 बजे। बाज आए नीम हकीमों से, नरेश मिश्र की लिखी झलकी सुनाएंगे। आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8:30 बजे। कहकशां की महफिल सजेगी रात 9:30 बजे। ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा रोज की तरह सुबह 9:30 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम आराधना में सुबह 6:05 पर। कृष्ण के संबंध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार सुनवाएंगे सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम विचार बिंदु के अंतर्गत। कृषि जगत कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे अवनीश यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। विषय होगा गर्मी के मौसम में खेती की तैयारी। युवाओं में नशे की लत से होने वाली आम समस्याएं, लक्षण।

विचार। डॉक्टर विपुल मेहरोत्रा की ये वार्ता सुनाएंगे कल के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:00 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रीमती कमला बोस का ख्याल गायन सुनिएगा, सुबह 7:30 बजे, दिन में 12:15 बजे और रात्रि 10:30 बजे। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा, सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में ज्योति आनंद के स्वर में गीत भजन का आनंद लीजिएगा, सुबह 9:50 पर। शाम 7:45 पर सुजाता सिंह के स्वर में गीत और भजन सुनवाए जाएंगे। वॉयस ऑफ प्रयागराज हमारा ये कार्यक्रम सुनिएगा कल दिन में 10:05 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर के आएंगे कल दिन में 10:30 बजे। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कल दिन में 11 बजे। कल का हमारे कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता निर्माता निर्देशक देवानंद पर।

फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा। कल दिन में 12:30 बजे कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी कल दिन में 12:15 बजे। इसके अंतर्गत डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से बातचीत सुनाई जाएगी। विषय होगा नवजात शिशुओं की देखभाल। लोकगीत सुनिएगा दिन में 2:30 बजे। कलाकार होंगे रामकृपाल यादव, प्रीति मिश्रा, धीरज कुमार और साथी। नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया लेकर के आएंगे कल शाम 5:00 बजे। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे रोज की तरह शाम 5:15 बजे। हिंदी सिनेमा में स्त्री विमर्श का स्वरूप, डॉक्टर सुप्रिया पाठक की वार्ता सुनवाएंगे कल के हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:30 बजे। कानून और हम, ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:30 बजे। इसके अंतर्गत सुनिएगा पंकज कुमार मिश्र से नेहा गुप्ता की बातचीत। विषय होगा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना। और गजलों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम कहकशां के साथ कल रात 9:30 बजे। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में ये देशगान।

वे सुरों में ये देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशौ रणनीतिक सहभागितां सुदृढ़ीकरणाय पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः शीघ्र व्यापार संधेः आह्वानम् अकरोत्। सहैव राष्ट्रस्य कृते ऊर्जा आपूर्तेः विविधीकरणे बलम् अददात्। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टी दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। अमेरिकीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो उक्तवान् यत् भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यंत महत्वपूर्णेषु रणनीतिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति इति। प्रशासनेन इबोला संक्रमणस्य प्रकोपं दृष्ट्वा सर्वे भारतीय नागरिकाः कांगो युगांडा तथा दक्षिण सूडान देशेषु अनावश्यक यात्रां न कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्तस्य क्वेटा नगरे रेलमार्गस्य समीपे जाते विस्फोटे 24 जनाः मृताः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलं दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह कोलकाता स्थिते ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धां करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। डॉक्टर एस जयशंकरः मार्को रूबियो चोभौ अद्य नवदिल्लीनगरे अनेक विषयेषु चर्चाम् अकुरुताम्। उभौ भारत अमेरिका सामरिक सहभागितां महत्वपूर्णाम् अवदताम्। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापार ऊर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षा क्षेत्रेषु विशेष रूपेण अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापकः वैश्विकः सामरिक सहभागित्व सम्बन्धः अस्ति, यः गहन सहयोगे आधारितः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्ण विश्वे प्रभावं जनयन्ति तथा च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमानचर्चा कठिन वैश्विक परिस्थितिषु अभवत्, परञ्च तस्मै मुक्त मनसा सार्थका चर्चा भविष्यति इति विश्वासः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापार सन्धेः शीघ्रमेव अन्तिमरूपेण निर्धारणम् आवश्यकम् अस्ति। तेन ऊर्जा व्यापारे जातस्य विस्तारस्य स्वागतं कृतं तथा च उक्तं यत् विविध स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर जन संबंधा महत्व प्रतिपादयन

0: पूर्व उत्तरप्रदेशे पूर्वी मध्यप्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य कृते रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन सूचितं यत् आगामि पञ्चदिनेषु उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भे पञ्जाबे हरियाणायां चण्डीगढे दिल्ल्यां च पृथक् पृथक् स्थानेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति। आगामिषु त्रिषु दिनेषु एतेषु स्थानेषु तीव्र उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भवितुमर्हति इति विभागेन पूर्वानुमितम्। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता तथा केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः अद्य कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गांधिनः उपरि देशे अराजकत्वं प्रवर्तयितुं गभीरं षड्यन्त्रस्य आरोपं कृतवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विरुद्धं गांधिनः वक्तव्यं सर्वैः विपक्षिदलैः सह कांग्रेस दलस्य प्रमुखं षड्यन्त्रं सूचयति। अन्ते क्रीडावार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य प्रथमे द्वन्द्वे मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। प्रथमं क्रीडता राजस्थान रॉयल्स दलेन अष्ट क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 75 धावनांकाः विनिर्मिताः। अपरतः द्वितीये द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम। हम कह रघु भैया।
1: हाँ बोला भैया, बोला भैया।
0: ए दोपहरिया में इतना जो ना है मुड़े पे जो ना है गमछमछा बांधे जो ना है देखे तो का जो ना है
1: हाँ कहा करी भैया, बहुत तेज बाटे भैया
0: बगिया में तो जुटा रहे। हाँ हम कहे भैया इतना दोपहरिया उपहरिया में खेते होते ना जावा करा जो ना है।
1: अब कहा करी भैया, खेते की थोड़ा तैयारी करत बाटे भैया, मेरे सही करत बाटे है।
0: देखा भैया खेत के काम तो जरूरी बा लेकिन ये जौन इतनी तेज लू चलत बात है एहमे गर्मी में जौन है देखा अगर बचा सका तो जौन है दोपहर से निकले में बचा। अब जौन खेती बाड़ी काम है देखा ओका सुबेरे संझा करा
1: हाँ
0: ताकि
1: भैया
0: देखा अगर तबीयत तबीयत खराब हो गए
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: लू लग गवा तो भैया
1: भैया
0: देखा
1: खेती
0: जौन
1: किसानी
0: है
1: प्रभावित हो जात भैया।
0: ले देख पड़ जाए और 4 पैसा जौन है दवाई में खर्चा होई
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और स्वास्थ्य खराब हो तो हम कहे एका जो है तई ध्यान रखा। यही बतावा कि जो है गैया भैंसिया लागत है कि नहीं।
1: हाँ भैया हाँ
0: हाँ तो फिर देखा भैया दूध होता है तो मतलब फिर
1: हाँ
0: मट्ठा
1: भैया
0: दही जो है व्यवस्था
1: हाँ भैया
0: आहा
1: सुबह शाम भैया उनके चारा की व्यवस्था करे पड़े भैया।
0: तो कहा है कि मतलब कि जो है दूध दही जब होता है तो फिर अब गर्मी में देखा जो है तनिक मट्ठा उठा जो है।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: लेते रहते भैया।

0: बिल्कुल भैया, जो ना है देखा आप जब मेहनत करता है तो तनिक जो ना है खाए पिए के ध्यान तो
1: बिल्कुल
0: देन
1: बिल्कुल।
0: के पड़ी है कि नहीं। देखा भैया खेती किसानी के जो ना काम तो हम लोग के 12 महीना चला थे,
1: हाँ
0: लेकिन जो ना है मौसम के देखत भाई सारा काम करा तो ठीक रही।
1: बिल्कुल हाँ भैया,
0: और
1: खैर
0: किसानों
1: भैया।
0: भैया रन से कहा आपकी पंचों भैया रन से कि देखा भैया जौन भी काम हो अपन खेत खलिहान काम ओका जो ना है तनी तनी जो ना है करत रहा है सुबेरे संझा। और ये नहीं कि छोड़ दिया कि भैया चला भाई कैले बाद में कैले फिर इकट्ठा हो जाते तो भैया देखा पियो में जो ना है परेशान हो पड़त
1: खैर
0: है।
1: भैया देखा, खेती किसानी मौसम पर ही आधारित होती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर
0: भैया।
1: मौसम के साथ भैया खेती की जाती है, तब भैया 4 पैसा की आमदनी होती है, फसल भी
0: हम
1: अच्छी
0: कहे
1: होती है।
0: देखा भैया इस समय जो ना है खेत खाली भा है
1: हाँ
0: तो बहुत सारे किसान भैया अब इस समय अपन दलहनी फसल के तैयारी करत हुई हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो और जौन भैया किसान भैया अरे नबे इंतजार करते हैं नहु कहा कि भैया देखा ये समय बटे कि जब तक धान की खेती अब नहीं होए वाली बटे तो ये में जो ना अपन दलहनी फसल के जो ना है खेती करके
1: हाँ
0: 4 पैसा के आमदनी कई सकत हैं।
1: देखा भैया, दलहनी फसल जो है शरीर मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी तो बाटे बाटे हैं, साथ साथ जो जमीन है ओके भी उत्पादन क्षमता बढ़ावा थी भैया।
0: अरे बिल्कुल हो कही गया भैया। देखा ये एकदम 100% बात यह है कि भैया जितना भी दलहनी फसल हैं कहा
1: हाँ
0: गया है कि खेत के डॉक्टर हैं तो थाली के जो ना है प्रोटीन हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये मतलब जो ना है कहा गया है कि अपने जो खेते के लिए दलहनी फसल समझ लो कोनो डॉक्टर से कम ना है।
1: हाँ भैया, जैसे दलहनी में
0: और जो
1: भैया
0: ना देखा
1: अरहर।
0: अपने जो हम लोग खाना पीना खाते हैं इसमें जो ना है एक तरीके से जो प्रोटीन के जो ना है ज़रूरत यह है ये दलहनी फसल से ही हम लोग के पूरा होते, चाहे
1: बिल्कुल,
0: वह अरहर हो
1: चना
0: चाहे
1: हो, मटर
0: चना
1: हो, मूंग हो,
0: मसूर
1: उड़द
0: मूंग।
1: हो, हाँ भैया, ये
0: बिल्कुल
1: स्वास्थ्य के लिए
0: भैया
1: प्रोटीन के काम करते हैं भैया।
0: बिल्कुल भैया किसान के लिए बहुत फायदेमंद है एक जो ना है। और सबसे बड़ी बात देखा भैया जो रबी और खरीफ के फसल के बीच के जो समय होते ना भैया
1: हाँ
0: ये समय में किसान भैया हरें जो ना है थोड़ा सा मेहनत करके और अपन 1-4 पैसा के आमदनी भी कर सकथिन। और जो खेत के जो का है कि ओके गुणवत्ता है ना
1: बिल्कुल।
0: वह बनी रहते हैं लेकिन माटी के और पानी के भी देखा भैया बहुत हमें कम उपयोग होते हैं
1: हाँ
0: और पानी की बचत होते साथे साथे देखा जो है कि जो रोग बीमारी होते माटी में कोनो तरह के तो सारी चीज़ की कहा मतलब है कि एक तरीके से सही कह देते
1: साथ
0: हैं।
1: साथ भैया दाल के जो है भोजन में ले से आदमी के वजन तो कंट्रोल कर रहा था नियंत्रित, साथ ही साथ भैया जो मधुमेह के रोगी हैं उनका भी जो है लाभप्रद है उनके लिए।
0: बिल्कुल भैया मधुमेह के रोगी जो हाँ जो मरीज हैं भैया उनके लिए तो मसूर है चना है ये सब जो ना है बहुत फायदेमंद है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ख़ास करके जो ना है जो ना है दिल की बीमारी है तो उन्हों के लिए जो ना है
1: हाँ
0: एक तरीके से फाइबर जो ना है उपलब्ध करावाते में हार्ट अटैक के खतरा भी कम हो जाते एक तरह
1: बिल्कुल
0: के सेवन करे से।
1: हाँ, साथ ही
0: और
1: साथ भैया पच भी जाते जल्दी
0: बिल्कुल भैया
1: और ब्लड शुगर भी नियंत्रित कर भैया।
0: बिल्कुल भैया हर तरह का है कि मतलब देखा दलहनी फसल बहुत उपयोगी है। किसान भैया रन से हम यही कहा कि एका जो है अपन खेती के उथा में लिया हुए
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही साथ देखा भैया हमारे आपके लिए तो उपयोगी है ये यहाँ है खेते के लिए उपयोगी है साथ ही साथ हमारे पशुअन के लिए भी बड़ा उपयोगी है।
1: हाँ भैया, कहा जाना शाकाहारी थाली में दाल बहुत
0: हाँ
1: उपयोगी है भैया।
0: लेकिन कहा है कि मतलब कि पशुअन में जैसे कि कहा है ना चारा के रूप में मूंग उड़द के या
1: हाँ
0: जो है या वो कहीं भूसा दाना जो है खियाए से कम से कम 20 से 25% जो है प्रोटीन उनके बढ़ जाते और दूधों
1: बढ़िया
0: जो
1: होते
0: हाँ
1: भैया।
0: बढ़े लगा थे जो है कहा मतलब कि जो गाय भैंस दूध देते हैं उन्हों के अगर आप चारा खिलावत है दलहनी फसल के तो ओहू से जो है देखा दूध में बढ़ोतरी होते और कहा कि मतलब खल से भी जो खल खरीद के आप खियावत है उसे आधे कीमत में भी मिल
1: और
0: जाते।
1: साथ ही साथ भैया देखिए, पर्यावरण और माटी दोनों के लिए अच्छा होता है,
0: बिल्कुल भैया।
1: माटी भी उपजाऊ
0: और
1: रहती भैया और पर्यावरण भी सही रहते हैं।
0: साथ ही साथ देखा भैया अबे का है ना हम लोग जो नहाए दलहनी जो भी फसल यहाँ या जो भी अनाज हैं
1: हाँ
0: ओकरे लिए हम लोग दूसरे देश पे ज़्यादा निर्भर है।
1: बिल्कुल।
0: मतलब अपने यहाँ इतनी ज़रूरत यह है लेकिन वो हिसाब से पैदावार नहीं होता है या कहा किसान भैया अरविंद ओपे उतना भी सचेत नहीं होता है एकरे वजह से कहा है कि जौन जरूरत यह ओके पूर्ति करे खातिर जौन है हमका दूसरे देश पे
1: निर्भर रहे
0: निर्भर
1: पड़ता।
0: हो पड़त है। तो ऐसे में कहा होते भैया देखा जौन देश के पैसा है वो दूसरे देश में चला जाता है तो अगर हम लोग एका किसान भैया अरविंद बढ़ चढ़ के इमें जौन है लगी और दलहनी फसल के पैदावार करी तो कम से कम हम अपने जरूरत के जो नहाए पूर्ति तो कर सकी थी।
1: हम कब भैया आ रहे हैं, किसान भैया आ रहे हैं से कि अपने दे

0: देश में जो दाल की वैरायटी बात है, बल्कि वही पे ध्यान दें अच्छे से, ताकि अपने देश की निर्भरता जो दूसरे देश के प्रति कम हो भैया।
1: बिल्कुल भैया, देखा कहा है ना कि एक तरीके से जो है दलहनी फसल जो है उन्हन के उपयोग से जो कुपोषण वाली समस्या है, ओहू के भी सामना की जा सकत है कि बहुत सस्ता एक तरीके से, मतलब कि प्रोटीन के सस्ता माध्यम है दलहनी फसल, और साथ ही साथ भैया देखा अपने पर्यावरण के भी अनुकूल है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यही लिए कहा भैया कि किसान भैया की अपने खेती बाड़ी में दलहनी फसल के जो है उपयोगिता बढ़ावें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात यह भैया, उस समय खेत हमारा खाली रहा थे, जौन हम रबी और खरीफ के मुख्य फसल पे निर्भर रही थी, ओकरे बीच में खाली समय में अगर हम एक लगाए दी है तो कोनो तरह के हमका नुकसान नहीं हुआ, चार पैसा मिलने ही
0: मिला है। भैया जितनी जल्दी लगाई है उतनी जल्दी तैयार हुई फसल है।
1: बिल्कुल भैया, और सबसे बड़ी चीज है भैया ने देखा कि हमें कोनो बाहरी जानवर से भी खतरा नहीं हुआ, नील गाय वगैरह से भी की कोनो दिक्कत हो है, कोनो के बचाव के लिए बहुत कुछ करे पड़ी। तो कुल मिला के भैया देखा, अगर एक यह एक सार है कि दलहन लगाना मिट्टी सुधरे जेब भरे सेहत बने देश का भला हो। तो भैया एक अपने किसान भैया रेन जब नहा दलहनी फसल के तरफ भी ध्यान दें।
0: बिल्कुल
1: भैया देखा आज अपने पंचायती में का का है, अपने पंच भैया के का का सुनवाऊ भैया, हम कहे तनी बताए दे तो फिर
0: भैया देखा आज वार्ता बाटे आधुनिक हिंदी साहित्य में ग्राम्य जीवन डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ला के बातचीत बाटे। सुने जी मुला भैया, जब तक पंचायती में कुछ गीत गौने नहीं हो देखा भैया पंचायती कुछ नीक नहीं लागत।
1: बिल्कुल भैया देखा तो हर हम मन के बात समझ गए, हम बहुत इतनी देर से सोचत रहे कि कुछ गीत गौना ही हो जाए, बहुत देर से हम लोग बात बात कही करते रहे। तो देखा अपने बीचे में यहाँ फूलचंद और साथी यहाँ आए, अब उनका विकास गीत जो है हम पचे सुनी और हमारे पंच भैया भी सुनाई।
0: सुनवा दे भैया।
1: ठीक भैया।

0: हाँ
1: वाह भैया देखा
0: फूल
1: कितना
0: चांद और साथी
1: बढ़िया
0: कभी लोग
1: रहा,
0: की तरह भैया,
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निक लाग भैया, इतना बढ़िया लोकगीत सुन के आनंद आ गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखा भैया, हम लोग खेती किसानी से जुड़ा आदमी है। देखा जब बहुत पहले अपने दादा पुरखा लोग से बात बत कही पूछा जाए सुना जाए कैसे का समय रहा का जमाना रहा, तो वो समय देखा भैया का रहा कि जब देश आज़ाद भरा तो उतना खेती किसानी के जो उन्हें प्रगति नहीं रहा,
0: बिल्कुल भैया,
1: लेकिन आज देखा इतना तरह तरह के नई
0: तकनीक
1: नई
0: आएगी भैया।
1: तकनीक आई है बेटे। तो कहा कि मतलब कि हम लोग दिन प्रतिदिन अपने कृषि में भी जो नहाए नए नए तकनीक से खेती किसानी करते ही। और पहले भैया देखा का रहा कि जब हम लोग देश आज़ाद हुआ है तो अपने देखा सरदार पटेल भैया रहन जो ना अपने बहुत हम लोग के सम्मानी रहन हैं
0: अच्छा।
1: सरदार पटेल, जो नहाए कि पूरे देश के जोड़े के लिए जो नहाए प्रयास करें कि
0: हाँ
1: काहे कि
0: भैया।
1: जो नहाए छोटा छोटा राज्य में जो ना हमारा देश बटा रहा तो उसमें सबके जोड़े के लिए पूरा अथक प्रयास करें हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तब जाए के जो नहाए सब राज्य मिल के आज एक हम लोग भारत के स्वरूप देखी थी।
0: हाँ। जेका भैया कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत है।
1: हाँ भैया देखा उसमें कहा है ना कि वो समय तो वो प्रयास करें कि जो ना पूरा भारत जुड़ जाए
0: बिल्कुल
1: और जुड़ा भी, लेकिन आज देखा अपन सरकार भी जो ना एक योजना पे काम करा थे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ओकरे अंतर्गत का है ना कि भैया सब देश के जो ना जितना राज्य हैं
0: हाँ
1: सब एक दूसरे से जुड़ाएं।
0: हाँ एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ें ताकि अगले राज्य के का संस्कृति बांटे, का भाषा बांटे, सब
1: बिल्कुल
0: दूसरा
1: भैया,
0: दूसरा राज्य भी समझ सके
1: देखो भैया
0: भैया।
1: सब हर प्रदेश के हर क्षेत्र के अपन अलग अलग अलग भाषा है, अलग अलग
0: खान
1: पहनावा
0: पीन,
1: है,
0: हाँ खान पीन
1: खान
0: बांटे,
1: पीन है, त्यौहार है।
0: बिल्कुल
1: तो अगर ये योजना के ये प्रयास है सरकार के कि जो ना है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कि पूरा देश भाईचारा में बंधे
0: बंधे। हाँ
1: और एक दूसरे के संस्कृति और भाषा के समझें, तो एक लिए तमाम तरह के जो ना है अपने कार्य होता है
0: साथ ही साथ
1: कि
0: भैया, ऐसे अपन दुनिया में जो है अपन देश की पहचान बढ़ी भैया, जो पर्यटन आवा थे भैया उनका बढ़ावा मिली भैया। हाँ अपन देश के संस्कृति के जाने पहचाने, खान पीन, हाँ पहनावा समझिए अच्छे से
1: बिल्कुल
0: लोग।
1: भैया देखा ओकरे लिए कहा है ना अपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जो प्रयास किया जाता है वो हमें कहा किया जाता है कि भैया जैसे दो राज्य के आपस में जोड़ा जाता है
0: बिल्कुल।
1: कि वो कुछ कार्य के लिए जो नहाए एक दूसरे के साथ ही मिल के काम करें, कि जैसे उत्तर प्रदेश के जो स्कूल के बच्चा नहाए
0: अच्छा।
1: वो अरुणाचल प्रदेश के भाषा सीखें
0: अच्छा।
1: और अरुणाचल प्रदेश के जो स्कूल के बच्चा नहाए हुआ कि वो उत्तर प्रदेश की भाषा सीखें,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अरुणाचल प्रदेश वाले भैया जो नहाए यूपी के जो नहाए खाना पीना के बारे में सीखें, तो यूपी वाले भैया जो नहाए बिहू सीखें, असम के जो नहाए खान पीन सीखें, मतलब कि
0: संस्कृति
1: हुआ
0: उनके का
1: संस्कृति
0: वा,
1: सिखाएं,
0: हाँ पहनावा ओढ़ावा
1: और
0: सब देखें।
1: साथ ही साथ एक राज्य से दूसरे राज्य के जो नहाए घूमे जाएं तो
0: बिल्कुल
1: हुआ के बारे में जो नहाए जानकारी लें, ओकरे खातिर जो नहाए सरकार प्रयास

0: कि कुछ सस्ता पैकेज जो है
1: अच्छा।
0: योजना लगा कि मतलब कि ताकि जो है अपने राज्य में रह के दूसरे राज्य में भी जाएं घूमें, हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भैया पर्यटन के बढ़ावा मिली भैया, चार पैसा की आमदनी भी हुई सरकार के।
0: बिल्कुल भैया, बहुत व्यापार भी बढ़ा थे, राष्ट्रीय एकता बनी रहा थे, और जो आप कहे ना कि
1: भाषाई सौहार्द बढ़ा भैया।
0: हाँ बिल्कुल भैया, और एक दूसरे के जो दूरी है वो कम होते,
1: बिल्कुल सही कहा
0: तो
1: भैया।
0: एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो ना देखा अपन जो सरकार काम करते बाटे, तो पूरे देश में हम लोग के भी मिलके जो ना ए पे काम करे के चाहिए। और
1: हाँ
0: देखा पूरा देश तो भैया अपन एक है ये है, और
1: हाँ
0: हमका एक दूसरे के सम्मान करे के चाहिए।
1: हाँ जैसे भैया पहले कह रहा कौन देश में का खान पीन बाटे कोई जाने जाने नहीं पावत रहा, अब भैया देखा इस सब के माध्यम से जो है हर कौन देश कौन शहर में का खान पीन बाटे, अब आदमी जान का बाटे हैं,
0: बिल्कुल
1: हर जगह
0: भैया,
1: के कोई ना कोई चीज़ मशहूर होती भैया है।
0: बिल्कुल भैया, देखा वैसे बहुत प्रयास करें अपने देश के बांटे के। पहले तो जो नहाए रहें तमाम आक्रांता लोग आएन, वो हम लोग के बांटे के प्रयास करें, फिर अंग्रेज लोग आएन
1: बिल्कुल।
0: वो जो है भाषा के आधार पे जाति के आधार पे बांटे की कोशिश करें। लेकिन जो भैया एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो योजना है एक यही है कि सब एक दूसरे से दिल से
1: हाँ
0: जुड़ें।
1: बिल्कुल
0: जब कोनो तमिल मतलब कि देखे ये उद्देश्य है कि एक जो तमिल के बच्चा है वो पंजाबी गाना
1: हाँ।
0: पे जो है,
1: एक भैया मुख्य उद्देश्य ये बात
0: हाँ
1: है कि एक दूसरे के भाषा संस्कृति के सम्मान दिए जाए भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो काय मतलब भैया देखा ये बहुत बढ़िया
1: योजना बाटे
0: प्रयास
1: भैया।
0: है। हाँ एहू के बारे में जो है हम लोग के जाने समझे चाहिए
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भैया। देखा एक बात जो है हम लोग समझी थी कि अपने साहित्य में जो है
1: हाँ
0: हिंदी साहित्य में अपने ग्रामीण जीवन के का चित्रण कीन गा है,
1: अच्छा
0: ओहू
1: अच्छा
0: पे जो है देखा जो एक बात वार्ता है जेके विषय है आधुनिक हिंदी साहित्य में ग्राम में जीवन। एपे देखा डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ला भैया एक बात कही बताए हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: तो देखा पे कितना अच्छे तरीके से ओका समझाए हैं कि हमारे साहित्य में ग्रामीण जीवन कैसे रहा है, ओका जो है का चित्रण वो समझे यहाँ, तो वो
1: अच्छा
0: कैसे अपने पंच भैयान के बीच में साझा करना चाहते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: हम कहे का सुनवाई दिन जाए का
1: हाँ सुनवा दे भैया
0: भैया आवाज़ सुनवाई दिन जाए, तो फिर ओके बाद बात बात कही हो।
1: सुनवा दे भैया।
2: साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में घट रहे नित्य घटनाक्रम की झांकी, तत्समाज के हूबहू चित्रण व हो रहे परिवर्तन की आहट साहित्य में किसी न किसी रूप में सुनाई देने लगती है। प्रकारांतर से कह सकते हैं कि समाज ही साहित्य की आत्मा है। समाज में रह रहे लोगों की धड़कन साहित्य में गूंजने लगती है। मानव ने जब जन्म लिया तभी से मानवीय संवेदना ने साहित्य में जगह बनाई है, चाहे वह लिखित रही हो या मूक रूप में दर्शाई गई हो। पहले मानवीय संवेदनाओं को प्राचीन काल में भोजपत्रों पर उकेरा जाता था, बाद में लिखने और पढ़ने की क्षमता विकसित होने पर आज के युग में प्रिंट दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों से हम देख सुन और समझ रहे हैं। इन्हीं संवेदनाओं को वाल्मीकि, कबीर, सूर, जायसी, कालिदास या अन्य भक्तों ने साहित्य का रूप दिया, जो आधुनिक युग में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक या अन्य गद्य के रूप में हम पढ़ लिख और देख रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का हिंदी साहित्य अत्यंत समृद्ध रहा है। हिंदी काव्य में चंद्रबरदाई से लेकर आज केदारनाथ सिंह, अरुण कमल तक की कविता में हम हमारी जीवन रेखा के सूत्र दिखाई देते हैं। वहीं आधुनिक युग के हिंदी गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मुंशी प्रेमचंद होते हुए नागार्जुन की रचनाओं में हमारे समाज के रेखाचित्र सर्वत्र दिखाई देते हैं। यह सही है कि आज की नगरीय व्यवस्था हमारे गांव से ही होकर गुजरी है। जहां आज गांव टूट रहे हैं तथा नए नए शहर जन्म ले रहे हैं जो साहित्य की परिस से बाहर नहीं हैं। किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है, गांव हमारे देश की आत्मा है। भारतवर्ष गांव में बसता है। इन्हीं गांव की तस्वीर को हमारे कवियों, लेखकों एवं साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से संवारा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का सम्यक आकलन करने पर यह तथ्य सर्वविदित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि ग्राम्य जीवन साहित्य की रीढ़ है। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रथम काव्य के रूप में, द्वितीय गद्य के रूप में। आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य की धारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में प्रचुर मात्रा में साहित्य

की रचना की थी। वह समय भारत की परतंत्रता का युग था, जब आम जीवन में खुशहाली की एक किरण भी नहीं थी। लोग परतंत्रता का त्रास झेल रहे थे और दुर्दशा की जंजीरों में जकड़े थे। ऐसे समय में भारतेन जी ने भारत दुर्दशा नामक ग्रंथ की रचना कर लोगों को जगाने का काम किया। कवि वचन सुधा पत्रिका के माध्यम से जन जन में जागरण का संदेश भर रहे थे। उन्हीं के साथ बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि भी अपनी लेखनी से जागृति का स्वर भर रहे थे। दासता की बेड़ी में जकड़े भारत की आत्मा कराह रही थी। ऐसे समय में ग्राम्य जीवन की बेबसी और अकुलाहट का चित्रण उस समय के साहित्य में भरी पड़ी है। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत, माखनलाल चतुर्वेदी ने देशभक्त पर रचना करके भारत माता के सपूतों को जगाकर यह कहा था कि अपनी दुर्दशा को खत्म करने के लिए आत्म बलिदानी बनो और देशभक्त के लिए मर मिट जाने की शिक्षा दे रहे थे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस जामे वीर अनेक। काव्य के क्षेत्र में इसी प्रकार राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, सर्वेश्वर दया सक्सेना, रघुवीर सहाय, धूमिल, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगूड़ी, राजेश जोशी और अरुण कमल जैसे सशक्त रचनाकारों ने अपनी लेखनी से साहित्य के ग्राम्य परिवेश को बखूबी उकेरा है। इन रचनाओं में समाज के समग्र सुख दुख, आशा निराशा एवं उत्थान पतन को यथार्थ रूप से चित्रित किया है। काव्य के क्षेत्र में खंड काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य, गीत काव्य एवं चित्र काव्य की प्रचुर मात्रा में रचना की गई है। इन रचनाओं में आप देखेंगे कि जहां नगरों की विद्रूपता झलक रही है, वहीं टूट रहे गांवों की भग्नता भी शोभायमान हो रही है। एक तरफ गांव शहरों में समा रहे हैं, कच्चे घर गिर रहे हैं, पक्के घर बन रहे हैं, पर आपसी संबंध खट्टे भी हो रहे हैं। हमारी ग्रामीण सभ्यता अपने आप में बेजोड़ रही है, पर समय के साथ उनकी मान्यताएं, विश्वास और मूल्यों में भारी कमी आ रही है। गांव जहां सहयोग, सामंजस्य, सामूहिक परिवार और भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में दिखते थे, वहीं वे मूल्य छिजने लगे हैं। शहर भले ही बड़े बड़े कंक्रीट के पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, पर अंदर से खोखलापन ही नजर आता है। इस प्रकार संपूर्ण आधुनिक साहित्य के काव्य क्षेत्र में ये रचनाएं एक आईना दिखाती हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ग्राम्य जीवन पर कितनी सुंदर पंक्तियां कही हैं। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु मिट्टी से तुमने किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। खेती को अपनी थाती मानने वाले किसान आज कम हो रहे हैं और गांव की धरती से पलायन कर रहे हैं। इन्हें गांव में ही रहने और वहीं मजबूत करने की दिशा में सरकार का प्रयास जारी है। अब हम एक दृष्टि डालते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य की ओर। गद्य की अपनी विधा है, कथ्य को ज्यों का त्यों कहने की कला है। गद्य में न कोई छंद है, न विन्यास और न ही लयात्मकता, इसलिए गद्य का क्षेत्र व्यापक और विशाल है। इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन किया गया है। जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य का आधुनिक रूप हमें दिया है, उसी प्रकार उन्हीं की कलम से कुछ रचनाएं गद्य के रूप में भी हमें मिली हैं। अंधेर नगरी नाम के नाटक तो यों हास्य व्यंग की अद्भुत झांकी प्रस्तुत करते हैं, पर इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने जनता को एक संदेश दिया है कि मूर्ख और अभिमानी राजा के निर्णय पर निर्भर रहने का समय अब बीत रहा है। भारत की दुर्दशा उसके जगने से ही दूर होगी। अपनी पत्रिका व रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने आजादी का बिगुल फूंका। ऐसे समय में गद्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का आगमन हुआ। वे भी काशी की धरती से जन्म लिए, जहाँ भारत अपने खून के आंसू रो रहा था। सेठ, साहूकार, महाजन, सूदखोर, मुंशी, दलाल सब जनता को चूस रहे थे। जनता कुछ तो प्राचीन ग्रंथियों से बंधी थी, तो कुछ आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जकड़नों में बेचैन थी। उसे ऊपर से अंग्रेजी सत्ता डंडे मार रही थी, तो सेठ साहूकार भी ज्योंक की तरह खून पी रहे थे। ऐसे समय में मुंशी प्रेमचंद ने जनता की आंखें खोली। वे सरकारी सेवा में थे और जगह जगह की नौकरी से बड़ी सीख ले रहे थे। मुंशी प्रेमचंद इस दुर्दशा के बीच सरकारी नौकरी छोड़ चुके थे। कई बंदिशें, तबादला, दंड और शोषण से आजी जाकर वे स्वतंत्र लेखन करने लगे।

एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने जो देखा, जिया, सहा और महसूस किया वही लिखा। वे पूर्ण रूप से गद्य साहित्य के प्रणेता रहे। उपन्यास, कहानी, एकांकी एवं छिटपुट अन्य रचनाओं से वे आधुनिक हिंदी साहित्य में एक मनीषी, दूरदर्शी, मेहनतकश और अदम जिजीविषा के रचनाकार बनकर उभरे। उनके संपूर्ण साहित्य में ग्राम्य जीवन ऐसे बिखरा है जैसे फूल में खुशबू। खुशबू की कोई आकृति नहीं, वैसे ही बिना ग्राम्य जीवन के प्रेमचंद का कोई साहित्य नहीं। गोदान से लेकर कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, निर्मला, सेवा सदन या अन्य रचनाएं ग्राम्य जीवन का चित्रण करती हैं। जहां कहीं भी शहरी जीवन आया है, वह मात्र ग्राम्य परिवेश को उभारने के लिए आया है। मुंशी प्रेमचंद ग्राम्य जीवन के चितेरे कहे जा सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्य क्षेत्र में प्रेमचंद के अलावा हिमांशु श्रीवास्तव, रामदर्श मिश्र, शिवप्रसाद सिंह, राही मासूम रजा, नीलकांत, केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र अवस्थी, फणीश्वरनाथ रेणु, नरेंद्र कोहली, नागार्जुन, विवेकी राय, धूमकेतु, भगवती चरण वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त, श्रीलाल शुक्ल और उदय शंकर भट्ट आदि रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ग्राम्य जीवन का बखूबी चित्रण किया है। वस्तुतः ग्राम्य जीवन के बड़े व्यापक रूप में बदलाव ने लेखकों को कलम चलाने के लिए मजबूर किया। 200 वर्षों की अंग्रेजी दास्तां ने जनता को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से छिन्न भिन्न कर दिया था। अंग्रेजों ने यहाँ की धरती को चारागाह बना लिया और यहाँ के लोगों को अपनी इच्छा से जीने के लिए मजबूर किया, जिसके चलते ग्राम जीवन बद से बदतर होता गया। शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति, राजनीतिक चेतना को कुंठित करना, समाज में विभेद पैदा करना, धार्मिक चेतना पर प्रहार करना तथा आर्थिक रूप से परतंत्र कर देना ही इनका उद्देश्य रहा। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया तो उसका एकमात्र कारण था धार्मिक चेतना पर प्रहार। हर तरफ से क्रूरता एवं बेरहमी की शिकार हुई जनता ने रामधारी सिंह दिनकर से कहलवाया, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अंग्रेज समझ गए कि वह दिन दूर नहीं, अब हमको यहाँ से जाना होगा। इस परिवेश को हमारे रचनाकारों ने बखूबी दर्शाया है। इस कार्य में मुंशी प्रेमचंद का नाम वरेण्य है। आधुनिक साहित्य में ग्राम जीवन की परिस्थितियाँ सर्वथा प्रतिकूल थीं। हम स्वावलंबी थे, हमारे संसाधन अपने थे, हमारे कुटीर उद्योगों को नष्ट किया जाने लगा। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हमें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया। हमारे साहित्य में विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाकर सभी भूमिहीनों को भूमि देने का मंत्र भी चित्रित किया गया है। औद्योगिकरण का सभ्यता पर प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारी दशा दुर्बल थी, पैसे कम थे, जनता अपनी उपज बेचकर जरूरतें पूरा करती थी। सामाजिक चेतना के क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। समाज में जात पात का भेदभाव था, वर्गभेद भी था, जिसका सम्यक चित्रण किया गया है। बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा, जादू टोना, ओझा वैद्य, नीम हकीम, भूत प्रेत आदि भी अपनी जड़ जमाए थे, जिनसे जनता जूझ रही थी। इन सभी का व्यापक चित्रण रचनाओं में दिखाई देता है। इन सब के बावजूद ग्रामीणों में प्रेम, सामंजस्य, सौहार्द, सहयोग और आदर की भावना थी। छोटे बड़े का लिहाज भी था। ग्राम्य जीवन की सांस्कृतिक छवि भी आधुनिक हिंदी साहित्य में सर्वत्र दिखाई देती है। तत्समय में मनोरंजन के रूप में मेले, तीज त्यौहार, नाच नौटंकी, जादू, अखाड़े, कुश्ती इत्यादि बहुत से रूप में थे, जो हर जगह यत्र तत्र साहित्य में दिखाई देते हैं। नारी को वह सम्मान नहीं था जितना आज है। पहले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली कहावत थी। प्राचीन काल में इसे बहुत महत्व दिया जाता था, पर बीच में नारी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। बाल विवाह, सती प्रथा व घूंघट से बड़ी निंदनीय अवस्था आ गई थी। राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जैसे मनीषियों ने आंदोलन चलाकर इसे दूर किया। अब नारी

0: अपनी गरिमा के साथ प्रतिष्ठित है। एकल परिवार की कथा संयुक्त रूप से बड़ी विचित्र है। संयुक्त परिवार में पहले सहयोग था, पर अब एकल परिवार में सारे मूल्य टूट रहे हैं। इसका भी व्यापक चित्रण साहित्य में दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में ग्राम्य जीवन का कविता व कथा के दोनों क्षेत्रों में बड़े ही विशद रूप में चित्रण किया गया है। हमारा संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य ग्राम्य जीवन की सुषमा से अलंकृत है, इसमें दो राय नहीं है। जिस प्रकार एक बाग में विविध फूलों की सुषमा अलग अलग होती है, वैसे ही हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य में हमारा गांव अपने संपूर्ण सौष्ठव गरिमा और सौंदर्य के साथ विराजमान है, जो साहित्य की थाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में ग्राम्य जीवन की मनोरम झांकी सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है।
1: हाँ भैया, देखो कितनी अच्छी भैया वार्ता रही भैया। आधुनिक हिंदी साहित्य में ग्राम्य जीवन, डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ल जी कितना फरिया फरिया बताएं भैया।
2: बिल्कुल भैया, देखा यह तो जो ना विशेषता है अपने गांव के, अपने देहात के, अपने कि साहित्य में भी देखा इतना खूबसूरत तरीके से जो ना चित्रण देखा के मिला थे।
1: बिल्कुल,
2: और कितना बढ़िया तरीके से डॉक्टर साहब बताएं हैं। तो जाहिर से बात यह भैया कि अगर अपने साहित्य के पढ़ा समझा तो उसमें जो ना अपन जो ग्रामीण जीवन रहा, कैसे रहा, का संघर्ष रहा, अब का परिवर्तन है, ओका देखे के समझे कि जो ना
1: बहुत कुछ मतलब सीखे के मिल जी भैया,
2: अवसर मिला था। बिल्कुल भैया, देखा भैया हम लोग कार्यक्रम के उत्था में बात करते रहे कि खेती बाड़ी के और अपने तमाम जो ना है, एक जो भैया देखा सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे किसान भैया पशु पालन भी करे हैं।
1: हाँ भैया,
2: और यह गर्मी में भैया देखा उनके ऊपर विशेष ध्यान दे के पड़ा थे कि अगर पशुपालन में आए भैया लोग तो देखा जो गर्मी में आए इनमें लू लगे से बचावे के है अपने पशुअन के। ए लिए कि काहे जो मौसम होते इसमें तापमान इतना लगभग 40-42 डिग्री तक जो नहाए चला जाते।
1: बिल्कुल भैया,
2: और यह बात यह ना भैया कि देखा हमसे आपसे ज्यादा जो नहाए उनका गर्मी लगा थे पशुअन के।
1: बिल्कुल भैया सही
2: कहा। कारण का है ना भैया कि देखा हमका आपके पसीना होत रहा थे तो हम जो नहाए हम लोग
1: भैया
2: हाँ ओका सही ली थी, लेकिन पशुअन के कहा है कि पसीना नहीं होता है तो कहा गया कि हमसे 3 गुना जो नहाए उनका गर्मी लगा थे।
1: बिल्कुल,
2: तो भैया ऐसे में उनके विशेष ध्यान रखें कि
1: उनका समय समय भैया पानी दे रहे हैं, ताजा पानी है,
2: बिल्कुल
1: समय पर उनका चारा पानी दे, उनका छाया में बांधे भैया, ऐसी जगह बांधे जहाँ थोड़ा हवा आवे उनका।
2: बिल्कुल भैया, देखा इसमें अगर मान लिया गलती से उनका लू लग गया है तो उसमें जो ना है ओका कैसे पहचाना है
1: अच्छा
2: कि हमारे पशु की ये लू लगा है या गर्मी के कोनो प्रभाव भा है, तो उसमें अगर देखा पशु हाँफत है, जीभ बाहर निकाले बटे तो वो खाना खा बंद कर दे है
1: अच्छा,
2: या दुधारू पशु है तो दूध में कमी आ गया है तो या अचानक से जमीन पे गिर जाता है, तो ये समझा कि सब लक्षण आटे
1: अच्छा,
2: कि ओका आपके पशु के लू लगा है और ओका तुरंत जो नहा ओके लिए उपचार का करें।
1: हाँ।
2: कि पहले सबसे बढ़िया ओका छाव में ले जाएं
1: अच्छा, अच्छा।
2: और ओके सर पे ठंडा पानी डालें, पंखा चलावाएं और तुरंत जो नहा डॉक्टर के बुलाए के ओका दिखावाएं
1: भैया ताकि पशु जो सही रह सके भैया।
2: बिल्कुल भैया, एक आयक मतलब कि भैया इस समय में जौन भी अपन पशु हैं उन पे विशेष ध्यान रखें
1: भैया। देखा पशु इतने महंग बाटन भैया,
2: जब
1: को पशु कुछ पूछनी चाहिए भैया बड़ा दिक्कत हो जाती
2: है। जौन बाड़ा है पशुवन के तो वो के जौन है अपन बढ़िया से टाट वोट लगा के रखें।
1: बिल्कुल
2: भैया, हम कहे देखा फूलचंद साथी के कि निर्गुण लोकगीत जो ना है हम कहे अपने पंच भैया सुनवाई दी जाए तो फिर बात बत कही की जाए।
1: सुनवा दे भैया।

0: हाँ
1: भैया
0: भैया
1: देखा फूल चनो साथी भैया कितना बढ़िया निर्गुण लोग भी सुनाएं।
0: हाँ भैया, सुन के मन प्रसन्न होगा भैया।
1: बिल्कुल भैया, देखा भैया हम लोग अपने पंच भैया हरण के तरह तरह के कार्यक्रम जो नहाए सुनावत रही थी, लेकिन और उनका नई नई जानकारी देत रही थी, लोकगीत गीत संगीत के माध्यम से उनका जो नहाए आनंदित भी करावत रही थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन हमरो एक अरदास रहा था भैया पंच भैया हरण से कि जो हमारा कार्यक्रम

0: उनका कैसे लागत है,
1: बिल्कुल
0: ओमें अपन विचार दें। और ओके लिए हम लोग उनका आमंत्रित करी थी कि भैया आप जो है संदेश के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप पे सूचना के माध्यम से, चाहे आकाशवाणी के फेसबुक पे जाके
1: अच्छा
0: ओपे अपन प्रतिक्रिया दें। तो भैया हम कहे कि देखा एकदम जो है व्हाट्सएप नंबर आप बता दिया, ताकि किसान भैया अगर कुछ अपन सुझाव विचार दे चाहते हों तो उनका भेज सकें।
1: तो भैया सुना हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है बटे आकाशवाणी के 800-4926-250।
0: हाँ भैया देखा बहुत सही बताया, तब कही एकदम हम फिर से दोहरा देते ही भैया, किसान भैया लिखा 800-4926-250। तो भैया देखा पंच भैया रन से विदा भी ले के समय होता है, तो भैया ये गर्मी में अपन और अपने पशुओं के विशेष ध्यान रखें और खेती बाड़ी काम समय समय से करें। तो पंचों
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए पंडित विश्वमोहन भट्ट की बनाई ये धुन।

अभी आप पंडित विश्व मोहन भट्ट की बनाई ये धुन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा, मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कारपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। सर संघचालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध,

0: पुर गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स STF ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी STF ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। STF के अधिकारियों ने बताया कि NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
2: जैसा कि

0: उसी क्रम में जारी रहेगा।
1: हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी, फ्लड पीएससी, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थवाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।

0: कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे मेहमान। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश कुमार श्रीवास्तव से आशुतोष सुंदरम की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सुंदरम और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान। और स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलोर में होमी जहांगीर भाभा पीठ में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे केंद्र पर और हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक वैज्ञानिक, उसका तरीका एक थोड़ा सा अलग होता है सोसाइटी में जीने का, चीजों को समझने का और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। क्या वैज्ञानिक समाज से कटा हुआ होता है?
2: आपने एक बड़ी मजेदार बात कही, क्योंकि जिस विषय पर प्रयाग विश्वविद्यालय में मैंने अपना भाषण दिया था
1: जी,
2: वो इसी विषय को लेकर के था।
1: अच्छा।
2: उसमें आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग पब्लिक रिस्क विषय था
1: जी।
2: और अंत में ने ये बतलाया उसमें, देखिए हमारे यहाँ सभी लोग वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हैं। वैज्ञानिक लोग जो बात कहते हैं उस पर लोग ध्यान देते हैं, उसको सही मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक धारणा सी बन गई है कि वैज्ञानिक अपने आइवरी टावर में रहते हैं और उनका बाकी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। ये बात अगर है तो बहुत गलत है। वैज्ञानिक भी आपके ही समस्याओं से जूझता है और वही समस्याएं उसकी हैं, वही कष्ट उसके हैं, वही वातावरण उसका है, तो इससे अप्रभावित रहे ऐसा तो हो नहीं सकता।
1: उसकी प्रयोगशाला इसी समाज में है, तो

0: से अलग रह सकता
1: जी हाँ, लेकिन यह भी सत्य है कि वैज्ञानिक तरीके जो हैं वो सत्यापित करने पर बहुत जोर देते हैं
0: जी।
1: कोई नियम तभी सही माना जाएगा जो बार बार सत्यापित की जा सके
0: जी।
1: और ऐसा है कि अगर एक भी उदाहरण ऐसा आए जो आपकी थ्योरी के खिलाफ हो तो पूरी की पूरी थ्योरी रिजेक्ट कर दी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि विज्ञान में एक सेल्फ करेक्टिंग स्थिति होती है, विज्ञान अपने आप को लगातार करेक्ट करता रहता है। अगर आज उन्होंने वैज्ञानिकों ने अगर कोई गलत थ्योरी दे दी, कितनी भी प्रचलित हो, कितने भी बड़े साइंटिस्ट ने वो दिया हो, लेकिन अगर गलत साबित हो गई एक बार तो वो बिना लाग लपेट के उसको
0: गलत मान लेते हैं
1: और आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान में जो सेल्फ करेक्टिंग कैपेसिटी है
0: जी,
1: ये विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है
0: जी। अच्छा श्रीवास्तव साहब, इलाहाबाद में आपकी शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई, उसके बाद आप विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए, तो ये जो एक आपके अंदर प्रवृत्ति थी कि मुझे विज्ञान के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, तो क्या ये बचपन से ऐसा आपने कुछ ठान रखा था कि नहीं हमें इसी फील्ड में जाना है, या कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि आप आगे बढ़ते चले गए?
1: ऐसा है कि हमारे परिवार में
0: जी
1: पढ़ाई पर जोर तो दिया जाता था
0: जी।
1: उसका एक कारण तो ये भी था कि हम लोगों की खेती बाड़ी काफी कम थी
0: जी,
1: तो ये तय था कि हम लोगों को आगे चल करके नौकरी करना पड़ेगा जीवन यापन के लिए। तो इसके कारण पिताजी हम लोगों के वो हमें साइंस और मैथ्स
0: जी
1: और अंग्रेजी तीनों पर अच्छा करने के लिए हमेशा जोर देते थे और वो खुद भी पढ़ाया करते थे। इस सबसे एक अच्छा तो ये हुआ कि विज्ञान में, गणित में हमें अध्यापकों से तारीफ मिलती थी
0: जी।
1: और एक बार बच्चों को किसी विषय के लिए तारीफ मिलना शुरू हो तो वो उस विषय पे और जोर देते हैं। शायद गणित में, विज्ञान में अभिरुचि होने का एक कारण ये भी रहा हो। और एक और चीज लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे आंखों के सामने होती रहती हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं।
0: होता है।
1: तो गांव के लोग जो हैं वो प्रकृति के निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनकी सारी जीवनचर्या प्रकृति में नित नवीन होते परिवर्तन से निर्धारित होती है। और ये अपने आप में ये देखना, ऑब्जर्व करना और तय करना कि अब ये करना है, अब आम में बौर आनेंगे, अब आम फलेंगे, अब महुआ टपकेगा, ये सब ऑब्जर्वेशन है। जो गांव वाला बिना जाने कि वो एक बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, करता है, और ये सुविधा शहर के बच्चों को नहीं मिलती है
0: जी।
1: क्योंकि शहर के बच्चों को तो तारे भी नहीं दिखते हैं। अगर आप किसी बच्चे को आसमान में फैले हुए सारे तारे रात में दिखला दें और कैसे ऐसी जगह पर जाएं जहां पर प्रकाश का प्रदूषण न हो तो आपको तारे दिखेंगे
0: जी।
1: तो ये अपने आप में उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज होगी। तो गांव के बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अभिरुचि को एक पालने पोषने और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है।
0: श्रीवास्तव साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गांव के बच्चे की अपब्रिंगिंग उसकी पढ़ाई में कितनी बाधक या साधक है और शहर के बच्चे की एक जो अंतर है वो आपने अपनी बातचीत में बताया। क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि जो शहर के बच्चे जो एक कृत्रिम आवरण में रह रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्रकृति से दूर रह रहे हैं, प्रकृति के साथ उनका संसर्ग नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो इसका कितना असर पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के बनने में, उसके ढलने में? एक जो शहरी वातावरण है, एक जो ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ बच्चा है, कितना असर करता है ये उसके पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में?
1: देखिए, बच्चा कहाँ है
0: जी,
1: उसमें तो बच्चे का कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप सारे विश्व का इतिहास देखें, वैज्ञानिकों का इतिहास देखें, आपका आश्चर्य होगा कि ग्रामीण परिवेश से आए हुए बच्चे या छोटे शहरों से आए बच्चे, उन्होंने विज्ञान में काफी तरक्की की है
0: जी,
1: गणित में बड़ी अच्छी तरक्की की है। रामानुजम एक बहुत ही छोटे से कस्बे से आए थे, लेकिन कोई बच्चा शहर में रह रहा है तो ही इज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, ऐसा नहीं है। आप शहर में रहने वाले बच्चों के लिए भी आप परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं, और जैसे इलाहाबाद जैसे शहर में तो उनके लिए बहुत सारी परिस्थितियां हैं, प्लेनेटेरियम है, म्यूजियम

0: है, तो आपके पास जो चारों तरफ फैली हुई सामग्री है उसको उपयोग करने की बात है, उसके लिए आपको विशेष प्रयास नहीं करने पड़ेंगे।
1: जी।
0: खाली आपके पास दृष्टि होनी चाहिए, चाहे गांव का बच्चा, आप जैसे फाइनमैन बहुत अच्छे वैज्ञानिक माने जाते हैं, उनका जब न्यूयॉर्क शहर में हुआ,
1: जी
0: उनको एडवांटेज रहती है, लेकिन अगर उस एडवांटेज का उपयोग न करें तो वो एडवांटेज बेमानी हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। वो मेधा तो आपकी अपनी है, उसे एक जगह कंसंट्रेट करना, फोकस करना, ये बच्चे का ही काम है। और एक जब वातावरण होता है, जो उसका परिवेश होता है, वो उसे थोड़ा सा सपोर्ट देता है और आगे बढ़ाने में मददगार
0: जी हाँ,
1: होता है। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहे और जो आपने ऊंचाइयां तय की, आज आप सफलतम संस्थान में कार्य कर रहे हैं, विभिन्न संस्थानों से होते हुए। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वर्तमान में जहां पे आप हैं बेंगलोर में, देश के निर्माण में, देश की तरक्की में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। किस रूप में आप वहां पे चीजों को देखते हैं और क्रियान्वित करते हैं?
0: देखिए, ये इंस्टीट्यूट जो है
1: जी
0: इसका काम है पॉलिसी रिसर्च। हमारे यहाँ बहुत सारे डिवीजन हैं, मैं कुछ एक का नाम लेता हूँ,
1: जी
0: जैसे हिस्टोरिकल हेरिटेज। हमारे यहाँ विदेश नीति पर लोग रिसर्च करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें पीएचडी करते हैं। एनर्जी, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर काम करने के लिए हमारे 25-30 बच्चे हैं जो सारा डाटा इकट्ठा करके देखते हैं कि किस स्थान पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या करने से वो कम किया जा सकता है। रिवर लिंक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोल थर्मल पावर प्लांट से कितना पॉल्यूशन फैलता है इस पर काम कर रहे हैं। कोल प्लांट्स को सोलर प्लांट्स के साथ कैसे उनका सामंजस्य बैठाया जा सके उस पर काम होता रहता है। हमारे यहाँ इसरो और डीआरडीओ के भी कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं
1: जी
0: जो भारत की रक्षा के विषयों पर काम करते हैं। आस पड़ोस के देशों की जो उनकी रक्षा सिस्टम है उसको एनालाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारा काम ब्लू इकोनॉमी, एक शब्द आजकल इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ समुद्र की संपदा का उपयोग कैसे किया जाए उस पर काम होता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हमारे यहाँ होते रहते हैं। बेसिकली पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुख्यतः पॉलिसी रिसर्च पे काम होता है,
1: जी
0: एजुकेशन पे। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर साहिबा हैं, अनीता कुरूप, वो स्पेशली गिफ्टेड बच्चों के लिए। कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ी कम उम्र में ही बहुत अच्छी साइंस करने लगते हैं, बहुत अच्छे मैथ्स करते हैं, या बहुत अच्छी भाषाओं के जानकार हो जाते हैं बहुत कम उम्र में। सो दे आर स्पेशली गिफ्टेड बच्चे। और वो ऐसे बच्चे जब सामान्य स्कूलों में जाते हैं बहुत बोर होते हैं,
1: जी
0: बहुत ऊब जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाए।
1: जी
0: तो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था उन्हीं को मेंटर करने का।
1: अच्छा
0: ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं। एक साहब हैं हमारे यहाँ बहुत मजेदार काम कर रहे हैं
1: क्या
0: कि अलग अलग तरह की मछलियां अगर उनको एक जगह रख दिया जाए तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती हैं।
1: अच्छा
0: एक साहब हैं वो बंदरों की सामाजिक व्यवहार पे रिसर्च करते हैं। एक महिला हैं जो हाथियों के, जंगली हाथियों के ऊपर अध्ययन करती हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट,
1: अच्छा
0: ये
1: क्यों
0: किसे
1: होता है, क्या कारण है इन चीजों
0: क्या
1: को
0: कारण
1: लेकर?
0: है। और उन्होंने जैसे कई जगहों पर जब डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ
1: जी
0: तो बहुत सारे जैसे हाथी हैं अपने साल भर में एक जगह से दूसरी जगह बहुत माइग्रेट करते हैं, और उनके फिक्स्ड माइग्रेशन रूट हैं, उधर से ही आना जाना होता है उनका। तो अगर आपने वहां पर सड़क बना दी या कुछ कर दिया तो उन्हें बाधा होती है, वो मरते हैं, घायल होते हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह से एक कॉरिडोर बना दिया जाए वो चौड़ा सा, जिसका उपयोग करके जंगल के एक भाग से दूसरे
1: दूसरे
0: भाग में जा
1: भाग,
0: सके और आदमी से उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस तरह के काम काफी कुछ होता है।
1: मतलब हम कह सकते हैं जीवन का कोई भी पक्ष
0: कोई भी
1: अछूता
0: पक्ष
1: नहीं है। वाकई में अगर देखा जाए, समग्र विकास की बात करें, व्यक्ति के ही नहीं देश के समग्र विकास की बात करें, तो ये सारे अनिवार्य पक्ष हैं जिन पे वहां पे अध्ययन होता है और आप लोग उनसे जुड़े हुए हैं, आप और आपके सहयोगी लोग। हमारे लिए हर्ष की बात है कि आप इतने गौरवशाली एक संस्थान से जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी आपने कई उच्च संस्थाओं में काम किया है। वर्तमान में जो हमारी उच्च शिक्षा की पॉलिसी आई है, जो नई, कुछ उसमें ड्रेस्टिक चेंज किए गए हैं ताकि हमारा जो उच्च शिक्षा का क्षेत्र है वो और उन्नत हो, सिर्फ डिग्री के पीछे ना भागें।

0: रूप में देखते हैं आप इसे?
1: देखिए, ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे बच्चे खाली रट्टू तोते न बने, बल्कि उनके पास कुछ बेसिक स्किल्स हों। देखिए, आने वाले दिनों में हर बच्चे को, हर व्यक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर लिटरेसी इत्यादि सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक हो जाएंगे
0: जी।
1: ये सारी सामान्य चीजें तो होना ही चाहिए।
0: अक्सर ये देखा जाता है और ये माना जाता है, एक जो सामान्य धारणा है कि एक वैज्ञानिक विज्ञान में इतना खोया रहता है कि फिर उसे कुछ और नहीं दिखाई देता। घर में भी विज्ञान है और बाहर भी विज्ञान है, प्रयोगशाला में भी विज्ञान है। एक स्ट्रेस नहीं होता, एक दबाव नहीं होता इसका?
1: ये आपने बहुत मजेदार बात की, क्योंकि ये प्रश्न हमसे बार बार पूछा जाता है
0: जी।
1: सोचिए, एक उदाहरण दूंगा, आपको गाने का शौक है, शास्त्रीय संगीत का शौक है, आपका बस चलेगा तो आप उसी में डूबे रहेंगे सुबह से शाम तक, रात भर, क्योंकि

0: ये उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक हो जाएंगे
1: जी।
0: ये सारी सामान्य चीजें तो होना ही चाहिए।
1: अक्सर ये देखा जाता है और ये माना जाता है, एक जो सामान्य धारणा है कि एक वैज्ञानिक विज्ञान में इतना खोया रहता है कि फिर उसे कुछ और नहीं दिखाई देता। घर में भी विज्ञान है और बाहर भी विज्ञान है, प्रयोगशाला में भी विज्ञान है। एक स्ट्रेस नहीं होता, एक दबाव नहीं होता इसका?
0: ये आपने बहुत मजेदार बात की, क्योंकि ये प्रश्न हमसे बार बार पूछा जाता है
1: जी।
0: सोचिए, एक उदाहरण दूंगा, आपको गाने का शौक है, शास्त्रीय संगीत का शौक है, आपका बस चलेगा तो आप उसी में डूबे रहेंगे सुबह से शाम तक, रात भर, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में तो हर समय का एक अलग संगीत होता है, हर समय के लिए एक अलग गीत है, और जितना सीखेंगे उतना ही आपको और आनंद आएगा
1: जी।
0: विज्ञान में भी एक ऐसी है, विज्ञान एक 9 to 5 जॉब नहीं है। अगर आप 9 to 5 काम करना चाहते हैं तो मत आइए विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि आपको विज्ञान को जीना पड़ेगा
1: जी।
0: आपको उसके विषय में सोचना पड़ेगा लगातार, रात में आपको सपने आएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि हम रात में उठ के बैठ के काम करते थे क्योंकि सपने में हमको कोई सॉल्यूशन आता था
1: जी।
0: और ये मेरी बात नहीं, सबकी बात है
1: जी।
0: तो विज्ञान आपको जीना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक के सामने और काम नहीं होते हैं।
1: यही मैं जानना चाह रहा था कि जो वैज्ञानिक है, क्या उसे विज्ञान के अलावा कुछ और सोचने का अधिकार नहीं है? क्या वो कुछ और लिख पढ़ नहीं सकता?
0: देखिए साहब, ऐसा है, उदाहरण देंगे, आइंस्टाइन बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, लेकिन किसी जमाने में उन्होंने सोचा था म्यूजिशियन बनने का। भाभा को म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर तीनों का शौक था और उसको उन्होंने मरने नहीं दिया। विक्रम साराभाई को भारतीय नृत्य बहुत अच्छा लगता था और उसी ने उनकी जीवनचर्या निर्धारित की। तो अगर एक कोई आपके पास कोई हॉबी हो तो उससे विज्ञान में सहायता ही मिलेगी, उसमें बाधा नहीं पड़ेगी। विज्ञान के जितने अच्छे वाले कॉन्सेप्ट हैं ना, विज्ञान की जो अच्छी थ्योरीज हैं, वो अपने आप में इतनी सुंदर हैं कि आप उनके बारे में जब सोचना शुरू करें तो आपका पूरा मन जो है एक मिठास से भर जाता है। यही आपको एक सौंदर्य बोध कराती है, जब आपको सॉल्यूशन मिलते हैं तो इसी से आपको एक आनंद मिलता है।
1: तो आप भी ये मानते हैं कि एक स्तर पर जाके विज्ञान और संगीत का प्रभाव एक ही होता है?
0: जितनी अच्छी चीजें होती हैं सबका प्रभाव एक ही होता है, चाहे संगीत हो
1: जी,
0: चाहे पेंटिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, ये सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं, इनमें आपस में कोई टकराव नहीं है।
1: आप भी स्ट्रेस बस्टर के रूप में कविताएं वगैरह लिखते हैं, ऐसी जानकारी मिली है?
0: नहीं, मैं स्ट्रेस बस्टर के रूप में नहीं
1: जी,
0: स्ट्रेस से त्रस्त होकर के लिखता जब चारों तरफ कुछ देखता हूँ
1: जी,
0: तो
1: एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया,
0: एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है।
1: कुछ दिल में आ रहा हो तो हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करिए अपनी कोई रचना।
0: काफी समय पहले किसी सिलसिले में एक कविता लिखने का हमें मौका मिला था
1: जी,
0: सुनो ताड़का, और ये लिखी गई थी इस संदर्भ में। सामान्यतः लोग ताड़का को एक हेय दृष्टि देखते हैं, सूर्पनखा को एक हेय दृष्टि देखते हैं, मैंने उनको एक सामान्य महिला के रूप में देख करके उनके दर्द को लिखने की कोशिश,
1: उनकी क्या संवेदनाएं हो सकती हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं जी।
0: तो कविता याद आ गई है तो मैं आपको सुना देता हूँ।
1: जरूर जरूर सर।
0: सुनो ताड़का, क्या भाग्य पाया था तुमने, तुम्हारे पिता यक्षराज सुकेतु ने तो इतनी तपस्या की थी बेटा पाने के लिए, पर मिली तुम अतीव सुंदर, हजार हाथियों के बल वाली, पर थी तो एक बेटी ही ना, और उसने असुर राज सुन से तुम्हारा विवाह करके हाथ धो लिया, और सब संतोषी अवांछित बेटियों की तरह तुम उसी में मगन हो गई। दो सुंदर बेटे मिले, मारीच और सुबाहु, चंचल नटखट प्यारे। सुनो ताड़का, बच्चे नटखट ही अच्छे लगते हैं, मारीच और सुबाहु भी नटखट ही थे, बाल हनुमान की तरह, वे भी ध्यान लगाए मुनियों को छेड़ते थे, पर वे थे हनुमान, वे थे पवन देव के पुत्र, शंकर के बेटे, कविराज केसरी के राज दुलारे। उनकी सजा थी बस अपना बल भूल जाना, और वह भी मात्र याद दिलाए जाने तक। सुनो ताड़का, मारीच और सुबाहु असुर की संतान थे, सो उनकी सजा थी जा राक्षस हो जा।

0: और मरे हुए जानवर खाकर भूख मिटा। और सुंद ने अगस्त से बस यही तो जानना चाहा था कि बाल सुलभ क्रीड़ा की इतनी भयंकर सजा क्यों, एक असुर का इतना दुस्साहस भला कैसे बर्दाश्त करते अगस्त, इस समाज में उनका क्या सम्मान रह जाता। सो सुंद कर को भस्म करके उन्होंने अपना सम्मान बचा लिया। और तब जागा था तुम्हारा क्रोध और इतनी सारी पीड़ा से तुम भूल गई थी कि तुम एक औरत ही तो थी। शायद तुम इनके आगे गिड़गिड़ाती, उनसे अपने पद के प्राणों की भीख मांगती, उनसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिरौरी करती तो शायद कुछ हो भी सकता था। पर तुम एक असुर की ब्याहता ने महान दृश्य बदला। अरे उन्हें तो विंध्याचल की ऊंचाई नहीं अच्छी लगती थी और न सागर की गहराई, वे कैसे बर्दाश्त करते एक अदना सी औरत का यह साहस। जा कुरूप हो जा राक्षसी हो जा, यही था ऋषिराज अगस्त का न्याय, यही था तुम्हारा भाग्य। सुनो ताड़का, सीता की अग्नि परीक्षा और राम के द्वारा उनके त्यागे जाने की भूमिका उसी दिन बन गई थी जब राम से तुम्हें मरवाया गया था। सुनो ताड़का, पुरुष न तो प्रेम की परीक्षा लेता है और न प्रेम का त्याग करता है, किंतु स्त्री का पति, स्त्री का स्वामी, स्त्री का राजा होता है ना, सो वह उसकी अग्नि परीक्षा भी ले सकता है और कर सकता है उसका त्याग भी। ओ वांछित बेटी, ओ प्रताड़ित नारी, अरे ताड़का, जानती हो ना, इस देश की सब अवांछित बेटियां तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दुर्भाग्य और तुम्हारी त्रासदी को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। सुनाई पड़ रहा है ना उन सबका समवेद रुदन। सुनो ताड़का, सुनो।
1: बहुत खूब सर, इस लंबी कविता में आपने ताड़का को बिंब बना के नारी जगत की जो व्यथा है, जो पौराणिक पात्रों के माध्यम से आपने बहुत खूब व्यक्त किया है, अंदर की जो पीड़ा है।
0: धन्यवाद सर।
1: कुछ आपने कहानियां भी लिखी हैं हिंदी में?
0: पहले हिंदी में कहानी लिखा करता था और कई सारी प्रसारित भी हुई थी। एक कहानी प्रकाशवाणी कलकत्ता वालों ने एक कांकी नाटक भी बनाया
1: जी,
0: लेकिन बाद में जब कई वर्षों तक हम लोग विदेश में रहे
1: जी,
0: तो एक संपर्क टूट सा गया। तो लौटने के बाद मैंने फिर से लिखना शुरू किया, तो मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी थी कि हमारे बहुत सारे विदेशी मित्र थे और मैं उनको कभी अपनी हिंदी कविताएं या हिंदी कहानियां एक रनिंग ट्रांसलेशन के रूप में उनको सुनाया करता।
1: अच्छा।
0: तो वो लोग कहते थे नहीं भाई तुम अंग्रेजी में लिखो तो हम लोग भी उसका आनंद उठाएं।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह से फिर हमने अंग्रेजी में लिखनी शुरू की
1: जी।
0: और करीब 30-40 कहानियां लिखी गई अंग्रेजी में जो दो पुस्तकों में इलाहाबाद से ही प्रकाशित हुई हैं, एक रूट्स और एक का नाम है द साइलेंट विस्पर।
1: अच्छा, ये दोनों प्रकाशित हो चुके हैं। विज्ञान लेखन तो आपका अभी भी चलता होगा?
0: हाँ, हमारा काम ही है विज्ञान लेखन
1: जी।
0: और बंगलोर जाने के बाद मुझसे कहा गया, इनफैक्ट अब मैं आपको बतलाऊंगा एक रहस्य की बात।
1: हाँ जरूर।
0: कि वहां के सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बी एस राममूर्ति, जो किसी जमाने में हमारे टीचर भी थे बम्बई में, तो उन्होंने कहा तुम इतनी सारी कहानियां लिखते हो और इतना सब कुछ लिखते रहते हो, व्हाई डोंट यू डू समथिंग यूजफुल इन यूजुअल ब्लंट मैनर। तो हमने कहा व्हाट यूजफुल, हु इज इंटरेस्टेड इन साइंस। हमने मजाक किया, उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू मेक पीपल इंटरेस्टेड इन साइंस, पीपल इन साइंस आर नॉट डूइंग एनफ टू पॉपुलराइज साइंस। तो काफी डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि हम लोग एक क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ऑप्शंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर पर किताब लिखें।
1: अच्छा।
0: एक किताब के प्रारूप ही बना था कि कोरोना फैल गया
1: जी।
0: और हम लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए और फिर उस समय का हमने सदुपयोग किया इंटरनेट की सहायता से
1: जी।
0: तो अब तो बहुत सारी किताबें इंटरनेट पर मिल जाती हैं, लाइब्रेरियों से संपर्क किया जा सकता है, इस सब की सहायता से वो किताब पूरी हुई। करीब साल भर पहले प्रकाशित हुई थी
1: जी।
0: और उस पुस्तक की सफलता से प्रसन्न होकर के कोरोना का नाउ वी हैव टू डू दिस, क्योंकि उस समय हम सब लोग कोरोना से जूझ रहे थे
1: जी।
0: और कोरोना को लेकर के लोगों के मन में

0: तरह तरह की भ्रांतियां थी। तब यह तय किया गया कि एक रिस्क कम्युनिकेशन पर एक लिखा जाए, जिससे ये बतलाया जाए कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, सफाई रखना, इसके अतिरिक्त जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो आगे बढ़कर के वैक्सीनेशन, तो ये डिस्कशन होगा। और फिर हम लोगों ने देखा कि अच्छा देखें तो पहले भी तो इस तरह के पैंडेमिक्स होते रहे हैं, लोगों ने कैसे हैंडल किया
1: जी।
0: इस विषय को लेकर किताब लिखी गई। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद कोई वजह है जिसकी वजह से लोगों के मन में साइंस के लिए, विज्ञान के लिए उतना उत्साह नहीं जितना होना चाहिए। आज तक आपकी जितनी समस्याएं हुई सबका हल विज्ञान ने दिया है। कॉलरा की वैक्सीन विज्ञान ने दी, मलेरिया की वैक्सीन अब आ चुकी है, डेंगू की वैक्सीन आ चुकी है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आ चुकी है, इन सब से ये तो एंशियंट बहुत प्राचीन काल से हमारे साथ रहे हैं। तो फिर विज्ञान को लेकर कितनी शंकाएं क्यों हैं लोगों के मन में। और तब हमें लगा कि जो आपने शुरू में कहा था कि लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि वैज्ञानिक लोग एक आइवरी टावर में रहते हैं, उसकी वजह क्या है। ये विज्ञान का काम जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और आपका अटेंशन कंज्यूमिंग है, नीड्स ऑल योर अटेंशन। तो उसके चलते वो वैसे भी व्यस्त रहते हैं, उसके अलावा इन लोगों से मिलते जुलते नहीं है। जब कोई दिक्कत होती है तब किसी बड़े वैज्ञानिक को टेलीविजन पर या रेडियो पर बुला करके उसे एक वक्तव्य दिलवा दिया जाता है और लोग मान लेते हैं कि अरे इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा है तो सब लोग मान ही लेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। और फिर जैसे वैक्सीनेशन का जब विरोध होता है, भारतवर्ष में ही नहीं
1: और देशों में भी,
0: पश्चिम देशों में बहुत विरोध हुआ है
1: जी।
0: तरह तरह की भ्रांतियां फैला जाती हैं, कोई कह देगा कि ये वैक्सीनेशन लेने से आपकी पोटेंसी
1: कम
0: प्रभावित होगी, या कोई कह देगा कि आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किया गया है।
1: हाँ, तमाम तरीके के मिथ्स और भ्रांतियां,
0: ये भ्रांतियां फैलाई जाती रही हैं जिसके चलते भी वैक्सीनेशन का इतना विरोध हुआ। अफ्रीका में कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि अगर किसी स्थान पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो लोग कहते हैं डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा, वैक्सीनेशन लेकर क्या करेंगे और हमें नहीं लेना है।
1: लेकिन इन सारी बातों के बीच में भी ये बिल्कुल सत्य है और तथ्यात्मक बात है कि वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर ही हम इन समस्याओं से बच सकते हैं, जूझ सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से ही इन समस्याओं का समाधान है। और हम भी ये मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि के अंदर कहीं ना कहीं एक वो मानवीय दृष्टि भी छिपी होती है जो इसकी मूल भाव में रहती है, और इसीलिए ये चीजें सफल भी होती हैं, ऐसा आप भी मानते होंगे।
0: मैं आप जो कह रहे हैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, कष्ट जब होता है तो सबको बहुत कष्ट होता है। अगर आप लोगों के कष्ट को आप महसूस नहीं कर सकते हैं तो शायद आपके पूर्ण व्यक्ति बनने में कोई कमी रह गई है।
1: बिल्कुल सही।
0: और भारतवर्ष का ये जो सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का है वो न केवल वेदों में है बल्कि दक्षिण के संगम लिटरेचर में, संगम साहित्य में भी वही बात कही जाती है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के दरवाजे पर शेख सादी का लिखा हुआ एक गीत खुदा हुआ है।
1: अच्छा।
0: कि अगर आपके शरीर के किसी एक में चोट लगती है तो पूरा शरीर व्यथा महसूस करता है। ऐसे ही अगर किसी एक व्यक्ति को कष्ट होने पर समस्त मानव जाति कष्ट महसूस न करे तो उनके मानव जाति होने में कुछ संदेह है।
1: बिल्कुल। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे साथ आपने बहुत सारी बातें की, वैज्ञानिक पक्ष रखे और बहुत विस्तार से आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि किस तरीके से एक वैज्ञानिक काम करता है और क्या उसकी समझ होती है। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए श्रीवास्तव साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे मेहमान। इसके अंतर्गत आपने जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश कुमार श्रीवास्तव से आशुतोष सुंदरम की बातचीत सुनी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
4: आसमान में सिर उठा।

0: घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम चिट्ठी आई है।

0: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को वंदना राठौर का नमस्कार। श्रोताओं, आपके खूबसूरत से संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और आपके संदेशों का जवाब देने के लिए उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार।
1: वंदना जी नमस्कार, सुधी श्रोताओं नमस्कार और अभिनंदन आप सभी का।
0: नेहा जी
1: जी,
0: पहला संदेश जो मुझे दिख रहा है वो है वारिस अली खान साहब का और साथ है उनके छोटी बहन शहनाज खान जी।
1: जी,
0: और इन्होंने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से भेजा है संदेश। दो संदेश हैं
1: जी
0: और हम दोनों को ही मिला जुला कर पढ़ रहे हैं। वारिस अली खान साहब कह रहे हैं कि 10 मई के आकाशवाणी के 90 वर्ष यादों का कारवां में अली अहमद फाजली साहब का इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत झलकी जो सुनवाई गई थी भंडा फोड़ बहुत पसंद आई। उसके बाद मैंने 12 और 13 मई को एक ही कलाकार कार्यक्रम सुना जो कि शाहिद कपूर पर और आलिया भट्ट पर किया गया था और ये कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद आया है। लेकिन हाँ नेहा जी, आपसे एक बात कहनी है
1: जी।
0: कि क्या आपके केंद्र की पॉलिसी है कि नाम में क्या रखा है आवाज से पहचानो, इसीलिए तो सभी प्रेजेंटर जो होते हैं वो नाम नहीं बताते हैं। और आगे इनका कहना है कि 20 मई का बोलते नगमे कार्यक्रम बहुत अच्छा था, इस तरह के कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज ही प्रसारित कर सकता है। नेहा जी और वंदना जी, आप दोनों की मेहनत कामयाब हो गई है। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ जाग दिले दीवाना गीत बहुत अच्छा लगा। 14 मई का नमस्कार प्रयागराज जो कि नीलम जी ने प्रस्तुत किया था बहुत अच्छा लगा। 18 मई को युवाणी में विशेष रूपक घर आंगन की चहकती चिड़िया मुझे बहुत पसंद आया ये रूपक। 21 मई को विविधा में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज का दृष्टिकोण पर मोहन धनराज जी से शमीम जी की जो बातचीत हुई थी वो बहुत पसंद आई है। और हाँ, एक बात उन्होंने और जाननी चाहिए कि आकाशवाणी प्रयागराज का प्रसारण डीटीएच पर भी होना चाहिए और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर अगर मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर भेजूँ तो क्या उसका प्रसारण संभव है?
1: वारिस अली खान साहब, सबसे पहले तो आपका जो सलाम है हमारी पूरी टीम कबूल करती है। और देखिए, आपने कई बार याद दिलाया है, हमने अपने टीम मेंबर्स को भी कहा, कुछ दिन तक वो सभी लोग आपकी बात याद रखे हुए थे। अब इसको हम दोबारा ये बात तो सबको याद दिलाएंगे, तो यकीन मानिए जो एक ही कलाकार के पैनलिस्ट हैं वो अपना नाम बताएंगे और ये नाराज़गी तो मतलब बिल्कुल भी नहीं। और आपने कहा कि डीटीएच पर कब आएंगे, इस तरह की बात अभियांत्रिकी और इंजीनियरिंग विंग से हुई है, देखते हैं कि उस पर कब तक निर्णय आता है क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी है और पॉलिसी मैटर है, तो ये यहाँ के लेवल से ये काम नहीं बनेगा, तो हम लोगों ने चिट्ठी लिखी हुई है। दूसरी बात, आपने कहा बोलते नगमे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो जो गीत है जाग दिले दीवाना बहुत सुंदर, वो शायद कोई एक बार सुने तो उसके जहन में वो गीत गूंजने लगे, ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ। नमस्कार प्रयागराज।

0: आज अच्छा लगा, यूं वाणी बढ़िया लगा। तो हम सभी के खुश नसीबी है और आपका साधुवाद मैं कंसर्न सेक्शंस तक ज़रूर पहुंचा दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका।
1: नेहा जी, एक संदेश बहुत ही खूबसूरत सा हमें मिला
0: जी।
1: है। गांव की मिट्टी का रंग इसमें दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये पंचायत घर कार्यक्रम के लिए आया है, लेकिन न तो नाम लिखा है ना ही इनका पता दिखाई पड़ रहा है कहीं। इन्होंने अवधी भाषा में भेजा है अपना मैसेज और ये कह रहे हैं कि आपका पंचायत घर कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। रानू भैया और राधा बहन का संचालन हमें बहुत नीक लाग, बहुत बढ़िया रहा ये पूरा कार्यक्रम।
0: बहुत शुक्रिया। कहते ना, ये जो आंचलिक बोलियां हैं उसमें अपनायत का जो रंग है, रूप है, वो बहुत सुंदर है, देखते सुनते बनता है। ऐसी ही आपकी चिट्ठी है। आपका नाम भी बहुत ही सुंदर सा होगा जो कि आपके माता पिता, आपके परिवारजन ने रखा होगा। राधा और रानू, उस दिन उन दोनों ने कमाल कर दिया था। गर्मी में परिधान कैसा हो, क्या खाएं, कैसे पहने, अपनी व्यवस्था कैसे रख लें कि हम गर्मी से बच सकें, तो ये बात तो ध्यान रखने वाली है। और सच कहूँ तो इसको भी मैंने ध्यान से सुना था और आनंद से भर उठी थी कि आहा हा क्या प्रोग्राम एयर हुआ है। वंदना जी, इससे पहले वारिस अली खान साहब ने एक बात कही थी, उस समय जवाब देते समय हम वो बात रह गई थी। वारिस अली खान साहब ने कहा था कि हम कुछ वॉइस रिकॉर्ड करके भेजें तो क्या आप प्रसारित करेंगी? ये तो हमारे स्टेशन की खुशनसीबी होगी।
1: और नेहा जी,
0: जी
1: अभी आप कह रही थी कि पंचायत घर कार्यक्रम में
0: जी,
1: गर्मियों के बारे में जो बात
0: जी,
1: की गई थी, तो देखिए अब हम आपको सीधे दार्जिलिंग लिए चलते हैं।
0: दार्जिलिंग जी।
1: तो देखिए सुनंदा चटर्जी मॉल रोड दार्जिलिंग से हमें अपना संदेश भेज रही हैं और इनका कहना है कि 19 मई को अभिनेत्री तब्बू पर केंद्रित एक ही कलाकार सुना, यकीन मानिए सुनकर तबीयत मस्त हो गई। तब्बू के पूरे फिल्मी करियर को कितनी खूबसूरत अंदाज में उज्जवल सिन्हा जी ने प्रस्तुत किया और जो बीच बीच में उन्होंने शेरो शायरी के साथ इस कार्यक्रम को सजाया तो उसने समा बांध दिया। और जब मैं इस प्रोग्राम को आंख बंद करके सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो स्क्रीन पर फिल्म चल रही हो। उसके बाद 11:30 बजे का भी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मैंने सुना, बड़ा ही कर्णप्रिय रहा। इस कार्यक्रम में जो गानों का चयन किया गया था और जो प्रस्तुति थी, यकीन मानिए ये पूरा एक घंटा मैं पूरी तरह से इन दोनों कार्यक्रम में खोसी गई। तो ऐसी शानदार जानदार प्रस्तुति के लिए हृदय की गहराइयों से आभार।
0: उस दिन मैं भी सुन रही थी, सच में उज्जवल जी ने बहुत सुंदर प्रोग्राम प्रस्तुत किया तब्बू जी पर, मन खुश हो गया। तो सुनंदा जी, सोचिए कि आपने चिट्ठी लिखी, हम भी उस कार्यक्रम को सुन रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि दोनों लोग और न जाने कितने श्रोता जब उज्जवल जी प्रस्तुत कर रहे थे कार्यक्रम और एक ही समय पे हम लोग एक साथ जुड़ रहे हैं किसी खास चीज़ के लिए, मकसद के लिए। तो अच्छा लगता है कि आप उस समय ऐप के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम सुन रही थी, दार्जिलिंग में बैठी हुई हैं, और सारे श्रोताओं को प्रेरित करिएगा कि हमारे स्टेशन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को सुने। शुक्रिया।
1: और नेहा जी, एक थोड़ा सा नाराजगी भरा संदेश सुझावों से भरा भी है ये, हमें भेज रहे हैं शोभनाथ यादव जी विष्णुपुरी बमरौली प्रयागराज से
0: जी।
1: और इनका कहना है कि आकाशवाणी प्रयागराज पर सुबह 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम आता था। इधर कुछ दिनों से बीच बीच में इसके स्थान पर वॉइस ऑफ प्रयागराज के नाम पर फिल्म संगीत का प्रसारण हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रतिदिन लोक माधुरी कार्यक्रम प्रसारित किया जाए, मुझे बहुत खुशी होगी।
0: शोभनाथ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 10:05 से लेकर 10:30 तक लोक माधुरी कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था और अब मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, रविवार लोक माधुरी कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। ऐसा एक आदेश था कि हम लोग कुछ चेंजेस करें प्रसारण हित में, तो ये एक प्रयोग के तौर पर वॉइस ऑफ प्रयाग शुरू किया गया है। इसीलिए लोकगीत को हम लोगों ने पूरा सम्मान दिया है और वो सम्मान तो सर्वोपरि है, लेकिन कुछ प्रसारण हित और विज्ञापन को लेकर के ये चेंजेस किए गए हैं। देखते हैं कि इस पर बात भी करेंगे, अगर कुछ संभव हो सका तो आपका ये जो सुझाव है वो मानेंगे भी।
1: डेयर पाटन गुजरात से ये हमें संदेश भेज रहे हैं धीरज बी रबारी जी और ये कहते हैं कि हम मंगलवार गुरुवार को पनघट कार्यक्रम जरूर सुनते हैं। ग्राम जगत की बहनों का ये कार्यक्रम जानकारी और मनोरंजन से भरा रहता है और आकाशवाणी प्रयागराज के 90 साल के जो

0: प्रसारण यात्रा रही है जो विशेष कार्यक्रम था वो लाइव हम लोगों ने फेसबुक पर उसे देखा। और हमारा सुझाव है कि सेवानिवृत्त कार्यक्रम अध्यक्ष और अनाउंसर्स की मुलाकातें समयानुसार पेश जरूर करें, कोई भूल हो तो माफ करें।
1: धीरज भी रबारी जी, आपकी ये जो लाइन है भूल हो तो माफ़ करें, इससे पता चल जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो खत है वो धीरज जी का है, वो देवी पाटन से लिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा, उन श्रोताओं में से आप एक हैं। सुधीर श्रोताओं, मैं सच कहूँ तो टीम मेंबर्स ने बहुत मेहनत की थी इस खास कार्यक्रम को लेकर, तो अच्छा लगा कि आप दूर बैठे फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। और पनघट अच्छा लगता है। वो प्यारी प्यारी बातें, छोटी छोटी केयर की बातें मन को छू जाती है ना, तो बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगा। आपने कहा कि अनाउंसर्स और पूर्व अधिकारियों के रिकॉर्डिंग समय समय पर ज़रूर सुनवाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनवाएंगे। आपका ये जो सुझाव है हमने माना है और मानते रहेंगे। जब जब जैसे संभव होगा स्टूडियो में अपने लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उनकी जो प्रसारण यात्रा रही है उस यात्रा से आप सभी को रूबरू करवाएंगे। शुक्रिया आपका।
0: माधुरी कुशवाहा जी कोठा पार्शा प्रयागराज से हमें संदेश भेज रही हैं। माधुरी जी ने भी एक ही कलाकार कार्यक्रम सुना था, गजल गायक पंकज उदास जी पर केंद्रित रहा, और माधुरी जी का कहना है कि बहुत ही खूबसूरती के साथ अनाउंसर ने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। उनके जीवन के बारे में जो बातें बताई बड़ी रोमांचकारी थी, और साथ ही साथ जो गजलें चुनकर लेकर आई थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। पूरा जो कार्यक्रम था वो इतना सुखद प्रतीत हो रहा था, इतना सुकून भरा कार्यक्रम था कि मन खुश हो गया। लेकिन अनाउंसर ने अपना नाम नहीं बताया, फिर भी हमने अपनी तरफ से, क्योंकि हम रेडियो सुनते आए हैं, तो मुझे जो लगा, मेरा ख्याल है कि वो शुभ्रा श्रीवास्तव जी की आवाज़ थी। तो इन्होंने दिल से अपना शुक्रिया उन तक पहुंचाया है। और आगे माधुरी जी कहती हैं कि विचार बिंदु कार्यक्रम सुना, बहुत सुंदर ये कार्यक्रम था। मदन मोहन मालवीय जी के जो विचार थे वो सच में हम सबको उसको अपनाना चाहिए, तो इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं माधुरी जी, क्योंकि एक ही बात के लिए देखिए दो पत्र आ गए हैं, वारिस अली खान साहब का और माधुरी जी का। तो हम फिर से ये बात अपने ग्रुप में डालेंगे कि भाई नाम बताना है वो ज़रूरी है। और पंकज उदास जी पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था शुभ्रा जी ने किया, बहुत सुंदर था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है सुधीर श्रोताओं कि आप लोग नाम कभी और सुना है और आवाज़ उनकी सुन रखी है और कैसे पहचान लेते हैं ना। ये बात याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे केंद्र के लिए। तो भाई शुक्रिया। और आपने कहा विचार बिंदु अच्छा लगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विचार, कोशिश रहेगी कि ऐसे सुविचारों से अपने दिन की शुरुआत की जाए। शुक्रिया आपका।
0: नीरा त्रिपाठी जी अशोकनगर प्रयागराज से हमें संदेश भेज रही हैं, और ये कहती हैं नेहा जी कि आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी प्रयागराज में बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया, और लोकगीत बैंड और खुशी जी ने, जो खुशी पांडे जी ने जो नृत्य किया था वो काबिले तारीफ रहा, और इस दिन बड़ी ही अच्छी महफिल सजाई गई थी और हम भी उसके साक्षी बने, इस बात की हमें बहुत खुशी है। पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। प्रयागराज कार्यक्रम मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम होता है, जिसमें सोनम जी ने और नीलम जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, और श्रोताओं के जो संदेश थे उसे जब उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया और बेहतरीन गाने सुनाए तो सुबह हमारी खूबसूरत बन गई। साथ ही बोलते नगमे कार्यक्रम अभी हमने सुना, और आप दोनों की पेशकश बहुत अच्छी थी। जिस तरह से फूलों का एक गुलदस्ता होता है उसी तरह से आप लोगों ने तीनों गीतों को सजाया था।
1: नीरा जी और सुधीर श्रोताओं, जो श्रोता यहाँ आसपास अंचल में रहते हैं और उनका आगमन 19 मई को 6 बजे से सभागार में हुआ था, मैंने देखा था आप सभी लोगों को। सच कहूँ आपके पत्र पढ़ती हूँ, जवाब देती हूँ, और जब आपको साक्षात मैंने देखा था तो ऐसा लगा जैसे कोई संबल देने वाला आ गया हो। कहते हैं ना, जब कोई अपना आ जाता है तो कार्यक्रम और सुंदर बन पड़ता है, वैसा ही हुआ। अगर आप सभी को कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसमें आप सभी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो मैं आप सभी की बहुत आभारी।

0: हूँ, शुक्रिया आपका।
1: और नेहा जी, 90 बरस आकाशवाणी की, इसमें बहुत सारी शुभकामनाएं और भी हैं।
2: जी
1: श्रोता हमारे जुड़ रहे हैं जो कि ये सोशल मीडिया के जरिए हमें संदेश
2: जी
1: प्राप्त हुआ है, और वो हैं उमेश कनौजिया जी, विवेक सत्यांशु, राजेश कुमार शर्मा, रागिनी चंद्रा, तरुण कुमार, प्रिया द्विवेदी, उत्तम सिंह जंघेल, सतीश रेणु, आश्रय द्विवेदी, अमित कुमार शर्मा, जावेंद्र कुमार, ध्रुव और बेनु घोष जी।
0: बहुत शुक्रिया आप सभी सुधीर श्रोताओं का जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, पत्र भेजा है, संदेशा भेजा है। तो इसी तरह आप हमारे केंद्र से जुड़े रहिए, शुक्रिया आप सभी का।
1: तो श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम बताएं आपको अपना पता। तो लिखिए, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक, 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211002 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो श्रोताओं, इस पते पर हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार, और अब दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी वंदना राठौर और आपके पत्रों के जवाब दे रही थी कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

यह है कार्यक्रम का पहला नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र किशन के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम इंतकाम।

लीजिए सुनिए बॉम्बे जयश्री की आवाज में ये गाना। समीर के बोलों को सुरों में पिरोया है हरीश जयराज ने। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए समीर के बोल, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है साजन और आवाज अनुराधा पौडवाल की।

0: इस गाने के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम। आज इतवार है, इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं नरेश मिश्र की लिखी ये झलकी, बाज आए नीम हकीमों से। लीजिए सुनिए।

0: शील, शील।
1: आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या है?
0: देखो पेट पर लाल लाल क्या उठ रहा है?
1: कहाँ?
0: यहाँ।
1: उठ क्या रहा है? जरा सा मच्छर ने काट लिया होगा।
0: मच्छर ने काट लिया होगा?
1: और नहीं तो क्या, भेड़िया आएगा काटने?
0: ओह शील, तुम तो बिल्कुल गवार औरतों की सरगना हो। ये सूजन, ये लाली, ये तपकन क्या मच्छर काटने के निशान है?
1: सूजन लाली तो नाम मात्र को है और तपकन तुम्हारे दिमाग में हो रही है।
0: ओहो।
1: दफ्तर से छुट्टी लेकर मैटनी शो देखाओगे तो ये दिमागी फोड़ा अपने आप बैठ जाएगा।
2: अरे भाई क्या आज दरवाजा नहीं खोलोगे बरखुरदार?
0: ओहो, दरवाजा नहीं खोलूंगा तो तुम अखबार कहाँ पढ़ोगे? मेरे घर को पुस्तकालय समझ रखा है।
2: अबे मनोहर भाई, मैंने कहा सवेरा हो गया।
1: आई मिर्जा जी, आई।
0: हाँ हाँ, खोलो जाके दरवाजा।
1: आइए मिर्जा जी।
2: हाँ भाई, अभी आया।
1: आइए आइए
0: आइए आइए चंगेजी साहब।
3: अम्मा इतना डर क्यों रहे हो? नोट कर लो, मैं कोई सचमुच का चंगेज थोड़े हूँ।
0: जी नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, बात ये
3: है। अरे भाई क्या दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है?
0: हाँ, अगर आप मुझे दुश्मनी समझते हैं तो मेरी तबीयत खराब है।
3: ला हौल वला कुव्वत है। अरे भाई तुम्हें दुश्मन समझने वाले के मुंह में खाक। हाँ, तकलीफ क्या, नोट कर लूं?
0: ये सूजन नोट कीजिए। ये मुझे औंधा फोड़ा मालूम पड़ता है।
3: औंधा फोड़ा? नोट कर लो मनोहर मियां, तुम्हारी अक्ल औंधी है।
0: क्या मतलब?
3: मिर्जा फरद बेग चंगेजी से तुम मतलब पूछते हो, अभी बतलाता हूँ। हाँ भाभी, जरा सुई या आलपिन तो ले आई।
0: सुई या आलपिन का क्या करोगे?
3: अरे करूंगा क्या भाई, तुम्हारे इस औंधे फोड़े में छेद करके उसे सीधा कर दूंगा। अमा ऐसी फुंसियों पर यही चुटकुला मौजू होता है।
0: ओहो मिर्जा, तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी क्या करते थे?
3: क्यों क्या मतलब? वो क्या डाखाने में क्लर्क थे।
0: और बाबा मरहूम?
3: वो चिट्ठी रसा थे।
0: तुम्हारी दो पुश्तों में कोई हकीम नहीं था, फिर तुम ये जर्राही कहाँ से सीखा है?
3: अम्मा ये छोटी छोटी फुंसियाँ देखकर घसियारा भी जर्राही पे तुल जाता है, नोट कर लो। भाभी जी जरा आप जल्दी से वो क्या आलपिन तो ले आइए।
1: हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अरे ये लीजिए, आलपिन तो यहीं रखी है।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा आप बरखुरदार, जरा चित होकर लेट जाइए।
0: मिर्जा भाई मुझे तो डर लगता है।
3: लेटो तो, मैं कोई पोस्टमार्टम तो करूंगा नहीं। लेटो लेटो लेटो लेटो।
0: अच्छा
3: लेट जाओ।
0: जिंदा ही पोस्टमार्टम करोगे? देखो मिर्जा भाई जरा धीरे से करना।
3: अरे भाई बिल्कुल धीरे से
0: धीरे से,
3: जरा आंख बंद रखना। हाँ बस बस बस बस बस।
0: अरे भोपरी,
3: बस बस काम हो गया तमाम।
0: जी
3: तुम्हारा नहीं, इस फोड़े का। अच्छा अच्छा, इनसे सो गए बिल्कुल।

0: मैं अच्छा चलता हूँ।
1: अब तो दर्द के मारे जान निकल रही है।
2: अरे ये तो सूजन और लाली और भी बढ़ रही है।
1: गुब्बारे की तरह फूल रहा है।
2: भगवान,
1: इस मिर्जा ने जाने कब की दुश्मनी निकाली।
0: भगवान,
1: अब कौन है, अब कौन है जरा देखो।
0: हमार विपत महतो।
2: अरे दूध वाला है।
1: अच्छा,
2: मैं देखती हूँ। चले आओ।
0: का हो बाबूजी, ये लक्का कबूतर की नाई का है लोटक।
2: अरे फोड़ा निकल आया है। मैं तो
0: फोड़ा कहाँ निकला, तनी देखी तो।
1: ये देखो बड़ी टीस उठ रही है।
0: तनी टोवे दो। डराओ ना, डराओ ना। अरे बाबूजी, तू तो अंजन की तरह सीटी भरत हो। एक बात पूछी बाबूजी, कहूँ कूदा फांदी तो नहीं की हो?
1: अरे कूदा फांदी क्या, मैं दीवाले फांदता हूँ? तुमने मुझे चोर चक्का समझ लिया है?
0: अरे नहीं बाबूजी, आपके नल टर गई है ना, यह ते पूछा।
1: नल टर गई है? कैसी नल?
0: बाबूजी पानी के नल नहीं, पेट के नल। जेका नाप कहा थे नाप, ऊ टर गई है। आप तनी पैर सीधा करके लेट जाओ तो हम इका तोहार फोड़ा का अब बैठ ठीक करें।
1: लेकिन भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी?
0: अरे गड़बड़ कैसे होए बाबूजी, वत्ताज हमका आइस गुण दई दिहन है कि तौन अंगूठा लगावा नहीं के नल बैठी। बस तुरंत लेट जाओ बाबूजी।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: लेट जाओ बाबूजी।
2: अरे लेट भी जाओ, महतो के हाथ में बड़ा गुण है।
1: ओहो,
0: लेटा।
1: अच्छा ये लो महतो, लेकिन लेकिन भाई जरा धीरे से दबाना है।
0: देखो बाबूजी, हमका तोहार मुलहिजा है, मुदा तोहरी पीड़ा सन मुलहिजा नहीं हो। हाँ यही का तो हम दुश्मन के नहीं टीपब। ऐसे ऐसे
1: कौन सी पुलटिस लाओगी?
2: अरे वही अलसी की।
1: तो पान कत्था वाली नहीं बांधोगी क्या?
2: नहीं, अलसी के साथ कबूतर की पीठ और कुकुरमुत्ते की जड़ भी पीस ली है। अरे पड़ोसन कह रही थी ये पुलटिस फोड़े की दुश्मन है।
1: अरे पता नहीं फोड़े की दुश्मन है या हमारी।
2: हे भगवान, तुम तो इतनी जल्दी घबरा जाते हो। ये फोड़ा तो ऐसे ही चुटकुलों से अच्छा होगा।
1: चुटकुलों से खाक अच्छा होगा। तीन दिन से ना पलक झपकाई ना करवट ले सका। कोई हरड़ बेहड़ा लगवाता है तो कोई सोंठ फिटकरी, कोई गंदे बिरोजे की पट्टी बतलाता है तो कोई सोडा कास्टिक की।
2: तो इसमें हर्ज ही क्या है, जिसे जो नुस्खा फायदा करेगा वही तो बतलाएगा।
1: अरे तो सारे नुस्खों का गुणधर्म मेरे ही फोड़े पर आजमाया जाएगा। ये सोंठ मिर्चें और जड़ी बूटियों के कारण सारा कमरा पंसारी की दुकान बन गया, लेकिन फोड़े को तनिक भी आराम ना पहुंचा।
3: आराम क्या पहुंचेगा बेटे, तुम्हारी करनी ही ऐसी है।
1: आइए आइए गंडा राम जी, करनी ना होती तो कष्ट क्यों भोगता।
3: हाँ ठीक कहते हो तुम, ठीक कहते हो। जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय। तुमने दुनिया भर के नीम हकीमों का नुस्खा आजमा डाला, लेकिन बगल में रहने वाले पंडित गंडा राम शास्त्री को पूछा तक नहीं।
2: क्षमा कीजिएगा, आप वैद्य हैं?
3: वैद्य? वैद्य तो मेरे बाप दादे भी नहीं थे, परंतु ऐसे छोटे मोटे रोगों के लिए मेरे पास अचूक नुस्खे हैं। मेरे प्रयोग
1: तो क्या मेरे फोड़े के साथ भी आप प्रयोग करना चाहते हैं?
3: अरे डरते क्यों हो, डरते क्यों हो बेटे। जरा देखूं तो तुम्हारा फोड़ा।
1: ये देखिए कैसा टमाटर सा लाल हो रहा है।
3: सचमुच टमाटर जैसा लाल है। धनवंतरी के मतानुसार इसके लिए शल्य चिकित्सा रामबाण से दो।
1: ये शल्य बाण क्या कह रहे हैं आप?
3: शल्य अर्थात चीरा। हाँ, अर्थात ऑपरेशन।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं चीरफाड़ से डरता हूँ।
3: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे फोड़े पर मैं अभी छार लगाता हूँ। अभी बात की बात में ऐसा फूटेगा जैसे राम ने रावण के उदर में बाण मारकर अमृत का घड़ा फोड़ दिया।
1: नहीं नहीं
2: भगवान।

0: ये क्षार क्या होता है?
1: क्षार? अरे ये डॉक्टर के चाकू का नगर दादा है। सातों नमक, नौसादर और कांच के चूरे को मदार, धतूर और अफीम के रस में 160 बार घोट कर फूकने से क्षार बनता है।
2: अरे बाप रे, मैं ये दवा में घुटी छुरी नहीं भोगवाऊंगा अपने फोड़े में।
1: चुप रहो, मैं तुम्हारी राय नहीं चाहता। रोगी की राय से चलने का मतलब है उसे मौत की दाढ़ में झोंकना। चुपचाप लेट जाओ और ये पुलटिस निकाल दो।
2: लेकिन
1: कुछ नहीं, तुम लेटोगे या बुलाऊं पड़ोसियों को मदद के लिए?
2: किसी को मत बुलाइए।
1: हाँ,
2: लेटता हूँ।
3: अरे भाई, किस पर अलग हुए जा रहे हैं गंगा राम जी?
0: अजी लेटते ही नहीं।
3: अरे गुस्सा थूकिए, आपका गुस्सा वल्लाह कयामत है।
2: आओ मिर्जा भाई आओ, शास्त्री जी मुझे पर बिगड़ रहे हैं, थोड़ा तो घटने का नाम नहीं लेता। ये देखो, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं।
3: अरे नहीं, मुझे देखने दो। अरे भाई वाकई ये तो फुंसी का नासूर हो गया। अरे भाई मुझे ठीक ही खबर मिली। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी दवा लगानी पड़ेगी।
2: अब भी कोई दवा बची है लगाने को? कुकरमुत्ते की जड़, सत्यानाशी की छाल, गिलहरी की बीट और छचुंदर का तेल, सभी तो लगा चुका हूँ।
3: अरे भाई सब्र की पट्टी भी चढ़ाई है बरसता।
2: अब तो लगता है मौत की चादर ही ओढ़नी पड़ेगी।
3: अरे भाई तौबा तौबा तौबा, अरे भाई मरे तुम्हारे दुश्मन। लो भाई ये कहाँ गया? हाँ लो ये मरहम, बस लगाते ही दर्द रफा हो जाएगा।
1: मिर्जा जी जरा ठहरिए, आपने इस फोड़े का निदान कर लिया है? अंग्रेजी भाषा में इसे सेप्टिक कहते हैं। इसके कीटाणु सारे शरीर में हलाहल विष घोल देते हैं।
0: हे भगवान, ये सब क्या हो गया है?
3: अरे भाई ये गीदड़ भक्तियाँ किसी और को दिखलाइए पंडित जी। अरे भाई मेरे मरहम में वो ताकत है कि इसे लगाने पर इंसान के सिवा हर तरह के कीड़े मर जाते हैं। नोट कर लीजिए,
2: इंसान तो बचा रहता है ना।
3: यकीनन इंसान के लिए तो ये हुक्मी दवा है।
1: हुक्मी नहीं, जुल्मी दवा है, जुल्मी। यही तुम्हारा मरहम लगाने से पड़ोस वाली कुंजड़न बेचारी को अपने दाहिने हाथ से हाथ धोना पड़ा। भला उस गरीब ने आपका कौन सा केच चोट लिया था मिर्जा जी?
3: अरे भाई झूठ बोलने का क्या बरत ले रखा है पंडित जी। भाई उसका हाथ तो आपकी दवा की पैनी धार ने काट दिया था। नोट कर लीजिए, मैं मरहम न लगाता तो उसे गला भी कटवाना पड़ता।
2: अरे बाप रे, दवा न हुई खंजर हो गया।
4: अच्छा, तो खंजर चक्कू चलावे लायक हो ही गया बाबूजी।
3: कौन विपत महतो?
4: काहे ना होए, आखिर विपत महतो के हाथ लगा रहे कौनो मामूली बात रही?
2: अरे यहाँ खुद ही खंजर का दर्द झेल रहे हैं, देखो ना कितना सूजा है फोड़ा। अरे देखो
4: लावा, देखी देखो तो, लावा तो।
3: अरे महतो, तुम कब से बीमारी में दखल रखने लगे? तुम खुद रतौंधी के लिए सरमा लेने मेरे घर आते थे और इस वक्त ये रो।
4: अंडा बच्चा के सिखावे कि चूचू ना करा। ए मिर्जा, तोहार मलाम सुरमा वही अभागा लगावे जेकर जान फालतू होए।
1: हाँ। क्या सटीक बात कही
3: है। सटीक बात नोट कर लो पंडित जी, तुम्हारी दवा के मारे को खुदा भी नहीं बचा सकता। अरे भाई ये तो अच्छा हुआ कि मनोहर ने तुम्हारी भभूत नहीं लगाई, नहीं तो इसके थोड़े में खैबर का दर्रा बन जाता।
0: हे भगवान, आप सब लोग ये क्या कह रहे हैं?
1: तुम भी इस लवार की बात में आ गई बिटिया। यदि मनोहर इसका मरहम लगा लेता तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाते।
4: तुम दोनों ठीक कह रहे हो बाबूजी। आप तो बस अरेंड के पत्ता गरम करके बांधा जा।
1: चल चल, मुझे जो क्षार लगाने से रोकेगा मैं उसकी आंख में क्षार भर दूंगा।
4: ये पंडित बहुत,
0: आप लोग चुप रहिए, मेरा तो सर चकरा रहा है। चुप रहिए भगवान के लिए।
2: क्षार पुलटिस, आप लोग सब नीम हकीम खतरे जान हैं। भाग जाइए, मैं कहता हूँ भाग जाइए आप लोग।
0: आप गुस्सा मत कीजिए, आखिर कोई ना कोई दवा तो लगानी पड़ेगी
1: ना। मेरी दवा लगा दो,
2: शील इन लोगों को बाहर निकाल दो और मत चलो। हम तो बाज आए नीम हकीमों से।
5: अभी आप सुन रहे थे नरेश मिश्र की लिखी झलकी बाज आए नीम हकीमों से, प्रस्तुति मुख्तार अहमद की थी। इसी के साथ आज इतवार है कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टी हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में

0: फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टी हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे

0: व्यक्तियों कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर

सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को ताउन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है।

0: जेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूआत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत तवानाई नखलो हमल नेज इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्त की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील को की ज़रूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाज़े के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफ़ी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात सिफारती कोशिशों महफूज और बिला रुकावट समंदरी तजारत के हक़ में भारत के मौक़िफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका इसराइल ईरान नेज़ दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकत दारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकत दारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमेरिका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोज़ा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकत दारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवानशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तसव्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर यह सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले जबकि दिवांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम

0: पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी ज़िला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज़ गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज़ कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी अमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिये के मुताबिक ज़िलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकज़ों में भेजने के लिए ज़रूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीक़े कार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। ये फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IITs के माहिरीन की ये टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेस खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ ज़रूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कल उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल के हिमालयी इलाके, आसाम और मेघालय में कल शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है। पूरी रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और कई शहरों में दर्जे हरारत 43 डिग्री से तजावज़ कर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। बेशतर शहरों में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है। आज महकमा मौसमियात ने 4 अजला टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। ततैया, नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले 4 रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिएं, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नज़र मंगल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद, जिनमें 7 खवातीन थीं, आज उत्तर कन्नड़ा जिले के थट्टे हक्कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताज़ा पानी की सीपियाँ चुन रहे थे कि तेज़ हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में डूबने से हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहत ताज़ियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट

0: इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा अख्तियार करने वाली त्रिशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद त्रिशा का जस्ते खाकी उनके कुनबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल त्रिशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने त्रिशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है, जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाला सिंह साबिक जिला जज हैं, उन पर भी जहेज के लिए हिरासा किए जाने के इल्जाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्ज़ाम था, जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लथेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सागवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। यह धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़्वी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नज़दीक गोलियां चलने के वाक़े के बाद तेज़ी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाक़ा वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाक़े के चंद रोज़ बाद पेश आया है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। TMC उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की ज़िंदगी मुतासर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम कहकशां। शमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। मायूस ना होए मुसाफिर, जिंदगी कभी भी संवर सकती है। कबूल करिए अपने रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र का इस्तकबाल इस गजलों की महफिल में। इस सादगी पे क्यों ना मर जाएं खुदा, इस सादगी पे क्यों ना मर जाएं खुदा, कि लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।

थक जाए। हर चीज मैसर हो जरूरी तो नहीं, चाहत के लिए जिंदगी पूरी तो नहीं। चलते रहो राही, थक के हार ना बैठो, बस याद रहे कहीं कोशिश अधूरी तो नहीं।

निकल के दिल से तेरे वास्ते सदा आई, निकल के दिल से तेरे वास्ते सदा आई, उठाए हाथ तो याद एक ही दुआ आई। हर साल के दिन हजार हो जाएं, वक्त साल गिने और गिन गिन के

0: महफिल में ना सही, तन्हाई में तो याद करोगे, कभी तो उस खुदा से फरियाद करोगे। न मिला है न मिलेगा मेरे जैसा कोई, कभी तो इस बात पर भी नाज करोगे। गर इश्क है सौदा तो घाटा हुआ हमें, गर इश्क है सौदा तो घाटा हुआ हमें, उसने गले लगा के पराया कहा हमें। बेइम्तहाई इश्क में अच्छी नहीं होती, बेइम्तहाई इश्क में अच्छी नहीं होती, तबाही के बहुत बाद ये पता चला हमें।
1: तेरे खुशबू में बसे खत।

चांद अपनी चमक दे आपको, चांद अपनी चमक दे आपको, धूल और मिट्टी अपनी महक दे आपको। हम तो कुछ देने के लायक नहीं, ऊपर वाला हर खुशी दे आपको। बहुत दूर है हमारे घर से तुम्हारे घर का किनारा, बहुत दूर है हमारे घर से तुम्हारे घर का किनारा, पर हम हवा के हर झोंके से पूछ लेते हैं हाल तुम्हारा।

कुदरत की सही चाल हमें बताती है कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, और वक्त का पैमाना अब हमें ले आया है उस मकाम पर जहां इस महफिल से रुखसती ज़रूरी है। फिर सजेगी कहकशां की महफिल, फिर बिखरेंगे सिमटेंगे दिलों के जज्बात। फिलहाल इस वक्त कबूल फरमाइए अपने रेडियो हम सुपर प्रेमेंद्र का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहकशां। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आप

0: ने वहाँ बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरु शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरु शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरु शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: In the Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight, we present Sitar Recital by Pandit Hara Shankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned Sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Hara Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hara Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hara Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hara Shankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hara Shankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हरु शंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरु शंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal, followed by madhyalaya teen tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छाया नट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Haro Shankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण

0: रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका की विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation.